अब की बार उबार, हे प्रभु, आपसे आपके अतिरिक्त अन्य किसी भी वस्तु की याचना करना सभी दुखों का मूल है। इसीलिए हमें अपना पावन नाम दान देने की कृपा करें, जिससे हमारी आत्मा की भूख शांत हो सके।

आकाशवाणी हमीरपुर से वंदना कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं। सुबह के 6:34 हुए हैं। आइए कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति में सुनते हैं माता की ये भेंट।

वंदना कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:40 हुए हैं और भक्ति क्रम में यूं ही आगे बढ़ते हुए आइए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ भाग 10।

श्री रामचरितमानस के आरंभ में देवताओं, संत असंत तथा वाल्मीकि जैसे सरस्वती पुत्रों की वंदना के पश्चात तुलसीदास जी ने श्री राम के भक्तों, बंधु बांधवों, सहयोगियों आदि की अभ्यर्थना की है और उसके बाद किया है प्रभु के नाम की महिमा का गान। राजा जनक, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, पवन पुत्र हनुमान, सुग्रीव, जामवंत आदि की वंदना कर भक्त कवि ने अपने आराध्य के चरणों में मस्तक नवाया है। उन्होंने माता सीता को भी प्रणाम निवेदित किया है। श्री रघुनाथ जी के नाम राम की वंदना करते हुए र, आ तथा मा अक्षरों में उन्हें ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के दर्शन हुए हैं।

जी, श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ अभी आप सुन रहे थे। गायक कलाकार थे शोभा जोशी, लता मंगेशकर और साथी संगीतकार थे सतीश भाटिया। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:50 हुए हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। आइए सुनते हैं।

0: कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद यानी कि 6:55 पर संस्कृत समाचार, 7 बजे हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 7:05 पर सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम सुनिएगा और 7:35 पर होगा लोक संसार कार्यक्रम। सुबह 8 बजे समाचार प्रभात का अंक, 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ का अंक आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा और हिमाचल डायरी का आज का अंक 8:30 पर प्रसारित किया जाएगा। 8:35 से लेकर 9:20 तक सुनिएगा विविध भारती के कार्यक्रम। 9:20 पर प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। 9:30 पर सुनिएगा हेलो हमीरपुर कार्यक्रम, लाइव फोन इन प्रोग्राम होगा ये, आप भी हिस्सा ले सकते हैं, नंबर 01972221322 रहेगा। सुबह 10 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 10:05 पर सुनिएगा 90 वर्षों का रंग आकाशवाणी के संग। 10:15 पर देशभक्ति के फिल्मी गीत आपको सुनाए जाएंगे। लोक रंग कार्यक्रम 10:45 पर प्रसारित किया जाएगा। 11 बजे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। 11:05 से लेकर दोपहर 12 बजे तक विविध भारती के कार्यक्रम हमारे केंद्र से रिले किए जाएंगे। दोपहर 12 बजे बाल मंडल कार्यक्रम लेकर हाजिर होंगे। सैनिकों के लिए कार्यक्रम 12:30 पर प्रसारित किया जाएगा। दोपहर 1 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रमों का आनंद उठा सकते हैं। इसी दौरान 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से और 3 बजे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। शाम 5 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 5:05 पर देश गान आप सुन सकते हैं कार्यक्रम रूपरेखा के बाद और 5:30 पर युव मंच कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। शाम 6 बजे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से रिले किए जाएंगे। 6:05 पर सफ़र सुहाने गाने नए पुराने कार्यक्रम सुनिएगा और गल तुसांदी कार्यक्रम 6:30 पर सुनिएगा। लाइव फोन इन प्रोग्राम होगा, आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, फ़ोन नंबर 01972221322 रहेगा। हिंदी में समाचार शाम 7 बजे आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। 7:05 पर देशगान सुनिएगा। 7:10 पर भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम विषय वंचितों को वरीयता, ये आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा। 7:45 का समय रहता है प्रादेशिक समाचारों का, जिन्हें हम आकाशवाणी शिमला से रिले करते हैं। 8 बजे विविध भारती के कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 8:45 पर समाचार संध्या का अंक, 9 बजे News@9 का अंक आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा और रात्रि 10 बजे दिला दे मीत पहाड़ी गीत, ये कार्यक्रम सुनिएगा। 10:30 पर चांदनी रातें कार्यक्रम पेश किया जाएगा। रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे। तो ये तो थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित व रिले होने वाले शेष कार्यक्रमों की। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 6:55 होने को हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार आप सुन सकते हैं, पहले संस्कृत में और उसके बाद 7 बजे हिंदी में।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः दिव्यानन्द झा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः आर्थिक परामर्श परिषदः सदस्यैः समं आकारितस्य उपवेशनस्य अध्यक्षताम् अकरोत्। उपवेशने प्रधानमंत्री परिषद सदस्य

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री की कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य की सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। श्री शाह ने पिछले 5 वर्ष के जमीन से जुड़े दस्तावेजों की जांच कराने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक अनिश्चितताओं के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से होने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बैठक में भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति हैं और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में कल विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को यह मंच प्रदान किया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री की खबरों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एनटीए ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। बैठक के दौरान डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर आधारित हैं।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है। साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों में कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बनाए। न्यू चंडीगढ़ में खेल समाप्त होने तक कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। केएल राहुल ने 100 रन की पारी खेली। दूसरे दिन का खेल आज सुबह 9:30 बजे से शुरू होगा। मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, केरलम और माहे में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन तक तेज बारिश की संभावना है। आज पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में तेज हवा के साथ बिजली चमकने की भी आशंका है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। FM बैंड

101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर सुबह के 7:05 हुए हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है हमारा दैनिक कार्यक्रम सुप्रभात हमीरपुर।

0: बिल्कुल जी, भोर होने के साथ साथ हम भी हाजिर हो चुके हैं सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम लेकर। तो सबसे पहले तो आपको आपकी रेडियो दोस्त भावना कतना की तरफ से नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। और आप सभी दोस्तों के स्वास्थ्य की कामना करते हुए आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और एक अच्छा सा विचार आपको बताते हैं। देखिए श्रोताओं, मेरा मानना तो ये है कि जो चीज़ हमें मुफ्त में मिलती है ना, हम उसकी कदर ही नहीं करते हैं। अब देखिए ना, प्रकृति ने हमें कितनी अच्छी चीज़ें दी हैं, हवा, पानी, ये हरे भरे पेड़ पौधे, पर हम इसकी कद्र ही नहीं करते हैं। हम अपने ही मस्ती में चले जा रहे हैं, इन बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण कर रहे हैं, अपनी सुविधाओं के लिए जंगलों को काट रहे हैं, है ना। और देखिए, ये विचार हम आपको देते हैं, पर ये भी तो मुफ्त में ही है। पर फायदा तभी है जब आप इसको सुने ही नहीं, अपने व्यवहार में उतारें भी। अब देखिए ना, मुफ्त की बात हम करें तो आजकल देखिए हम सौर ऊर्जा प्रणाली लगा रहे हैं तो बिजली भी मुफ्त हो जाती है। और जब लोगों को लगता है ना कि बिजली अब मुफ्त है, तो उसके उपयोग में संयम जो है ना वो समाप्त होने लगता है। अब आपको उदाहरण दे एसी का, तो कुछ वर्ष पहले तक एसी केवल बड़े शहरों और संपन्न वर्ग तक सीमित थे, लेकिन अब छोटे शहरों और कस्बों में भी इनका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। हर घर में देखिए एसी लगा हुआ है, जहां ज़रूरत है वहां तो है ही, जहां ज़रूरत नहीं है उन्होंने भी लगा रखा है, सिर्फ इसलिए कि ये हमारी जीवन शैली का मतलब एक दिखावा टाइप बनता जा रहा है। बढ़ती गर्मी के कारण इनकी आवश्यकता से इनकार भी नहीं किया जा सकता, लेकिन समस्या तो तब उत्पन्न होती है जब सुविधा आवश्यकता से आगे बढ़कर जीवन शैली का प्रतीक बन जाती है। अब एसी केवल बिजली ही नहीं खर्च करता, वो शहरों के तापमान को भी प्रभावित करता है। एसी कमरे के अंदर की गर्मी को बाहर फेंकते हैं, जिससे बाहरी वातावरण और गर्म हो जाता है। घनी आबादी वाले क्षेत्रों में हजारों एसी मिलकर हीट आइलैंड इफेक्ट उत्पन्न करते हैं, जहां शहर का तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से कई डिग्री अधिक हो जाता है। और विडंबना ये है कि बढ़ती गर्मी से बचने के लिए हम अधिक एसी चलाते हैं और अधिक वातानुकूल शहरों को और गर्म बना देते हैं। हम समाधान के माध्यम से ही समस्या को बढ़ा रहे हैं। पिछले कुछ दशकों में मानव समाज ने हर समस्या का तकनीकी समाधान खोजने की कोशिश की है। गर्मी बढ़ी तो एसी लगा लिया, बिजली महंगी हुई तो सौर ऊर्जा प्रणाली लगा ली, पानी कम हुआ तो और गहरे नलकूप खोद लिए। लेकिन हमने शायद ही कभी अपने उपभोग के स्वरूप पर प्रश्न उठाया हो। तो भाई, सबसे पहले तो बात ये है कि हम जो ये उपभोग कर रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं कि ये फ्री में है, उसको हमने सीमित करना है। क्योंकि अगर जब तक तो हमें ज़रूरत है चीज़ की, तब तक हम उसका उपभोग करें वो तो ठीक है, लेकिन जब ये हमारे जीवन शैली का प्रमाण बन जाए, देखा देखी में ही ये बातें हो जाएं, वो बात गलत है। हमने ये अपनी जीवन शैली नहीं बनानी है, ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों का उपभोग करना है और अपने पर्यावरण को बचाना है, अपने देश को, समाज को हरा भरा सुरक्षित रखना है। और इस प्रोग्राम में हमें आगे बढ़ना है, एक अंतराल, उसके बाद प्यारा सा गीत सुनना है।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

0: वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श डे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
1: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
2: भाभी, चुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
3: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: बिल्कुल जी, सबको सलाम है और ये प्यार भरा सलाम तो आपने कबूल कर ही लिया होगा हमारा। और ये जो गीत आपने सुना वो आशा फिल्म से था, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में। जी, सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम, इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। अब एक अंतराल और उसके बाद इतिहास की बातें आपके साथ करेंगे।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: अरे बेटा जीवन, क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
5: ताऊ जी, अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
6: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
7: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुक्खू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुक्खू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: जी, तो इस अंतराल के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम में। और अब आइए आगे बढ़ते हैं, इतिहास की बातें करते हैं। आज 7 जून का दिन है और आज 7 जून के साथ कौन कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं जुड़ी हुई हैं, आइए आपको बताते हैं।

0: 7 जून 1539 की बात हम करें तो बक्सर के पास चौसा की लड़ाई में अफगान शेरशाह सूरी ने 1539 में मुगल बादशाह हुमायूं को हराया था। इंग्लैंड ने 1546 में स्कॉटलैंड या फिर आयरलैंड के साथ आंद्रेस शांति समझौता आज ही के दिन किया था। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन दास व्यापार खत्म करने पर 1862 को राजी हुए थे आज ही के दिन 7 जून को, और 7 जून को ही महात्मा गांधी जी ने 1893 में दक्षिण अफ्रीका में प्रथम बार सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। वेटिकन सिटी पूर्ण संप्रभु राष्ट्र 1928 को बना था और जॉर्ज षष्ठम तथा एलिजाबेथ 1939 में ब्रिटेन के पहले राजा और रानी बने थे जिन्होंने अमेरिका का दौरा किया था। सोनी कॉरपोरेशन ने 1966 में अपने नए ब्रांड वाला वीडियो टेप रिकॉर्डर पेश किया था 7 जून के दिन। पहले विश्व कप का पहला मैच 1975 में भारत इंग्लैंड के बीच लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में खेला गया था। भारत के दूसरे उपग्रह भास्कर 1 को 1989 में सोवियत संघ के बियर्स लेक से छोड़ा गया था आज ही के दिन 7 जून को। 7 जून के ही दिन नॉर्मन थैगार्ड अंतरिक्ष की कक्षा में सबसे लंबे समय तक रहने वाले अमेरिकी 1995 में अंतरिक्ष यात्री बने थे। एक अमेरिकी अदालत द्वारा वर्ष 2000 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को दो भागों में बांटने का निर्देश भी आज ही के दिन दिया गया था, और आज ही के दिन यानी कि 7 जून वर्ष 2006 में भारत द्वारा नेपाल को आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए 1 अरब रुपए देने का निर्णय लिया गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने रसोई गैस पर लगने वाले 4% वैट को पूरी तरह से 2008 में समाप्त घोषित किया था आज ही के दिन। और 7 जून की हम बात कर रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश ने स्टेम सेल के अनुसंधान को मंजूरी देने के विरुद्ध दूसरी बार वीटो का प्रयोग वर्ष 2008 में किया था। और आपको बताएं, मुगल बादशाह शाहजहां की बीवी मुमताज बेगम का 1631 में आज ही के दिन निधन हुआ था, जिसके बाद में उन्हीं की याद में ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। और भारत के टेनिस खिलाड़ी महेश भूपति का जन्म 1974 में 7 जून के दिन हुआ था। और 7 जून को हम मनाते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में। इसका मुख्य उद्देश्य जो है वो है लोगों को दूषित भोजन से होने वाले स्वास्थ्य खतरों के प्रति जागरूक करना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाना। जी हाँ, इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन द्वारा दिसंबर 2018 में की गई थी, जिसके बाद से इसे पहली बार 2019 में मनाया गया। इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है, और उद्देश्य इसका होता है खेत से थाली तक सुरक्षित भोजन के महत्व को समझना, ताकि खाद्य जनित बीमारियों को रोका जा सके। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2026 की बात करें तो इस अभियान का शुभारंभ इस वर्ष के विषय बोझ से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन इसके विवरण के साथ किया गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नेतृत्व में इस वर्ष का अभियान खाद्य जनित रोगों के बोझ और उन्हें रोकने के लिए विज्ञान आधारित समाधानों पर प्रकाश डालने के लिए समर्पित है। तो आज हम ये दिवस मना रहे हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, और हमने भी ध्यान देना है, जागरूक होना है अपने जो हम खाते हैं उन चीज़ों के प्रति, और औरों को भी जागरूक करना है कि हम अच्छा खाएं, पौष्टिक खाएं, स्वस्थ रहें और अच्छा जिएं, अच्छा सोचें। क्योंकि बोलते हैं ना, खाना जो है वो हमारे मन के हमारे विचार को भी प्रभावित करता है। तो शुद्ध अन्न हो, शुद्ध मन हो, यही हमारी कामना है। जी, सुप्रभात हमीरपुर, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, सुबह के 7:24:40 हुए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, एक अंतराल, उसके बाद प्यारा सा गीत सुनते हैं।
1: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
2: अरे भाई, खुशी तो होगी। अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
3: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
4: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
6: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
4: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
6: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
4: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

अभी तो मैं जवान हूँ। जी हाँ, इसी फिल्म का ये गीत आप सुन रहे थे, आवाज़ कुमार सानू और साथियों की थी। लेकिन ये गीत सुनकर आपको याद आ रही होगी किशोर कुमार की, क्योंकि ये गीत सबसे पहले किशोर कुमार जी ने गाया था, ये उनके आगे रीमेक था। तो चलिए, ये गीत हमने सुना सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम में। अब आगे बढ़ते हैं और समाचार पत्रों से ताज़ा तरीन खबरों की बातें आपके साथ साझा करते हैं। सबसे पहली खबर की हम बात करें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को आर्थिक सलाहकार परिषद EACPM के सदस्यों के साथ बैठक कर वैश्विक उथल पुथल के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के भारत और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभाव का भी आकलन किया गया। अधिकारियों के अनुसार बैठक में अर्थव्यवस्था को गति देने के विभिन्न सुझावों और नीतिगत उपायों पर विचार हुआ। इसके अलावा ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर बनाने से जुड़े सुधारों पर भी चर्चा की गई। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर प्रधानमंत्री को सलाह देता है। बैठक में प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव PK मिश्रा और शक्तिकांत दास भी मौजूद रहे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारत के युवा राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत हैं और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में उनकी प्रमुख भूमिका है। मांडविया ने शनिवार को माय भारत युवा सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने युवाओं से अपनी क्षमता को पहचानने और उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने का आह्वान करते हुए कहा, ये समय युवाओं का है, हमें मिलकर एक प्रतिस्पर्धी, आत्मविश्वासी और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना होगा जो 140 करोड़ नागरिकों के सपनों को साकार करे। इस सम्मेलन में देशभर से 6000 से अधिक युवा प्रतिभागियों ने भाग लिया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने UGC नेट जून 2026 परीक्षा का विषयवार शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा 22 से 30 जून के बीच आयोजित की जाएगी। पूरी परीक्षा ऑनलाइन यानी कंप्यूटर आधारित टेस्ट CBT मोड में होगी। इस दौरान 80 से अधिक विषयों के लिए परीक्षाओं का आयोजन प्रतिदिन दो शिफ्टों में होगा। NTA ने बताया कि पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे के बीच होगी। वहीं एक खबर ये भी है कि राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने नीट UG की 21 जून को दोबारा होने वाली परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने या बेचे जाने के दावों को पूरी तरह खारिज कर दिया है। सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों को फर्जी और भ्रामक बताते हुए NTA ने ऐसी सामग्री फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। अगली खबर के बारे में आपको बताएं, केंद्र सरकार ने उपभोक्ताओं को अलग अलग ब्रांड के तेल की कीमत समझने में आसानी के लिए खाने के तेल के 9 मानक पैक साइज तय कर दिए हैं। अब कंपनियां 200 ml से 20 लीटर तक के तय पैक में ही तेल बेच सकेंगी। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने 200 ml, 500 ml, 1, 2, 3, 4, 5, 15 और 20 लीटर के पैक निर्धारित किए हैं। ये नियम सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी, पाम, मूंगफली, तिल, राइस ब्रान और कॉर्न ऑयल समेत मिश्रित खाद्य तेलों पर लागू होगा। कंपनियों और आयातकों को नए नियम लागू करने के लिए 3 महीने का समय दिया गया है। सरकार का कहना है कि इससे उपभोक्ताओं को कीमतों की तुलना करने में आसानी होगी और बाजार में भ्रम कम होगा। बात करें मौसम की तो प्रदेश में मॉनसून आने से पहले ही मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है। जून के शुरुआती दिनों में ही अब तक सामान्य से 13% अधिक बारिश जो है वो दर्ज की गई है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 7 से 10 जून के बीच वेस्टर्न डिस्टरबेंस थोड़ा कमजोर पड़ सकता है, लेकिन मौसम पूरी तरह साफ नहीं रहेगा। इस दौरान कई क्षेत्रों में हल्की बारिश होने के आसार हैं और वहीं 11 जून से एक और वेस्टर्न डिस्टरबेंस जो है वो सक्रिय होगा, जिससे राज्य के अधिकांश हिस्सों में फिर बारिश की संभावना है। वहीं हम देश के अन्य भागों के बारे में बात करें तो मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण पश्चिम मॉनसून गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में पहुंच गया है। देश के पश्चिमी तटों पर मॉनसून की चाल अच्छी रहेगी। केरल में भारी बारिश जारी है। 5 जिलों में रेड अलर्ट यानी कि 24 घंटे में 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होगी और ओडिशा के भुवनेश्वर में तेज

आंधी तूफान के साथ भारी बारिश हुई। खेल खबरों की बात करें तो भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रागनंदा ने नॉर्वे शतरंज खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है। प्रागनंदा ने अंतिम दौर में जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराया और ये खिताब जीतने वाले वो पहले भारतीय हैं जिन्होंने 18 अंकों के साथ शीर्ष स्थान जो है वो हासिल किया है। खेल खबरों की बात हम कर रहे हैं तो देखिए, युवा हॉकी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को एशिया का चैंपियन बना दिया है। जी हां, अंडर 18 हॉकी टीम ने जापान को 4-1 से हराकर रिकॉर्ड तीसरी बार एशिया कप जीत लिया है। भारत 2001 और 2016 में भी खिताब जीत चुका है और ये हमारी ओर से सभी हॉकी टीम को, पूरी हॉकी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी तो अब इन्हीं खबरों के साथ जो हमने आपके साथ साझा की, अब आज का सुप्रभात हमीरपुर कार्यक्रम होता है यहीं समाप्त। तो इजाजत दीजिए, एक बार फिर आप सभी से कहते हैं सुप्रभात हमीरपुर।

सुप्रभात हमीरपुर। अभी आप ये कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। सुबह के 7:35 हो चुके हैं। अब आइए सुनते हैं लोक संसार कार्यक्रम।

लोक संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार भावना कतना की तरफ से। और आज देखिए रविवार है, आज के दिन फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं लोक संसार कार्यक्रम। और देखिए आज के इस कार्यक्रम में हम कुछ बात करेंगे, हिमाचल से जुड़ी आपको जानकारी देंगे और हमीरपुर से जुड़ी खबरें आपके साथ साझा करेंगे। तो हिमाचल की बात करें तो देखिए आप सब जानते हैं, हम सबको पता है कि हिमाचल प्रदेश भारत के सबसे खूबसूरत राज्यों में से एक है। खासकर देखिए लोग जब यहाँ पे घूमने आते हैं, और आजकल तो देखिए पीक सीजन चल रहा है, हिमाचल में इतने लोग आ रहे हैं क्योंकि यहाँ की हरी भरी वादियाँ उनको लुभाती हैं, ठंडा मौसम जो औरों के कंपैरिजन में ठंडा है वो लुभाता है, इसीलिए लोग आते हैं। और यहाँ आके वो हरी भरी वादियाँ हिमाचल की तो देखते ही हैं, और यहाँ आकर वो कुछ एडवेंचर टूर भी करते हैं। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में वाइट वाटर राफ्टिंग से लेकर पैराग्लाइडिंग तक कई तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स जो हैं वो उपलब्ध हैं, और आज इन्हीं स्पोर्ट्स के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश में विभिन्न प्रकार के एडवेंचर स्पोर्ट्स गतिविधियाँ हैं जो पेशेवरों और शौकिया लोगों सहित सभी स्तरों के लिए उपयुक्त हैं। तो आइए इनके बारे में हम आपको बताते हैं, पर पहले ये लोकगीत सुन लेते हैं।

जी, ये लोकगीत हमने सुना शेर सिंह और साथियों की आवाज़ों में, और लोक संसार कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। जी, अब आपको बताते हैं, आज हम बात कर रहे हैं हिमाचल में होने वाले एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले ट्रैकिंग की बात करते हैं। तो क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ जो आते हैं वो ट्रैकिंग के इरादे से आते हैं, बहुत अच्छा लगता है उन्हें हरे भरी वादियों में ट्रैकिंग करना। तो हिमाचल प्रदेश के बेहद विविध भू दृश्यों में एक रोमांचक साहसिक यात्रा का अनुभव करें तो कुल्लू मनाली के सुव्यवस्थित रास्तों पर रंग बिरंगे जंगली फूलों से लेकर स्पीति घाटी में छिपे हुए मठों तक ले जाने वाले चुनौतीपूर्ण ऊंचाई वाले ट्रैक तक आपकी शारीरिक क्षमता और रुचियों के अनुरूप ट्रैक मौजूद हैं। फूलों से लदे मैदानों, जानवरों से भरे घने जंगलों और पहाड़ी दर्रों को पार करते हुए ग्लेशियर से पोषित खूबसूरत झीलों और मनमोहक नज़ारों तक पैदल यात्रा करें। धौलाधार पर्वतमाला की बर्फ से ढकी चोटियों से घिरे खूबसूरत कैंपिंग स्थलों के कारण त्रियुंड ट्रैक हिमाचल प्रदेश के सबसे लोकप्रिय ट्रैकों में से एक है, जबकि हमटा पास ट्रैक से पीर पंजाल पर्वतमाला के मनमोहक दृश्य दिखाई देते हैं। पीन पार्वती पास ट्रैक शुरुआती लोगों के लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि ये कुछ ऊंचाई वाले घास के मैदानों से होकर गुजरता है। बात करें रिवर राफ्टिंग की, तो अगर आप हिमाचल प्रदेश की असंख्य नदियों में बहने वाले रोमांचकारी जलप्रपातों का अनुभव करना चाहते हैं तो चिंता ना करें, क्योंकि यहाँ कई विकल्प मौजूद हैं। कुल्लू मनाली में व्यास नदी है जबकि शिमला में सतलुज नदी है। ये दोनों नदियाँ राफ्टिंग के रोमांच के शौकीनों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं। इस खेल में भाग लेते समय कुछ हिस्से ऐसे होंगे जहाँ चप्पू चलाना आसान होगा, जबकि कभी कभी इसके लिए कुछ तकनीकों की आवश्यकता होगी। चट्टानों के बीच से निकलने के लिए टीम वर्क का उपयोग करें, इससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि कठिन रास्तों या चरणों को पार करने में टीम वर्क कितना मददगार होता है। और भी अधिक रोमांच के लिए कुल्लू में सिंधु नदी पर व्हाइट वाटर राफ्टिंग का विकल्प चुनें, जो अपनी कठिन धाराओं और मनमोहक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। रिवर राफ्टिंग हिमाचल प्रदेश के सबसे रोमांचक साहसिक खेलों में से एक है। और ऐसे ही बात करें पैरा ग्लाइडिंग की, जी हाँ, ये भी सबसे रोमांचक साहसिक खेलों में से एक है। हिमाचल प्रदेश में पैरा ग्लाइडिंग एक साहसिक खेल है जहाँ आप नौसिखिए हों या अनुभवी, विशेषज्ञ पायलटों के साथ उड़ान भरेंगे। मनाली में पैरा ग्लाइडिंग नवविवाहित जोड़ों और रोमांच के शौकीनों के लिए विशेष रूप से बेहतरीन है। एक पक्षी की तरह पहाड़ों के ऊपर उड़ान भरें और हिमाचल प्रदेश की अद्भुत सुंदरता को एक मनमोहक दृश्य के माध्यम से निहारे। जी, बीड़ बिलिंग कांगड़ा जिले में स्थित है और इसे भारत की पैराग्लाइडिंग राजधानी कहा जाता है, और इसके पीछे ठोस कारण है। पहाड़ की चोटी से उड़ान भरकर आप ताजी पहाड़ी हवा का आनंद लेते हुए धीरे धीरे हवा में उड़ते हैं और नीचे फैली घाटियों और पहाड़ों के विस्तृत नजारों की सराहना करते हैं। हिमाचल प्रदेश में ये एक रोमांचक हवाई खेल अवश्य आजमाना चाहिए। बात करें माउंटेन बाइकिंग की, तो हिमाचल प्रदेश के छिपे हुए रास्तों को खोजें और माउंटेन बाइकिंग के रोमांच का अनुभव करें। ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर सवारी करें और रास्ते में आने वाली चुनौतियों का सामना करें, आपको इन रोमांचक रास्तों पर आनंद का अनुभव होगा। हालांकि अगर आपको अत्यधिक रोमांच पसंद है और आप एक अनुभवी बाइकर हैं तो आप स्पीति घाटी के कठिन पहाड़ी रास्तों या फिर मनाली के चुनौतीपूर्ण पहाड़ी क्षेत्रों को चुन सकते हैं। मैक्लोडगंज के विभिन्न स्तरों के सुंदर मार्ग हैं जो इसे माउंटेन बाइकिंग का अनुभव करने के इच्छुक नौसिखियों के लिए उपयुक्त बताते हैं। और वहीं कैंपिंग जो है ना, बहुत ही भाती है सबको। रोजमर्रा की भागदौड़ से दूर होकर प्रकृति से जुड़ें और तारों से भरे आकाश का आनंद लें। हिमाचल प्रदेश में शांत कैंपिंग स्थल हैं जहां आपको अद्भुत नज़ारे देखने को मिलेंगे। यहां आपको शांति का अनुभव होगा और आप अविस्मरणीय यादें बना सकेंगे। आप बहती नदी के किनारे या जंगली फूलों से भरे घास के मैदान में अपना टेंट लगा सकते हैं। अगर आप रोमांच का अनुभव करना चाहते हैं तो बर्फ से ढके पहाड़ों के नीचे कैंपिंग

0: सकते हैं, जहां से मनमोहक दृश्य दिखाई देता है। कैंपिंग जो है शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी से दूर प्रकृति का भरपूर आनंद लेने का एक शानदार अवसर है। और ऐसे ही स्पोर्ट्स की बात हम करें तो रॉक क्लिम्बिंग है, रैपलिंग है, और मछली पकड़ने जैसे जीप सफारी, आइस स्केटिंग, ये कई वो स्पोर्ट्स जो हैं वो शामिल है। आइस स्केटिंग की बात करें तो शिमला के आइस रिंक पर स्केटिंग का आनंद लें और हिमाचल प्रदेश की सर्दियों की जादुई दुनिया में खो जाएं। ठंड के दिनों में आप परिवार और दोस्तों के साथ प्राकृतिक रूप से बनी बर्फ पर आइस स्केटिंग का लुत्फ उठा सकते हैं। ये खेल आपको गर्म और चुस्त रखने का बेहतरीन तरीका है। सर्दियों के मौसम में आप कुफरी, मनाली में आइस हॉकी, स्केटिंग और स्कीइंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। जी, कुफरी को हिमाचल प्रदेश की खेल राजधानी के रूप में जाना जाता है। स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध ये स्थान बर्फ से ढके सफेद परिदृश्य से परिपूर्ण है। ढलाने, ऊंचाइयां और बर्फ की चादर इसे स्कीइंग के लिए सबसे रोमांचक मंच बनाती है। तो भाई देखिए, ये हमने बताए आपको एडवेंचर स्पोर्ट्स जो हिमाचल में किए जाते हैं। जब भी आप हिमाचल आएं तो इनका लुत्फ ज़रूर उठाएं। और हम लुत्फ अब उठाते हैं एक लोकगीत का इस अंतराल के बाद।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

जी, कर्नल राणा और साथियों की आवाज़ों में आपने ये गीत सुना। और अब लोक संसार कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और हमीरपुर से जुड़ी कुछ खास खबरें आपके साथ साझा करते हैं। सबसे पहली खबर की हम बात करें तो उपायुक्त गंधर्वा राठौर ने शनिवार को हमीर भवन में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर संबंधित योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, शिक्षा, जल शक्ति, बिजली बोर्ड, कृषि बागवानी, ग्रामीण विकास, लोक निर्माण सहित कई विभागों की योजनाओं की स्थिति पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने कहा कि ये सभी योजनाएं सीधे तौर पर आम जनता से जुड़ी हुई हैं, इसीलिए इनके क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा इन योजनाओं की नियमित रूप से समीक्षा की जा रही है। बैठक में एडीसी अभिषेक गर्ग, नगर निगम आयुक्त एसी टू डीसी चिराग शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जी, अगली खबर की हम बात करें तो जिला के प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स को जेईई और नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं के लिए निशुल्क कोचिंग मिलेगी। जिला प्रशासन ने नई पहल करते हुए एमओयू साइन किया है। इस योजना के तहत महिला उद्यमियों की ओर से जो प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं उन्हें मार्केट भी उपलब्ध करवाई जाएगी और इसका सबसे बड़ा लाभ स्टूडेंट और महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक तौर पर होगा। जिला हमीरपुर के विभिन्न शिक्षण संस्थानों के प्रतिभाशाली स्टूडेंट्स विशेषकर छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने के लिए जिला प्रशासन ने स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से ये पहल की है। इस संबंध में शनिवार को बचत भवन में आयोजित शिक्षा और ग्रामीण उद्यमिता सम्मेलन नवदिशा में डीसी गंधर्वा राठौर ने बताया कि जिला प्रशासन ने वीनस फाउंडेशन के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसके तहत वीनस फाउंडेशन जिला हमीरपुर के चयनित प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को 11वीं कक्षा से फिजिक्स वाला का ऑनलाइन पैकेज निशुल्क उपलब्ध जो है वो करवाएगी। अगली खबर की बात हम करें तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शिमला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम और प्रदर्शनी में हमीरपुर जिले के स्कूलों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विभिन्न प्रतियोगिताओं में पुरस्कार प्राप्त जिले का नाम रोशन किया है। राजकीय कन्या सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीरपुर को पर्यावरण संरक्षण एवं जागरूकता गतिविधियों में उल्लेखनीय योगदान के लिए बेस्ट इको क्लब अवार्ड द्वितीय पुरस्कार में 20,000 रुपये, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल भलेट को पर्यावरण संरक्षण पर स्कूल लीडरशिप अवार्ड में 50,000 रुपये की राशि जो है वो प्रदान की गई। राज्य स्तरीय पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह ने सभी विजेताओं को सम्मानित किया तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति स्टूडेंट्स और शिक्षकों द्वारा किए जा रहे प्रयासों की सराहना की। जी, और एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दें, लाइनों और उपकरणों की आवश्यक मरम्मत के चलते विद्युत उपमंडल 2 हमीरपुर में रविवार को यानी कि आज विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। एसडीओ सौरभ राय ने जानकारी देते हुए बताया कि इस दिन हीरानगर सर्किट हाउस, डांगक्वाली वन विभाग की कॉलोनी, एसडीएम आवास, बिजली बोर्ड ऑफिसर कॉलोनी, ठाकुर नर्सिंग होम, नादौन चौक, गांधी चौक, वार्ड नंबर 8, बरोहा, औद्योगिक क्षेत्र बलही, मोही, स्वाहल, जमली और आसपास के क्षेत्रों में सुबह 9 बजे से साय 5 बजे तक बिजली बंद रहेगी। उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से सहयोग की अपील की है।

0: जी, तो ये था आज का लोक संसार कार्यक्रम। उम्मीद है आज जो हमने हिमाचल से जुड़ी जानकारी आपको दी और हमीरपुर ज़िले से जुड़ी जो खबरें साझा की वो आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियां साबित होंगी, आप इनसे लाभ अवश्य उठाएंगे। तो अब देखिए कार्यक्रम का समय हो रहा है समाप्त, इजाज़त दीजिए भावना कतना को, नमस्कार। लोक संसार कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 8 बजने को हैं अब समाचार प्रभात का अंक और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज का अंक आकाशवाणी दिल्ली से रिले किया जाएगा।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने कहा वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और फुटबॉल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6 बार सैफ महिला चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया। समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों के खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में BSF के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
5: गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने

0: कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। NTA ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। NTA ने उम्मीदवारों, अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। बैठक के दौरान विदेश मंत्री ने कहा कि भारत और नेपाल अपनी और विशिष्ट रूप से खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग करते हैं और दोनों देश हमेशा आवश्यकता के समय एक दूसरे के साथ खड़े हैं।
2: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
1: नेपाल के विदेश मंत्री श्री शिशिर खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि नेपाल और भारत केवल दो देश नहीं बल्कि एक गौरवशाली प्राचीन सभ्यता के साझेदार हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में 2044 तक भारतीय यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है।
3: अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ के एशिया प्रशांत क्षेत्र के उपाध्यक्ष शेल्डन ही ने कल ब्राजील में बताया कि भारत पिछले कई वर्षों से एशिया प्रशांत क्षेत्र के विमानन विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते घरेलू नागर विमानन बाजारों में से एक है। श्री शेल्डन ने यह भी कहा कि इस क्षेत्र में पिछले 5 से 10 वर्षों में मजबूत वृद्धि हुई है और भविष्य में भी इसके मजबूत बने रहने की आशा है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ 370 से अधिक एयरलाइनों का प्रतिनिधित्व करता है या वैश्विक हवाई यातायात का लगभग 85% हिस्सा है। 82वीं अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ वार्षिक आम बैठक और विश्व हवाई परिवहन शिखर सम्मेलन 6 से 8 जून तक ब्राजील में आयोजित किए जा रहे हैं। समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है, साथ ही दक्षिणेश्वर और कालीघाट जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुविधाओं में भी सुधार किए जाएंगे। उन्होंने पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाया कि पिछले 15 वर्षों में पश्चिम बंगाल रोजगार के अवसरों कमी और भ्रष्टाचार से ग्रस्त रहा। श्री अधिकारी ने कहा कि तृणमूल कांग्रेस शासन की सरकार ने विकास के बजाय तुष्टीकरण की राजनीति को बढ़ावा दिया। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस की कीमत 913 रुपए से बढ़कर 942 रुपए हो जाएगी। रूस ने कहा है कि यूक्रेन ने सेंट पीटर्सबर्ग और उसके आसपास के इलाकों पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। रूस ने लेनिनग्राद क्षेत्र के आसपास 140 से अधिक ड्रोन मार गिराए गए।
4: गवर्नर अलेक्जेंडर ड्रोज डेंको ने निवासियों से घरों के अंदर रहने का आग्रह किया है। श्री ड्रोज डेंको ने कहा है कि किसी बड़े नुकसान की सूचना नहीं मिली है, हालांकि कई जिलों में ड्रोन का मलबा गिरने की सूचना मिली है। इससे आवासीय भवनों को मामूली नुकसान हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी ड्रोनों ने सेंट पीटर्सबर्ग क्षेत्र तक की दूरी तय की और दुश्मन नौसेना के शस्त्रागार और क्रोनस्टेड में एक अड्डे को निशाना बनाया। ज़ेलेंस्की के आज ब्रिटेन का दौरा करने और यूक्रेन के निकट यूरोपीय सहयोगियों प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत की आशा है। समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा।
1: इसराइल के हमले में 2 महिलाओं सहित कम से कम 7 फलस्तीनी मारे गए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि कल काहिरा में मध्यस्थों ने हमास और अन्य गुटों के साथ तनावपूर्ण युद्ध विराम समझौते को सुरक्षित रखने के लिए बातचीत फिर से शुरू की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता से हुआ युद्ध विराम इसराइल के हमलों को रोकने में विफल रहा है और इसराइल ने गजा के आधे से अधिक हिस्से पर नियंत्रण बनाए रखा है। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो भारत पहुंच गए हैं। श्री सुगियानो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में कल भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। 7 साल बाद भारतीय टीम ने ट्रॉफी अपने नाम की है। एक रिपोर्ट।
5: गोवा के मडगांव में खेले गए सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही भारतीय महिला टीम ने 7 साल बाद इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को फिर अपने कब्जे में लिया। खिताबी मुकाबले की शुरुआत में ही दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहले हाफ में भारत की ओर से प्यारी झाकसा गोल करके टीम को बढ़त दिलाई। पहले हाफ की समाप्ति तक दोनों टीमें 1-1 की बराबरी पर थी। दूसरे हाफ में भारतीय टीम पूरी तरह हावी नजर आई। संतफिदा ने शानदार गोल कर भारत को फिर बढ़त दिलाई, जबकि लिंडा कॉम ने 3री गोल दाकर जीत पर मुहर लगा दी। इसके बाद बांग्लादेश की टीम वापसी नहीं कर सकी और भारत ने 3-1 से मुकाबला अपने नाम कर लिया। पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम ने फाइनल में भी अपना दबदबा कायम रखा और ब्लू टाइग्रेस ने एक शानदार जीत के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। आकाशवाणी समाचार के लिए पणजी से निखिल उपाध्याय।
1: और अब अन्य खेल खबरों के साथ हैं वीरेंद्र कौशिक।
6: भारत एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में अफगानिस्तान के साथ नया चंडीगढ़ में आज दूसरे दिन अपनी पहली पारी में 3 विकेट के नुकसान पर 368 रन के स्कोर से आगे खेलना शुरू करेगा। केएल राहुल और कप्तान शुभमन गिल के शतक के बदौलत भारतीय टीम मजबूत स्थिति में

0: कप्तान होंगे। वैभव सूर्यवंशी को पहली बार टीम में शामिल किया गया है। हॉकी में जापान के काका मिगाहारा में भारत की अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कल भारत ने जापान को 4-1 से हराया।
1: केरलम के 7 जिलों त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड में आज तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश के शेष 7 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है।
2: केरलम में तेज बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल भी केरलम में मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। खराब मौसम और ऊंची समुद्री लहरों को देखते हुए केरलम के तटीय क्षेत्रों में मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। तिरुवनंतपुरम से स्मिथि एम पुलुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पूजा।
1: विभाग ने कर्नाटक के तटीय इलाकों माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, कोंकण तथा गोवा, लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, हिमालय के तटीय क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी के कुछ हिस्सों में भी आज वर्षा की संभावना है। आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ स्थानों पर आज गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आंध्र प्रदेश के भाग और ओडिशा के कुछ हिस्सों में आज लू चलने की संभावना है। ओडिशा में आज रात गर्म मौसम रहने का अनुमान है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आर्थिक रफ्तार को तेज करने की खबरें सभी अखबारों में हैं। लोक सत्य की सुर्खी है, आर्थिक मोर्चे पर निपटने के लिए बनाई गई रणनीति। पत्र ने इसी विषय पर डील, मौसम और चुनौतियां शीर्षक देकर संपादकीय में लिखा है कि सवाल केवल तेल का नहीं, बाकी बहुत सी चीजें हैं जिन पर भारत निर्यात में अग्रणी है। पत्र आगे लिखता है, मॉनसून अच्छा रहे, युद्ध के बादल छट जाएं, इससे बड़ा सुकून भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए और क्या हो सकता है। अमर उजाला की खबर है, नेपाल की नई सरकार के साथ नई गर्माहट। नेपाल के विदेश मंत्री बोले, भारत के साथ संबंध सर्वोच्च प्राथमिकता। पत्र ने इस खबर को शीर्षक दिया है, अतीत का कोई भी बोझ भारत से रिश्तों में बाधा नहीं। दिल्ली से सिलीगुड़ी तक दौड़ेगी बुलेट ट्रेन, 6 घंटे में ही तय हो जाएगा सफर। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, पश्चिम बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय का असर रेल परियोजनाओं पर दिखने लगा है। राजस्थान पत्रिका की खबर है, भारत में छोटे परिवार की चाहत से बूढ़ा हो रहा युवा भारत। पत्र ने ढलान पर जलमदर की खतरे की घंटी बताते हुए लिखा है कि अगले 20-30 साल बाद युवा कामगारों की संख्या घटेगी। अखबारों ने खेल जगत की 3 महत्वपूर्ण खबरों को एक साथ दिया है। नवभारत टाइम्स ने प्रज्ञान नंदा के नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने, वैभव सूर्यवंशी के सबसे कम उम्र में भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाने और रूस की 19 वर्षीय मीरा आंद्रीवा के फ्रेंच ओपन टेनिस के महिला सिंगल्स का खिताब जीतने की खबरें एक साथ दी हैं। दैनिक ट्रिब्यून कहता है, खेलों का शानदार शनिवार, हॉकी से शतरंज तक युवाओं की बिसात। हिंदुस्तान ने लद्दाख के प्रति पर्यटकों की बढ़ती रुचि पर लिखा है, लोगों को भा रहा है ठंडा रेगिस्तान। पत्र के अनुसार 2020 में अटल टनल खुलने के बाद से पर्यटकों की पहुंच बेहतर हुई।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी रखने का आह्वान किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 की पुनः परीक्षा प्रश्न पत्र लीक होने के कथित दावों का खंडन किया। अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी। पश्चिम बंगाल सरकार राज्य के प्रमुख धार्मिक स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर विकास कार्य शुरू करेगी। भारत ने नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं सौंपी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ ने कहा, वर्ष 2044 तक एशिया प्रशांत क्षेत्र में हवाई यातायात में तेजी लाने में भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और भारत ने बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार सैफ महिला चैंपियनशिप जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सायरा मुज्तबा। द हेडलाइंस। होम मिनिस्टर अमित शाह कॉल्स फॉर शार्पर विजिल ऑन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स एंड सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टीज अलोंग इंटरनेशनल बॉर्डर्स। National Testing Agency dismisses claims of NEET UG 2026

मंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शनिवार को हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में रोजगार, स्वास्थ्य, किसानों, कर्मचारियों और स्वरोजगार से जुड़े कई बड़े फैसले लिए गए। कैबिनेट ने विभिन्न विभागों में 1400 से ज्यादा पद भरने को मंजूरी देकर बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत दी है। सबसे ज्यादा पद स्वास्थ्य विभाग में भरने की मंजूरी दी गई है ताकि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकें। कैबिनेट के करुणामूलक आधार पर पहले अस्वीकृत मामलों की दोबारा समीक्षा का भी फैसला लिया है। सरकार एकमुश्त विशेष उपाय के तहत योग्य मामलों को राहत देगी। मंत्रिमंडल ने स्टडी लीव पर जाने वाले कर्मचारियों को पूरा वेतन देने का निर्णय लिया। जिन कर्मचारियों ने पहले स्टडी लीव ली थी उन्हें भी बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा 7 साल की सेवा पूरी कर चुके अंशकालिक कर्मचारियों को दैनिक वेतनभोगी बनाया जाएगा। बैठक में पूर्व कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर द्वारा जारी 80 पोस्ट कोड के विज्ञापन वापस लेने तथा संबंधित अभ्यर्थियों को 4.27 करोड़ रुपए परीक्षा शुल्क लौटाने का निर्णय भी लिया गया। मंत्रिमंडल ने राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना का 4वां चरण शुरू करने को मंजूरी दी। योजना के तहत ई बस खरीदने पर 50% और डीजल बस खरीदने पर 30% सब्सिडी मिलेगी। वहीं चिकित्सा और वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए भांग की खेती को विनियमित करने हेतु NDPS नियमों में संशोधन को मंजूरी दी गई। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर देश विदेश से आने वाले सैलानी अब स्वच्छ स्ट्रीट फूड का लुत्फ उठा सकेंगे। खाद्य सुरक्षा विभाग, नेशनल एसोसिएशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स ऑफ इंडिया और नेस्ले इंडिया ने प्रदेश में सर्व सेफ फूड परियोजना के तहत 1000 वेंडरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना के तहत मंडी, कुल्लू, कांगड़ा, ऊना और शिमला जिलों के स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। खाद्य विक्रेताओं को न केवल स्वच्छता और सुरक्षित खाद्य प्रबंधन के गुर सिखाए जाएंगे बल्कि डिजिटल साक्षरता और बेहतर ग्राहक सेवा को लेकर भी प्रशिक्षित किया जाएगा। वेंडर्स को सुरक्षित डिजिटल लेन देन, UPI और वित्तीय प्रबंधन के व्यावहारिक तौर तरीके सिखाए जाएंगे। देश विदेश से आने वाले के साथ पेशेवर और विनम्र व्यवहार और FSSAI पंजीकरण की प्रक्रिया भी प्रशिक्षण का मुख्य हिस्सा होगी। सर्व सेफ फूड परियोजना के माध्यम से विक्रेताओं को स्वास्थ्य, स्वच्छता, सुरक्षित खाद्य प्रबंधन, कचरा निपटान और उद्यमिता से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को बेहतर खाद्य सुरक्षा मानकों को अपनाने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल प्रदान करना है। देश भर में ये परियोजना अब तक 27 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो चुकी है। हिमाचल की पहचान केवल प्राकृतिक सौंदर्य ही नहीं, हमारी समृद्ध खानपान संस्कृति और मेहमान नवाजी भी है। स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को प्रशिक्षित कर महत्वपूर्ण कदम उठाया जा रहा है, ये कहना है अनिरुद्ध सिंह, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री का। हमीरपुर जिला टास्क फोर्स टीम ने कई स्थानों पर पहुंचकर दुकानों में दबिश देकर नियमों की अवहेलना करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की। इस टीम ने कार्यकारी CMO डॉ. अजय अत्री की अध्यक्षता में जिले के पट्टा लद्रौर क्षेत्रों में दुकानों पर तंबाकू अभियान के तहत चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान चिट्टा मुक्त अभियान की टीम भी साथ में थी। टीम ने नियमों की अवहेलना करने वाले 7 दुकानदारों के खिलाफ दुकानदारों के चालान काटे। वहीं अब सरकारी विभागों को भी अपने भवनों के बाहर या फिर जितनी मंजिल भवन होगा उसके भीतर बोर्ड डिस्प्ले करना होगा और उसमें स्मोक फ्री क्षेत्र लिखना होगा। इसके साथ जो नोडल अधिकारी होगा उसका मोबाइल नंबर भी अंकित करना होगा ताकि किसी भी तरह की कोई शिकायत यदि आम लोग दें तो शिकायत पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। तो हिमाचल डायरी के आज के इस अंक में बस इतना ही। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। सुबह के 8:35 हुए हैं, अब से लेकर 9:20 तक आइए सुनते हैं विविध भारती के कार्यक्रम।

भाग मिल्खा भाग इस फिल्म का गीत था श्रेया घोषाल और जावेद बशीर के आवाजों में। प्रसून जोशी के बोल थे, शंकर एहसान लॉय का संगीत था।

पद्मावत फिल्म का गीत आपने सुना नीति मोहन की आवाज में, सिद्धार्थ गरिमा के बोल थे, संजय लीला भंसाली का संगीत था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक। इस कार्यक्रम के कुछ और गीत आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।

प्रेम रतन धन पायो इस फिल्म का गीत था। अन्वेषा, विनीत सिंह, हर्षदीप कौर और शाहबाब साबरी की आवाज़ों में इरशाद कामिल के बोल थे। हिमेश रेशमिया का संगीत था। श्रोताओं, आज जाने माने लेखक ख्वाजा अहमद अब्बास की जन्म जयंती है। अपने लंबे करियर में उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी, नाटक, उपन्यास, कहानियाँ सभी लिखी। 45 फिल्मों की लगभग पटकथा स्क्रीन प्ले भी लिखा। 7 जून 1914 को हरियाणा के पानीपत में इनका जन्म हुआ। एक पत्रकार के रूप में उन्होंने कॉलम भी लिखे जो भारतीय पत्रकारिता में महत्वपूर्ण भी हैं। ख्वाजा अहमद अब्बास को समानांतर सिनेमा या न्यू रियलिस्टिक सिनेमा का अग्रदूत भी माना जाता है। फिल्म नीचा नगर जो 1946 में रिलीज हुई, उसकी पटकथा भी उन्होंने लिखी, जो कांस फिल्म फेस्टिवल में मान्यता प्राप्त करने वाली पहली फिल्म थी। उन्होंने राज कपूर की कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों की कहानियां और पटकथाएं भी लिखी, जिनमें आवारा, श्री 420, मेरा नाम जोकर, भाभी और हिना भी शामिल हैं। 1969 में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म सात हिंदुस्तानी के माध्यम से उन्होंने दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन को बॉलीवुड में पहला ब्रेक दिया। साहित्य और सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1969 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया। 1 जून 1987 को ख्वाजा अहमद अब्बास ने इस फानी दुनिया को अलविदा कहा।

हिट स्टोरी फिल्म का ये गीत आपने सुना कुमार का लिखा, आवाज थी हर्षित सक्सेना की, तर्ज भी थी हर्षित सक्सेना की। विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। कार्यक्रम चित्रलोक के कुछ और गीत बस एक छोटे से ब्रेक के बाद।

विविध भारती का ये कार्यक्रम है चित्रलोक। अपने सभी श्रोताओं का इस प्रोग्राम में एक बार फिर हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जावेद अली की आवाज, फिल्म राज 3।

गीत और संगीत था राशिद खान का, जावेद अली को आपने सुना, फिल्म थी राज थ्री। श्रोताओं, आज सुप्रसिद्ध अभिनेत्री अमृता राव का जन्मदिन है, उन्हें विविध भारती परिवार की ओर से जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं। फिल्मों में आने से पहले उन्होंने कई टीवी विज्ञापनों और संगीत वीडियोस में भी काम किया। उन्होंने 2002 में फिल्म आपके बरस से अपने फिल्मी सफर की शुरुआत की, जिसके लिए उन्हें बेस्ट फिल्म फीमेल रिव्यू का फिल्म फेयर नामांकन भी मिला। 2003 में आई फिल्म इश्क विश्क में उनकी कॉलेज गर्ल की जो भूमिका थी उसने घर घर उन्हें लोकप्रिय बना दिया। मैं हूं ना जो 2004 में रिलीज हुई, इस ब्लॉकबस्टर फिल्म में संजना के उनके किरदार ने दर्शकों का दिल जीता और उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकित भी किया गया। 2007 में उन्होंने तेलुगु फिल्म अतिथि में महेश बाबू के साथ काम किया और अपनी पहचान बनाई। उन्होंने मस्ती जो 2004 में रिलीज हुई, वेलकम टू सज्जनपुर जैसी फिल्मों में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। 2016 में प्रसिद्ध रेडियो जॉकी अनमोल सूद से अमृता राव परिणय सूत्र में बंधी।

आपके भरोसे फिल्म का गीत आपने सुना, शान और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में समीर के बोल थे। विविध भारती से इस वक्त श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक, और इस कार्यक्रम के कुछ और नगमे आपको सुनवाएंगे बस एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: अभी तक आप हमारे केंद्र से विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 9:18 और 35 सेकंड हुए हैं। कुछ ही देर में 9:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी शिमला से रिले करेंगे।
1: हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
2: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश नशे के विरुद्ध जागरूकता अभियान एवं नशा मुक्ति पुनर्वास के लिए सतत प्रयासरत है। प्रदेश सरकार कुल 5 नशा मुक्ति केंद्रों का संचालन कर रही है, जिसमें निशुल्क काउंसलिंग, उपचार तथा पुनर्वास की सुविधा प्रदान की जा रही है। और कोटला बड़ोग जिला सिरमौर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला आधुनिक सुविधा युक्त आदर्श नशा मुक्ति पुनर्वास केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। विभाग द्वारा सभी जिलों में विभिन्न सरकारी विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के समन्वय से स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में बच्चों, युवाओं तथा महिलाओं हेतु जागरूकता अभियान का संचालन किया जा रहा है।
4: प्रिय प्रदेशवासियों, नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार, समाज और पूरे प्रदेश को प्रभावित करता है। हमारी युवा शक्ति ही प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है और उन्हें नशे के अंधकार से सुरक्षित रखना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रदेश सरकार नशे के समूल नाश के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूलों, कॉलेजों और गांव-गांव में व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प।
3: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
5: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कांगड़ा में आयोजित विशाल जागरूकता शिविर में जुटे देश के शीर्ष न्यायविद। शिमला का 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव कल से होगा शुरू, राज्यपाल कविंद्र गुप्ता विधिवत करेंगे शुभारंभ। केंद्र सरकार के सहयोग से केलंग में 9 जून को विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला की जाएगी आयोजित। और आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, इस वर्ष की

0: बोझ से समाधान की ओर, हर जगह सुरक्षित भोजन। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कांगड़ा द्वारा धर्मशाला में विशाल विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। इस महाशिविर में देश भर के शीर्ष न्यायविदों, न्यायाधीशों, विशेषज्ञों, अधिवक्ताओं और विद्यार्थियों ने भाग लिया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश व नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम नाथ ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना विधिक सेवा संस्थाओं का मूल उद्देश्य है। उन्होंने नागरिकों से संवैधानिक मूल्यों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक गुरमीत सिंह संधावालिया ने न्याय की सुलभता और विधिक साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डाला। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे कांगड़ा जिला संवाददाता।
1: महाशिविर में देश भर के शीर्ष न्यायविदों, न्यायाधीशों, विशेषज्ञ, अधिवक्ताओं और विद्यार्थियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम नाथ ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना विधिक सेवा संस्थाओं का मूल उद्देश्य है। उन्होंने नागरिकों से संवैधानिक मूल्य को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक गुरमीत सिंह सांदेवालिया ने न्याय की सुलभता और विधिक साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने नागरिक अधिकारों के साथ कर्तव्यों की समझ को आवश्यक बताया। शिविर में न्यायाधीश नोंग मैकापम, कोटेश्वर सिंह और संजय करोल ने भी संविधान की मूल भावना और सामाजिक जिम्मेदारियों पर विचार रखे। इस अवसर पर आपदा प्रभावित परिवारों को राहत राशि भी वितरित की गई। कार्यक्रम में विधि छात्राओं और युवाओं की भागीदारी विशेष आकर्षक रही, जिन्होंने अधिकार और कर्तव्य पर अपने विचार प्रस्तुत किए। आकाशवाणी समाचार के लिए कांगड़ा से विपुल शर्मा।
0: भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कल पालमपुर उपमंडल के प्रवास के दौरान विभिन्न प्रशासनिक चुनाव अधिकारियों के साथ चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनावों को सफलतापूर्वक संपन्न करवाने को लेकर अधिकारियों के साथ अपने व्यापक अनुभव साझा किए। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया के दौरान सामने आने वाली विभिन्न व्यावहारिक समस्याओं और अधिकारियों की शंकाओं का मौके पर ही निवारण किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार जनता की उपेक्षाओं और समस्याओं से कट चुकी है और उसका पूरा ध्यान केवल सत्ता का आनंद लेने तक सीमित है। हमीरपुर में कल नाउ फॉर क्लाइमेट अभियान के तहत आयोजित पौधरोपण कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने ये बात कही। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर विपक्ष ही नहीं, कांग्रेस के अपने नेता भी सवाल उठा रहे हैं, जो सरकार की कार्यशैली पर गंभीर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों को लेकर मुख्यमंत्री के बयान पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि लोकतंत्र में जनता का विश्वास प्राप्त कर चुनाव जीतने वाले जनप्रतिनिधियों की भूमिका को कम आंकना उचित नहीं है। 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव कल 8 जून से शुरू होगा। 12 जून तक चलने वाले इस भव्य आयोजन का शुभारंभ राज्यपाल कविंद्र गुप्ता करेंगे, जबकि समापन समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिरकत करेंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 200 कलाकार अपनी प्रतिभा का इस कार्यक्रम में प्रदर्शन करेंगे। ये मंच न केवल स्थानीय कलाकारों को अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा, बल्कि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत से भी रूबरू करवाएगा। उपायुक्त व अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव आयोजन समिति अनुपम कश्यप ने बताया कि ग्रीष्मोत्सव का उद्देश्य प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को सशक्त बनाना तथा स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन देना है। अधिक ब्यौरा हमारे शिमला जिला संवाददाता से।
2: उद्घाटन संध्या पर बॉलीवुड पार्श्व गायक शबाब शाबरी अपनी प्रस्तुतियां देकर लोगों का मनोरंजन करेंगी, जबकि दूसरी संध्या पर ज्योतिका टांगरी, तीसरी संध्या पर नाटी किंग कुलदीप शर्मा, चौथी सांस्कृतिक संध्या पर पंजाबी गायक गुरनाम भुल्लर और अंतिम समापन संध्या पर जस्सी गिल और बबल राय अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधेंगे। 5 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कई प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इस बार अंतर्राष्ट्रीय शिमला समर फेस्टिवल एडवेंचर और रोमांस से भरपूर होगा। सैलानियों व स्थानीय लोगों को हेलीकॉप्टर से शिमला की पहाड़ियों की सैर करने का भी मौका मिलेगा। इसके अलावा शिमला समर फेस्टिवल के दौरान स्कूली बच्चों के लिए भाषण प्रतियोगिता, वॉलीबॉल, डॉग शो और फूड फेस्टिवल भी आकर्षण का केंद्र रहने वाले हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR Shimla News को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार के सहयोग से लाहौल स्पीति के युवाओं, उद्यमियों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों के लिए 9 जून

0: को केलंग में एक विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जाएगी। ये कार्यशाला मार्केटिंग एंड डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल टूल्स फॉर ब्रांड बिल्डिंग विषय पर आधारित होगी। कार्यशाला में प्रतिभागियों को डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग, ऑनलाइन ब्रांड बिल्डिंग और व्यवसाय को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे बढ़ाने के बारे में जानकारी दी जाएगी। अधिक ब्यौरा हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता से।
1: कार्यक्रम का आयोजन सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से इंडोर स्टेडियम केलांग में सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा। कार्यशाला में प्रतिभागियों को डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग, ऑनलाइन ब्रांड बिल्डिंग और व्यवसाय को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे बढ़ाने के बारे में जानकारी दी जाएगी। आयोजकों के अनुसार ये प्रशिक्षण स्थानीय युवाओं, व्यवसायों और स्वयं सहायता समूह के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा। ये कार्यशाला डिजिटल युग में सफलता की नई राह दिखाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इसका उद्देश्य विश्व में भुखमरी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना और कृषि, मत्स्य व वानिकी के क्षेत्रों में टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2026 की थीम भोज से समाधान की ओर हर जगह सुरक्षित भोजन रखी है, जो इस बात पर जोर देती है कि बीमारी, उससे जुड़े बोझ और जान गंवाने वालों से जुड़ा डेटा कैसे केंद्रित और किफायती समाधानों की दिशा में कदम उठाने में मदद कर सकता है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या का कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझ खरीदारी करना आसान हो जाएगा। अखिल भारतीय कलाकार संघ के अध्यक्ष व प्रसिद्ध अभिनेता रोहिताश्व गौड़ और संघ की उपाध्यक्ष रेखा गौड़ ने कल लोक भवन शिमला में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर रोहिताश्व गौड़ ने राज्यपाल को अखिल भारतीय कलाकार संघ की गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि 71वीं वार्षिक अखिल भारतीय नाटक व नृत्य प्रतियोगिता का कल से शिमला में शुरू हुई। उन्होंने बताया कि 10 जून तक चलने वाली इस सांस्कृतिक आयोजन में देश भर से हजारों कलाकार भाग ले रहे हैं। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज समाचार पत्रों ने प्रदेश मंत्रिमंडल से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला का शीर्षक है, भांग की खेती के लिए बदलेंगे नियम, हिमकेयर में अब तक 7 से 10 लाख तक मुफ्त इलाज, 2000 पद भरेंगे। दिव्य हिमाचल के शब्द हैं, सुक्खू सरकार देगी 1300 नई नौकरियां। हिमाचल दस्तक की सुर्खी है, 1400 से ज्यादा नए पद भरने को कैबिनेट की मंजूरी। दैनिक जागरण के अनुसार 20 बीघा से कम भूमि के कब्जे नियमित होंगे, 2542 अस्वीकृत करुणामूलक नियुक्ति के मामलों पर किया जाएगा पुनर्विचार। पंजाब केसरी की एक खबर है, प्रधान उप प्रधानों का शपथ ग्रहण समारोह 15 को, मुख्यमंत्री कांगड़ा में दिलाएंगे शपथ। दैनिक भास्कर लिखता है, पर्यटक अब 600 रुपये देकर भी पहुंच सकेंगे मनाली से रोहतांग दर्रा। दैनिक सवेरा टाइम्स की सुर्खी है, अंब से कोलकाता तक गुरुमुखी एक्सप्रेस ट्रेन को सांसद अनुराग ठाकुर ने दिखाई हरी झंडी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कांगड़ा में आयोजित विशाल जागरूकता शिविर में जुटे देश के शीर्ष न्यायविद। शिमला का 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीष्मोत्सव कल से होगा शुरू, राज्यपाल कविंद्र गुप्ता करेंगे विधिवत शुभारंभ। केंद्र सरकार के सहयोग से केलंग में 9 जून को विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला की जाएगी आयोजित। और आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, इस वर्ष की थीम बोझ से समाधान की ओर हर जगह सुरक्षित भोजन। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 11 बजे। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 101.8 MHz पर। सुबह के 9:30 हुए हैं दोस्तों, और आज रविवार है, संडे का दिन है, और आज के दिन इस समय हम आपके लिए लेकर आते हैं लाइव फोन इन प्रोग्राम हेलो हमीरपुर। तो आज का हेलो हमीरपुर कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं, भावना कतना। तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। नंबर आपको बता दें, इस प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए नंबर हमारा है 01972221322, 01972223122। ये हमारा नंबर है और इस नंबर को डायल करके आप हेलो हमीरपुर कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और इस कार्यक्रम में

0: आपके मनोरंजन के लिए, आपको गीत सुनाने के लिए जो फिल्में आज हमने ली हैं वो भी आपको बता देते हैं। वो फिल्में हैं आंधी, जंजीर, तेरी मेहरबानियाँ, थैंक गॉड, पीके, गाइड और सौदागर। इन फिल्मों में से किसी फिल्म का गीत अगर आप सुनना चाहते हैं तो ज़रूर हेलो हमीरपुर कार्यक्रम में फ़ोन कीजिए और अपनी पसंद का गीत सुनिए। तो पहले कॉलर जो हैं वो फ़ोन लाइन के साथ जुड़ चुके हैं, आइए इनके साथ बातचीत करते हैं। जी हेलो हमीरपुर।
1: हेलो जी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: किशोरी लाल।
0: किशोरी लाल जी, कहाँ से बोल रहे हैं?
1: पंचरुखी से जी।
0: पंचरुखी से जी, कैसे हैं किशोरी लाल जी?
1: बहुत बढ़िया, बहुत दिनों के बाद मुलाकात हुई है भावना जी आपसे, और बीच में बंद हो गया था प्रोग्राम, ये तो बहुत दिल भी लगता था इसके लिए।
0: जी जी, और हम भी देखिए बेचैन थे अपने श्रोताओं से बातचीत करने के लिए क्योंकि हमें भी बहुत अच्छा लगता है जब अपने श्रोताओं से हमारी बातचीत होती है। तो जी, और किशोरी लाल जी क्या चल रहा है पंचरुखी में?
1: बस गर्मी है, कभी गर्मी कभी छाया कभी धूप, बस ऐसे चला हुआ है। गर्मी में बहुत गर्मी है।
0: जी जी, पर देखिए ये तो एक अच्छी बात है कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है तो थोड़ी बारिश हो रही है तो थोड़ा मौसम ठीक हो जा रहा है ना?
1: रात मिल रही है, बहुत रात मिल रही
0: है। जी जी जी जी, नहीं तो पारा तो चढ़ता ही जा रहा था, है ना?
1: बिल्कुल चढ़ता जा रहा
0: है। जी चलिए, इस गर्मी को, मौसम को तो हम नहीं रोक सकते, पर हाँ आपका मनोरंजन जरूर कर सकते हैं। तो बताइए आज कौन सी फिल्म का गीत सुनना चाहेंगे?
1: अरे आप सब ठीक ठाक, कैसे हो आप? ठीक हो?
0: बिल्कुल ठीक हैं हम, बिल्कुल ठीक हैं।
1: मैं तो अमीरपुर का बड़ा फैन हूँ, आकाशवाणी को सुनते रहता हूँ।
0: जी जी जी,
1: वो कोई पुरानी फिल्म को सुना दे फिर, कोई भी
0: आंधी फिल्म का,
1: पुरानी फिल्म कोई भी हो, आंधी हो चाहे कोई भी हो।
0: अच्छा पुरानी आपने कहा, तो पुरानी फिल्मों में हमारे पास आंधी है, जंजीर है, तेरी मेहरबानियां है, गाइड है।
1: गाइड का सुना दो।
0: जी गाइड फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: कोई भी देवानंद की फिल्म है, बहुत अच्छी।
0: अरे वाह, देवानंद की वो अदाएं याद आती हैं, है ना?
1: बिल्कुल
0: चलिए किशोरी लाल जी, धन्यवाद फोन करने के लिए। आपको गाइड फिल्म का ये गीत सुनाते हैं।

0: हेलो हमीरपुर कार्यक्रम में आपका स्वागत है
1: नमस्कार। मैं राजेश कुमार चौहान जालंधर से।
0: जी, क्या नाम बताया आपने?
1: राजेश कुमार चौहान
0: जी
1: जालंधर से।
0: जी राजेश जी, कैसे हैं?
1: बस बढ़िया मैडम, आप बताइए।
0: हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जालंधर में गर्मी कैसी पड़ रही है?
1: मैडम गर्मी तो बहुत है, पर ये जो आपने थोड़ी देर पहले ऐसी बारिश हो जाती है तो
0: जी
1: थोड़ा
0: जी
1: बहुत फर्क पड़ जाता है। तो
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: वो जून वाली जो गर्मी है वो तो नहीं अभी तक महसूस हो रही है।
0: जी,
1: हिमाचल में जब बारिश होती है तो इधर भी वो ठंडी हवाएं आ जाती हैं तो उसका
0: वही
1: थोड़ा
0: वाह,
1: फर्क पड़ जाता है।
0: क्या बात है
1: हाँ जी मैडम। तो
0: जी
1: मैडम एक काला 8 जून है तो वो तो आकाशवाणी के लिए बहुत ही खास दिन है कल, क्योंकि
0: हाँ जी
1: वो
0: हाँ
1: नब्बे
0: जी
1: बार
0: बिल्कुल 90 वर्ष जो है वो, हाँ
1: हाँ जी।
0: ये जो
1: तो आप
0: सफर
1: सभी
0: है
1: को
0: वो
1: बहुत
0: पूरा,
1: बहुत
0: हाँ।
1: आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी श्रोताओं को भी।
0: जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए जो आकाशवाणी के साथ जुड़े हुए हैं उनको देखिए आकाशवाणी की महत्ता भी पता है ना?
1: हाँ जी मैडम। और इसमें तो आकाशवाणी तो वो कहते हैं ना कि गागर में सागर भरने वाली बात होती है,
0: जी
1: हर वर्ग के लोगों के लिए, चाहे युवा हैं, बच्चे हैं, कोई लेडीज हैं, सभी के लिए कुछ ना कुछ जरूर होता है इसमें। तो
0: बिल्कुल, और वो हमारे
1: वो
0: ऊपर है, जितनी जानकारी हम समेट सकते हैं समेट लें, है ना?
1: नहीं नहीं मैडम, इसमें बहुत कुछ होता है। जैसे जब अब मैं जालंधर में हूँ तो जो
0: जी जी
1: न्यूज है अब तो इसने आकाशवाणी ने किया कि हर घंटे 2 घंटे बाद हिमाचल के न्यूज सुनने को मिल जाते हैं,
0: जी
1: तो बहुत बढ़िया। तो आपको सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना अच्छा प्रयास कर रहे हो।
0: बिल्कुल, देखिए हमारा तो प्रयास सभी हमारा श्रोताओं के लिए होता है ना? और
1: जी
0: आप जब
1: मैडम,
0: सराहना करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, और हमारी ये प्रयास रहते हैं कि आगे हम इससे भी अच्छा करें।
1: हाँ वो ही है, दिन दोगुनी और रात चौगुनी करे आकाशवाणी।
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल
1: बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: जी बिल्कुल जी। राजेश जी आप बताइए, गीत इस कार्यक्रम में कौन सा सुनाएं आपको?
1: मैडम एक पुरानी फिल्म है आंधी, तेरे
0: हाँ जी,
1: बिना जिंदगी से शिकवा।
0: अरे वाह क्या बात है, बहुत ही प्यारा सा ये गीत है
1: हाँ जी
0: आपकी
1: हाँ मैडम,
0: पसंद का। चलिए हम भी सुन लेते हैं आपके साथ साथ।
1: ठीक है, थैंक यू।
0: धन्यवाद जी।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे,
1: क्यों कह रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: जी, स्वागत है आपका हेलो हमीरपुर कार्यक्रम में।
1: भावना मैडम जी, गुड मॉर्निंग।
0: वेरी गुड मॉर्निंग जी, आपका शुभ नाम?
1: विनोद कुमार बोल रहा था, सोलह कांगड़ा से।
0: जी विनोद कुमार जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया मैडम जी, मतलब दिन बाद गलबात हुई तुम्हारे।
0: हाँ जी बिल्कुल, देखिए आचार संहिता लगी थी तो हमारे लाइव फोन इन प्रोग्राम्स बंद थे, है ना?
1: अपरा फिर रेडियो सुनना नहीं छोड़ दिया।
0: बहुत अच्छी बात है जी, जुड़े रहें, है ना, दिल से दिल जुड़े रहें प्रोग्रामों के जरिए, तो बस और क्या चाहिए, है ना, बात हो जाए ना हो।
1: फोन में बात नहीं होती और तो बाकी सब प्रोग्राम चालू थे
0: बिल्कुल
1: हमारे।
0: जी जी जी जी बिल्कुल, जानकारियां भरपूर मिल रही थी, मनोरंजन भरपूर हो रहा था, है ना,
1: हाँ जी हाँ
0: और
1: जी
0: आज देखिए बातचीत भी हो गई।
1: बिल्कुल मैडम जी, वहाँ चलो हाँ जी, फिल्म गाना सुनना चलो ना सुन ले, चलो हाँ गुणगुना रहे कान कान में। वहाँ चलो सुन ले, यहाँ वहाँ कर दूँ ट्राई फोन मेरी।
0: जी चलिए, आपकी पसंद,
1: सुनाई
0: और कोई पसंद हो तो वो बता दीजिए।
1: दिया तेरी मेहरबानी है।

0: अरे वाह,
1: हाँ जी
0: बहुत ही बढ़िया फिल्म थी, है ना
1: हाँ जी हाँ जी
0: जी। तो इस फिल्म का कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: सुनाई दे कोई बढ़िया दे हाँ
0: अच्छा, कोई भी
1: कोई भी अच्छा दे सुनाई दे
0: जी। और
1: तो
0: विनोद कुमार जी,
1: और
0: गर्मियों
1: बढ़िया
0: से
1: मैडम
0: बचने के लिए क्या कर रहे हैं?
1: मैडम यहाँ तो पूरा अपना दे हर रोज लगे गर्मी दे इन्हें बिना वजह से बाहर नहीं जाना
0: हाँ हाँ
1: गर्मी बड़ी धुप्पा च
0: जी जी जी
1: अपने
0: जी
1: शरीर का ख्याल रखना मतलब बड़ी बड़ी मतलब ठंडी चीजा सेवन करना मतलब जी नींबू पानी हुई है हाँ
0: बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, इस तरह से अगर हर कोई अपना ध्यान रखे तो चाहे कोई भी मौसम हो, वो
1: जी हाँ जी
0: आनंदमय ही होता है ना
1: हाँ जी तो मौसम का असर होता ही है मैडम ये गर्मी का अलग असर होता है सर्दियों का अलग होता है
0: बिल्कुल
1: लेकिन ये तो अपने शरीर पर डिपेंड करता ना फिर
0: जी। देखिए, अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें, सावधानियां बरतें ना, तो हर
1: हाँ
0: मौसम
1: जी
0: खुशगवार हो सकता है। क्योंकि अब देखिए, मौसम है वो तो अपना रंग दिखाएगा ही दिखाएगा,
1: हाँ जी
0: है ना। तो वो जरूरत है हम की सावधानी क्या बरतेंगे, है ना।
1: हाँ ये जरूरी होता है बस सावधानी बरतना जरूरी होती है
0: बिल्कुल जी बिल्कुल।
1: हाँ जी
0: और विनोद कुमार जी, सब ठीक ठाक?
1: बढ़िया मैडम जी बढ़िया
0: चलिए,
1: ठीक है
0: तो तेरी मेहरबानियां फिल्म का ये गीत आइए हम सब मिलकर सुन लेते हैं।
1: धन्यवाद जी
0: धन्यवाद जी।

0: जी, आकाशवाणी हमीरपुर से इस समय आप सुन रहे हैं हेलो हमीरपुर प्रोग्राम जी। और हम आपको एक बार फिर बता देते हैं कि आज के इस लाइव फोन इन प्रोग्राम में हिस्सा लेने के लिए हमारा नंबर है 01972221322। और वो फिल्में जो अभी इस कार्यक्रम में हैं बची हुई और जिनके गीत आप सुन सकते हैं, वो हैं जंजीर है, थैंक गॉड, पीके और सौदागर। आइए कर लेते हैं अगले कॉलर से बातचीत। जी स्वागत है कार्यक्रम में आपका।
1: जी नमस्कार।
0: नमस्कार जी,
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई से।
0: हाँ जी, कोटखाई से कौन?
1: राकेश।
0: राकेश जी कैसे हैं आप?
1: जी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं। और इस समय आजकल मौसम साफ हो रहा है और क्या बोलते, पहले हमारे पूरे हिमाचल में बारिश थी लगातार, थोड़ी हल्की बूंदाबांदी।
0: जी कोटखाई में तो ज्यादा ठंड होती होगी ना?
1: जी जी कोटखाई में तो ज्यादा ठंड होता है जब बारिश होती है। तो अब बारिश नहीं है तो अब थोड़ी गर्मी भी बढ़ गई है, और लेकिन जब मौसम सुहाना बारिश का होता है तो फिर ठंडा हो जाता है।
0: जी चलिए, मिला जुला मौसम है।
1: जी जी जी
0: जी। और आकाशवाणी हमीरपुर आपका कितना साथ देता है?
1: आकाशवाणी हमीरपुर और मैं जैसे कि हिमाचल प्रदेश की चारों चैनल जो है हमेशा आप सुनाई देते हैं।
0: जी
1: जी, जैसे कि हमीरपुर धर्मशाला हो गया, एफएम शिमला और आकाशवाणी शिमला।
0: जी जी,
1: इनको सभी को सुन के बहुत आनंद हो है, आता है। और बाकी केंद्रों के भी साथ साथ भी जुड़े रहते हैं, लेकिन अपने केंद्रों पर हम भले ही फोन प्रोग्राम में जुड़ते हैं, लेकिन आकाशवाणी हिमाचल की जितने भी चैनल है उसमें हम पूरा भाग लेते हैं।
0: चलिए बहुत बढ़िया बात है कि आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी के साथ और पूरे जो भी कार्यक्रम आते हैं उनका लाभ उठाते हैं, है ना?
1: जी जी जी जी जी जी
0: जी। तो बताइए आज कौन सा गीत सुना है आपको?
1: अभी तो मैंने जो फिल्में सुनी है तो इनमें से मैं एक फोन से लगा रहा था, अभी फिल्में कौन कौन सी बची है सुनाने के लिए?
0: एक देखिए जंजीर है, थैंक गॉड, पीके, सौदागर। अच्छा, सौदागर फिल्म का कौन सा गीत सुनाए?
1: इसका एक गाना है तेरा मेरा साथ रहे।
0: नहीं ये दूसरी पुरानी सौदागर नहीं है, दूसरी। अच्छा। नई वाली सौदागर है, मनीषा गौरेला वाली।
1: अच्छा अच्छा, इनमें से कोई भी सुना दो।
0: जी कोई भी, सारे गीत पसंद है आपको?
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: फिल्म देखी है आपने?
1: नहीं फिल्म तो नहीं, मैं गाने सुनता रहता हूँ इसके साथ भी।
0: अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है। राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: धन्यवाद
0: जी। सुनाते हैं आपको सौदागर फिल्म का ये गीत।
1: जी जी धन्यवाद, सुना दीजिएगा। धन्यवाद।

जी दोस्तों, तो सौदागर फिल्म के इस गीत के साथ ही अब आज का हेलो हमीरपुर कार्यक्रम होता है यहीं समाप्त। अपनी रेडियो दोस्त भावना कतना को दीजिए इजाजत। नमस्कार जी। हेलो हमीरपुर कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 MHz पर। सुबह के 10 बजने को हैं अब हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद बिक्री पर कड़ी निगरानी करने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में सीमा सुरक्षा बल के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। हमारे संवाददाता आदित्य दत्त की रिपोर्ट।
1: गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वास्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
0: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर NEET UG 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री की अफवाहों का खंडन किया है। NTA ने कहा कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी। NTA ने उम्मीदवारों और अभिभावकों से इस तरह के किसी भी संदेश के झांसे में न आने की सलाह दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से मुलाकात की। बैठक के बाद श्री जयशंकर ने वर्ष 2015 के भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यक्रम के तहत नेपाल को 72 स्वास्थ्य सुविधाएं और 12 सांस्कृतिक विरासत परियोजनाएं वर्चुअल माध्यम से सौंपी। दोनों नेताओं ने दोनों देशों के बीच व्यक्तिगत रूप से धन के लेन देन को सुगम बनाने के लिए UPI समन्वय का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो भारत पहुंच चुके हैं। श्री सुगियोनो नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान दोनों मंत्री भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन संघ ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में विमानन गतिविधियों के विकास में भारत की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। इस क्षेत्र में वर्ष 2044 तक हवाई यात्रियों की संख्या लगभग 4 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि उनकी सरकार प्रमुख धार्मिक स्थलों दक्षिणेश्वर और कालीघाट मंदिरों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास कार्य करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा सागर मेले को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने का काम शुरू हो चुका है। घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई है। दिल्ली में आज से घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। अमरीकी सेना ने होर्मूज जलडमरू मध्य में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात के लिए खतरा माने जाने वाले 2 ईरानी ड्रोनों को रोककर नष्ट कर दिया है। अमरीकी केंद्रीय कमान ने पश्चिम एशिया में तैनात अमरीकी बलों की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। सैन्य कमान ने बताया कि अमरीकी बल हाई अलर्ट पर हैं और इस क्षेत्र में किसी भी खतरे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। रूस की मीरा एंड्रीवा ने फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। शनिवार को खेले गए फाइनल में 19 साल की एंड्रीवा ने पोलैंड की माया च्वालेंस्का को सीधे सेटों में 6-3, 6-2 से मात दी। इस उपलब्धि के साथ ही एंड्रीवा फ्रेंच ओपन जीतने वाली दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं। इससे पहले वर्ष 1992 में 18 साल की मोनिका सेलेस ने यह खिताब अपने नाम किया था। उधर पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज शाम अलेक्जेंडर ज्वेरेव और फ्लेवियो कोबेली आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने कर्नाटक के तटीय हिस्सों केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आंध्र प्रदेश के तटीय भाग में आज लू चलने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। सुबह के 10:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है 90 वर्षों के रंग आकाशवाणी के संग। इस पर एक चर्चा जानकारी। जी हाँ, आकाशवाणी हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग। आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो, इन्होंने हाल ही में अपनी स्थापना के 90 गौरवशाली वर्ष पूरे किए हैं और 8 जून को ये बिल्कुल पूरे होने जा रहे हैं, यानी कि कल। देश के इस राष्ट्रीय सार्वजनिक प्रसारक ने 9 दशकों तक अपनी अविस्मरणीय आवाज, संगीत और समाचारों से करोड़ों भारतीयों के दिलों पर राज किया है। जी हाँ, 90 वर्षों का ये ऐतिहासिक सफर जो है उसके बारे में आपको बता

तो शुरुआत जो हुई थी वर्ष 1930 में इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग सर्विस ISBS के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसे 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो AIR का नाम दिया गया। हाँ, और स्वतंत्रता के बाद 1956 में इसे आकाशवाणी नाम दिया गया, जो नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई एक कविता से प्रेरित था। आकाशवाणी अपने मूल आदर्श वाक्य बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर अनवरत कार्य कर रहा है। आज ये नेटवर्क लगभग 591 स्टेशनों के साथ 23 भाषाओं और 146 बोलियों में प्रसारण करता है, जो भारत की 98% आबादी तक पहुंचता है। जी, वैसे आपको बताएं कि MV गोपाल स्वामी, जी हाँ, इन्होंने 1956 में संस्कृत शब्द आकाशवाणी गढ़ा, जिसका शाब्दिक अर्थ है आकाश से आवाज। इस शब्द को अखिल भारतीय रेडियो यानी कि AIR के आधिकारिक नाम के रूप में अपनाया गया। गोपाल स्वामी ने 1935 में मैसूर में भारत के पहले निजी रेडियो स्टेशन की स्थापना भी की थी, जिसे बाद में सरकार को सौंप दिया गया था। देश में रेडियो का एक अनुपम इतिहास है। यूं तो विश्व में रेडियो का जन्म तब हुआ जब इटली के वैज्ञानिक गुगिल्लोमो मार्कोनी ने 1896 में सिर्फ 22 वर्ष की आयु में रेडियो का आविष्कार कर एक छोटा सा प्रसारण किया था। बिना तार के इस संचार तंत्र को लेकर इसके बाद विभिन्न प्रयोग हुए और मान्यता है कि 24 दिसंबर 1906 को विश्व का प्रथम प्रसारण हुआ। और इधर भारत की बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि यूं हमारे यहाँ रेडियो का प्रसारण को तो 100 वर्ष से अधिक हो चुके हैं। अगर देखा जाए तो जून 1923 में रेडियो क्लब मुंबई ने एक गैर सरकारी ट्रांसमीटर से पहला प्रसारण किया था। फिर कोलकाता और मद्रास प्रेसिडेंसी ने भी कुछ इसी प्रकार के प्रसारण आरम्भ किए। लेकिन भारत के रेडियो के इतिहास में सबसे अहम दिन 8 जून 1936 का ही माना जाता है, जब इंडियन स्टेट ब्रॉडकास्टिंग कंपनी भारतीय रेडियो का नाम ऑल इंडिया रेडियो कर दिया। फिर देश स्वतंत्र होने के 9 साल बाद इसे आकाशवाणी कहा जाने लगा। बिल्कुल, और अब देखिए 8 जून को यानी कि कल ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी के 90 साल पूरे हो रहे हैं और इसका जश्न जो है वो पूरे जोश से मनाया जा रहा है और हमारे श्रोता भी खासे जोश में हैं। और इस सिलसिले में आकाशवाणी सोमवार 8 जून को रात 8 बजे एक विशेष कार्यक्रम भोर से पहले भोर के बाद का विशेष प्रसारण भी करने जा रहा है, जिसे AIR लाइव 24/7 पर कहीं भी सुना जा सकेगा। और साथ ही इसी समय आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल पर भी इसका प्रसारण होगा। जी हाँ, इन पिछले 90 वर्षों में रेडियो ने कई रंग बदले हैं। बरसों वो सभी श्रोताओं को अपने जादू से अभिभूत करता रहा। इस मौके पर आकाशवाणी को लोकप्रियता दिलाने वाले कई सदस्य रहे, कई अनाउंसर रहे, कई हस्तियां रही जिनको याद किया जाएगा और याद किया जा रहा है। फिर भी ये भी कि इन बरसों में आकाशवाणी को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन जल्द ही वो चुनौतियों से उबरता रहा और आगे बढ़ता रहा। और कुछ बरस पहले आकाशवाणी की टूटती सांसों को संजीवनी तब मिली जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 3 अक्टूबर 2014 को आकाशवाणी से अपने कार्यक्रम मन की बात को शुरू किया और इस कार्यक्रम ने आकाशवाणी को फिर से मुख्य धारा में लाकर नई लोकप्रियता तो दिलाई ही, साथ ही आकाशवाणी को इसके साथ इतने विज्ञापन मिल रहे हैं कि राजस्व भी बहुत बढ़ गया है। फिर आकाशवाणी के FM चैनल्स भी इतने लोकप्रिय हो गए हैं जिन्हें कार, ऑटो रिक्शा और बसों, ट्रकों सहित विभिन्न वाहनों में यात्रा के साथ चाव से सुना जाता है।

और आपको बताएं, इस ऐतिहासिक अवसर के उपलक्ष्य में प्रसार भारती और माई गवर्नमेंट द्वारा नागरिकों के लिए आकाशवाणी @90 भारत की नई ट्यून राष्ट्रीय सिग्नेचर ट्यून प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य आकाशवाणी के विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए नई और यादगार वाद्य धुने तैयार करना था। जी, आकाशवाणी के संवाददाता की रिपोर्ट है कि 7 जून 1936 को ऑल

का साधारण सा दिल्ली स्टेशन एक ऐसा केंद्र बन गया जहां आवाजों को पंख मिले और इतिहास को एक माइक मिला। इन शांत दीवारों में ऐसी गूंज निकली जिसने एक ऐसे राष्ट्र को आकार दिया जो तब से लेकर आज तक कालातीत, भावपूर्ण और अविस्मरणीय बना हुआ है। स्वतंत्रता के बाद AIR का तेजी से विस्तार हुआ और 1956 में इसका नाम बदलकर आकाशवाणी कर दिया गया और आज आकाशवाणी 591 स्टेशनों को संचालन करता है जो भारत की 98% आबादी तक पहुंचता है, 23 भाषाओं, 146 बोलियों में प्रसारण करता है और आकाशवाणी का बाह्य सेवा प्रभाग 100 से अधिक देशों में प्रसारण करता है, वैश्विक स्तर पर भारत की आवाज़ पहुंचाता है और प्रवासी भारतीयों से जुड़ता है। बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के अपने महान आदर्शों पर खरा उतरते हुए AIR का समाचार सेवा प्रभाग जो है रेडियो प्रसारण में उच्चतम पेशेवर नैतिकता और मानकों का पालन करते हुए इस विशाल देश के प्रत्येक निवासी को विभिन्न भूभागों में 24 घंटे सातों दिन सभी प्रमुख भाषाओं और बोलियों में समाचार और विचार उपलब्ध कराने का प्रयास करता है। आकाशवाणी ने कुछ ऐसे रेडियो कार्यक्रमों और चैनलों को जन्म दिया जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी भारतीयों के दैनिक जीवन को आकार दिया। विविध भारती, जी हाँ, इसकी शुरुआत 3 अक्टूबर 1957 में हुई थी। भारतीय रेडियो इतिहास का सबसे बड़ा मील का पत्थर, इसकी शुरुआत रेडियो सीलोन की लोकप्रियता को टक्कर देने और हिंदी फिल्मी गानों को घर घर तक पहुंचाने के लिए की गई थी और इसका पहला प्रसारित गाना मन्ना डे का नाच रे मयूरा था। हवा महल की बात करें तो विविध भारती पर प्रसारित होने वाला ये नाटक और प्रहसन का कार्यक्रम बेहद लोकप्रिय था जिसे सुनकर लोग हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। जयमाला, जी हाँ, सैनिकों, सशस्त्र बलों के लिए विशेष रूप से तैयार किया गया एक बेहद पसंदीदा कार्यक्रम जिसमें फिल्मी हस्तियां आकर सैनिकों की पसंद के गाने बजाती थी। भूले बिसरे गीत, सुबह सुबह पुराने जो हम गीत सुनते थे, सदाबहार गानों को याद करने का एक बेहद लोकप्रिय माध्यम रहा है। युववाणी, जी हाँ, 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी। युवाओं की आवाज़ और अभिव्यक्ति को मंच देने के लिए ये विशेष साप्ताहिक या फिर दैनिक श्रृंखला शुरू की गई थी जिसने कई बेहतरीन रेडियो प्रेजेंटर्स दिए। विविध भारती की सुनहरी यादों को समृद्ध और देखिए उत्सुकता की सराहना करते हैं हम। छाया गीत की बात करें, देखिए विविध भारती ने हिंदी सिनेमा के गानों को केवल बजाया ही नहीं बल्कि उन्हें आम लोगों के जीवन का हिस्सा बना दिया। छाया गीत जो रात को 10 बजे आता है, दिन भर की भाग दौड़ के बाद रात को धीमे और रुमानी गानों का ये सफ़र बेहद लोकप्रिय था और इसकी खासियत थी इसके उद्घोषक। ऐसे ही मनचाहे गीत, सखी सहेली, आज के फनकार, कई ऐसे गीत हैं जिन्होंने रेडियो को जन जन के घर तक पहुंचाया। बात करें हिमाचल की तो देखिए हिमाचल के जो आकाशवाणी, जैसे चाहे वो शिमला हो, धर्मशाला हो या फिर हमीरपुर हो, आकाशवाणी ने अपने हिमाचल के पारंपरिक वाद्य यंत्रों जैसे कि रणसिंघा, ढोल, नगाड़ा, करनाल के साथ गाए जाने वाले लोकगीतों को प्रमुखता दी। कुल्लवी नाटी, महासुवी नाटी और चंबा के गद्दी समुदाय के पारंपरिक गीतों को रिकॉर्ड कर उन्हें प्रसारित करने का काम सबसे पहले आकाशवाणी ने ही किया था। इससे स्थानीय कलाकारों को एक बड़ा मंच मिला। शाम के समय किसानों और बागवानों, विशेषकर सेब उत्पादकों के लिए एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं जिससे इस कार्यक्रमों में हिमाचली लोकगीतों के बीच बीच में खेतीबाड़ी और मौसम की ज़रूरी जानकारियां भी दी जाती हैं और देखिए इनसे लोगों को कितना लाभ मिलता है। तो ये है हमारी, आपकी, सबकी आकाशवाणी। आकाशवाणी का आज भी कोई सानी नहीं है। 90 बरस से लुभा रही सभी को ये अनुपम वाणी, यदि मिलता रहा श्रोताओं का यूं ही प्रेम विश्वास, युगो युगो तक अमर रहेगी हमारी आकाशवाणी। जी, ये थी हमारी आज की बातचीत, चर्चा 90 वर्षों के रंग आकाशवाणी के संग।
हम आकाशवाणी के हमीरपुर।

केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:16 हुए हैं और अब आइए सुनते हैं देशभक्ति के फिल्मी गीत।

0: जी, ये जो कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना कुमार सानू और साथियों की आवाज़ों में था, फिल्म का नाम था वर्दी, देशभक्ति के फिल्मी गीत। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। अगला गीत जो हम आपको सुनाने वाले हैं वो हमने लिया है वास्तव फिल्म से। आवाज़ें इसमें आप सुनेंगे शंकर महादेवन और साथियों की, और ये गीत एक अंतराल के बाद।
1: बड़ी बहू,
2: ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
2: अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम।
1: और ये
3: मेरी गुड़िया के नाम।
4: पर दादी,
2: हाँ,
4: आपके नाम?
5: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो।
4: क्या
5: RBI कहता है?
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आज खिन्न दुखियारी क्यों है माँ, आज यूं हारी हारी क्यों है माँ, तेरे आंसुओं के खारेपन में ये कड़वाहट कैसे आई। शायद हम ही हैं जिसने तेरी ऐसी हालत बनाई है।

देशभक्ति के फिल्मी गीत इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी हमीरपुर से। और ये जो गीत आपने सुना एसबी पारक और साथियों का गाया हुआ था, योद्धा फिल्म का नाम था। जी, ये जो देशभक्ति के गीत होते हैं ना, ये रग रग में, इंसान की रग रग में जोश भर देते हैं। ऐसा जोश जो कभी भी धीमा नहीं पड़ता। आइए एक और देशभक्ति का फिल्मी गीत सुनते हैं। और ये जो गीत है वो अमित कुमार की आवाज़ में है, सपना मुखर्जी, मोहम्मद अजीज, उदित नारायण और साथियों की आवाज़ों में है। फिल्म का नाम है विश्वात्मा।

जी, विश्वात्मा फिल्म का ये देशभक्ति का गीत सुना आपने, और इसी के साथ देशभक्ति के फिल्मी गीत यहीं पर समाप्त होते हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति के फिल्मी गीत। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 10:45 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए स्थानीय बोली में कार्यक्रम लोक रंग।

कार्यक्रम लोक रंग सुनने वाले अहां दे सारे दोस्तां दा बहुत बहुत स्वागत करदे कार्यक्रम च कने भई करा स्वीकार पूजा शर्मा दा प्यार भरिया नमस्कार। लोक रंग जी हाँ, हिमाचल अहां दी प्यारी जी, ये अहां दी देव भूमि है। इत्थां दी बोली मिठी मिठी बोली है, इत्थां दी मिठास इं बोली सकदे कि माटी च भी है ना। इत्थां दी जो हवा है सै इतनी ताजगी भरी है कि कुते भी हाँ देशा दे दुए कोने च भी जाइए ना तो इं लगता कि नहीं जी ये जो आवारा चौंका आया था ये अहां दे हिमाचल प्यारी जी वादियां ते आया था उंदा।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: ले आप श्रोतियो तो ए दौरा कने भावी यारी गलबात तुह सुनी और ये रुठना मनाना बड़ा अच्छा लगता और रिश्तियाँ च इं रौनक बनी रहे ए यहाँ की दुआ है और तुहां दा कने यहाँ दा रिश्ता भी इं बरकरार रहे ए भी यहाँ की परमात्मे ने प्रार्थना है। तुह जो दसीए संजू कने बिमला राठौड़ रा गाए रा प्यारा जिहा लोक गीत सुनिया, हूँ अह गलबात करनी अगले लोक गीता दी भी असा तो कुसी जो मंदा नहीं बोलना चन्ने री चाननी चन्ने कने और इस लोक गीता जो गाई करदे त्रिलोक गोस्वामी होरां और सुनना कि इस लोक गीता च क्या रोक टोक मीण मेख होवा करदी और वैसे जो लोक गीत है ना ये भी यहाँ दे मना दे भाव प्रदर्शित करदे, तो चला मजा ले लेंदे इस अगले लोक गीता दा।

जी पेश होते हो तो अहाँ भी कुछ जो मंदा नहीं बोलना चन्ने री चाननी चंदे कने कने जो भी अहाँ दे घर दे परिवार जन ने अहाँ दे दोस्ते मित्रे है ना सगे संबंधी ये सभी अहाँ दी रौनक है और इन्हें यहाँ संसार हसदा कने बसदा। तब ही अगला लोकगीत जैसे अंतिम लोकगीत तुहां वास्ते अम्मा पुछ दी सुन दी है मेरी ए तय प्यारा जे लोकगीत तुहां जो सुनाना हंसराज रे स्वर्च।

0: अचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: अभी आप सुन रहे थे लोकरंग कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप हेमंत शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हिमाचल प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संयुक्त तत्वावधान में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कल कांगड़ा के धर्मशाला में विशाल विधिक साक्षरता शिविर आयोजित किया गया। इस महाशिविर में देशभर के शीर्ष न्यायविदों, न्यायाधीशों, विशेषज्ञों, अधिवक्ताओं और विद्यार्थियों ने भाग लिया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश व नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम नाथ ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करना विधिक सेवा संस्थाओं का मूल उद्देश्य है। उन्होंने नागरिकों से संवैधानिक मूल्यों को जीवन में अपनाने का आह्वान किया। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य संरक्षक गुरमीत सिंह संधावालिया ने न्याय की सुलभता और विधिक साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डाला। वहीं न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने नागरिक अधिकारों के साथ कर्तव्यों की समझ को आवश्यक बताया। शिविर में न्यायाधीश नोंग में कापम कोटेश्वर सिंह और संजय करोल ने भी संविधान की मूल भावना और सामाजिक जिम्मेदारियों पर विचार रखे। इस अवसर पर आपदा प्रभावित परिवारों को राहत राशि भी वितरित की गई। 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव कल 8 जून से शुरू होगा। 12 जून तक चलने वाले इस भव्य आयोजन का शुभारंभ राज्यपाल कविंद्र गुप्ता करेंगे, जबकि समापन समारोह में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू शिरकत करेंगे। प्रदेश के विभिन्न जिलों से लगभग 200 कलाकार इसमें अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। ये मंच न केवल स्थानीय कलाकारों को अपनी कला प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करेगा, बल्कि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों और स्थानीय लोगों को हिमाचल की सांस्कृतिक विरासत से भी रूबरू करवाएगा। उपायुक्त व अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय शिमला ग्रीष्मोत्सव आयोजन समिति अनुपम कश्यप ने बताया कि ग्रीष्मोत्सव का उद्देश्य प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को सशक्त बनाना तथा स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन देना है। अधिक ब्यौरा हमारे शिमला जिला संवाददाता से।
1: उद्घाटन संध्या पर बॉलीवुड पार्श्व गायक शबाब शाबरी अपनी प्रस्तुतियां देकर लोगों का मनोरंजन करेंगी, जबकि दूसरी संध्या पर ज्योतिका टांगरी, तीसरी संध्या पर नाटी किंग कुलदीप शर्मा, चौथी सांस्कृतिक संध्या पर पंजाबी गायक गुरनाम भुल्लर और अंतिम समापन संध्या पर जस्सी गिल और बबल राय अपनी प्रस्तुतियों से समा बांधेंगे। 5 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कई प्रसिद्ध कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इस बार अंतर्राष्ट्रीय शिमला समर फेस्टिवल एडवेंचर और रोमांच से भरपूर होगा। सैलानियों व स्थानीय लोगों को हेलीकॉप्टर से शिमला की पहाड़ियों की सैर करने का भी मौका मिलेगा। इसके अलावा शिमला समर फेस्टिवल के दौरान स्कूली बच्चों के लिए भाषण प्रतियोगिता, वॉलीबॉल, डॉग शो और फूड फेस्टिवल भी आकर्षण का केंद्र रहने वाले हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए शिमला से योगराज शर्मा।
0: आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इसका उद्देश्य विश्व में भुखमरी को समाप्त करना, खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करना और कृषि, मत्स्य व वानिकी के क्षेत्रों में टिकाऊ विकास को बढ़ावा देना है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2026 की थीम बोझ से समाधान की ओर हर जगह सुरक्षित भोजन रखी है, जो इस बात पर जोर देती है कि बीमारी, उससे जुड़े बोझ और जान गंवाने वालों से जुड़ा डेटा कैसे केंद्रित और किफ़ायती समाधानों की दिशा में कदम उठाने में मदद कर सकता है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है, जिससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एकरूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम, 500 ग्राम, 1 से 5 किलो, 15 और 20 किलो है। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। अभी प्राप्त सूचना के अनुसार राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर शिमला घनाटी मार्ग के समीप एक LNT मशीन के पलटने से इस मार्ग पर यातायात पिछले 2 घंटे से बाधित है और इस मार्ग पर काफी लंबा जाम लग गया है, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार यातायात को सुचारू करने का प्रयास लगातार जारी है। केंद्र सरकार के सहयोग से लाहौल स्पीति के युवाओं, उद्यमियों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों के लिए 9 जून को केलंग में एक विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की जाएगी। ये कार्यशाला मार्केटिंग एंड डिजिटल लिटरेसी और डिजिटल टूल्स फॉर ब्रांड बिल्डिंग विषय पर आधारित होगी। कार्यशाला में प्रतिभागियों को डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग, ऑनलाइन ब्रांड बिल्डिंग और व्यवसाय को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे बढ़ाने के बारे में जानकारी दी जाएगी। अधिक ब्यौरा हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता से।
2: कार्यक्रम का आयोजन सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से इंडोर स्टेडियम केलंग में सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक किया जाएगा। कार्यशाला में प्रतिभागियों को डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया के प्रभावी उपयोग, ऑनलाइन ब्रांड बिल्डिंग और व्यवसाय को डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे बढ़ाने के बारे में जानकारी दी जाएगी। आयोजकों के अनुसार ये प्रशिक्षण स्थानीय युवाओं, व्यवसायों और स्वयं सहायता समूहों के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद करेगा। ये कार्यशाला डिजिटल युग में सफलता की नई राह दिखाने वाला एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
3: FM बैंड 101.8 MHz पर हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 11:05 हुए हैं। अब से लेकर दिन के 12 बजे तक आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
4: महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व प्रशांत जी ने किया है आईचा कविता नाम की उनकी प्रस्तुति के। भारत भर में 5,600 शो हो चुके हैं, कमाल का रिकॉर्ड। नामदेव ढसाल पुरस्कार जैसे अनेक पुरस्कार हैं। उनकी कृतियां हैं वेदना सातारकर, कबीरांची दीन, माए अर्थात आईची कविता खंड एक और खंड दो, अभिवादन बा भीम, नरोत्तम बेन विगत 33 वर्षों से सतत रंगकर्म कर रहे हैं, जबलपुर से रंगकर्म की शुरुआत की थी और इस वक्त मुंबई में भी रंगकर्म जारी है। एक नाटक की रिहर्सल से सीधे इस मंच पर पदार्पण किया है उन्होंने। अभिनय कार्यशालाओं का संचालन करते हैं, कई नाटकों का निर्देशन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और मध्य प्रदेश कला परिषद द्वारा महेश्वर में सन 1994 में आयोजित अभिनय कार्यशाला में अभिनेता का प्रशिक्षण प्राप्त किया है। कई विज्ञापनों, धारावाहिकों, फिल्मों और वेब सीरीज में अभिनय किया है और बुंदेली लोकगीतों के लिए प्रसिद्ध हैं। नरोत्तम बेन यहाँ बुंदेली लोकगीत प्रस्तुत करेंगे। ममता वर्मा बागेश्वर उत्तराखंड में पैदा हुई, 2021 से मुंबई आई हैं और कई सांस्कृतिक गतिविधियों में उन्होंने प्रस्तुति की है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि आज पहली बार विविध भारती के लिए वो मंच पर गीत प्रस्तुतियाँ करने वाली हैं, तो ममता का बहुत हौसला बढ़ाने की ज़रूरत है। ये हमारे कलाकार हैं और इसके अलावा बहुत ही काबिल कलाकार हारमोनियम तबला और ढोलक पर मौजूद हैं और इसके अलावा डफ और घुंघरू जैसी जैसे सहायक वाद्यों पर मेरे अपने साथी विविध भारती के मशहूर उद्घोषक जयंत पात्रीकर साथ देंगे। तो ये हमारा जमावड़ा है और इस कार्यक्रम का संचालन ममता सिंह करेंगी। तो आइए ममता सिंह, कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए।
5: सभी अतिथियों को नमस्कार और सभी का स्वागत। आज की जो संध्या समर्पित है हमारे मिट्टी की उस मीठी खुशबू को, जो लोकगीतों की स्वर लहरियों में बसती है। लोकगीत यानी हमारी परंपराओं की धड़कन, हमारे गांव की मुस्कान, माँ की लोरी, खेतों की गूंज, त्योहारों की रौनक और रिश्तों की मिठास। जब लोकगीत गूंजते हैं तो सिर्फ सुर नहीं बजते। तो चलिए फिर इस रंगारंग संध्या में हम सब मिलकर स्वागत करते हैं उन सुरों का जो पीढ़ियों से दिलों को जोड़ते आए हैं। लोकगीत में पूरी परंपरा है, पूरी संस्कृति है, रिश्ते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले विदुषी शैलेश श्रीवास्तव जी का हम स्वागत करते हैं और चलते हैं उत्तर प्रदेश के लोक संगीत में। जरा जोरदार तालियों से स्वागत। वैसे तो देश के सभी राज्य में लोकगीत की अलग परंपरा है, अलग छटा है, अलग रंग है, लेकिन उत्तर प्रदेश का लोकगीत एक खास रंग लिए होता है, क्योंकि हम किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत देवी गीत से करते हैं, जो उत्तर प्रदेश की परंपरा रही। विवाह गीत जब गाते हैं तो उससे पहले देवी गीत गाते हैं, तो माँ सरस्वती की आराधना से शुरू करते हैं।
6: आप सभी के हमारे प्रणाम स्वीकार करें, अपने माटी की सेवा खातिर यहाँ बुलावल ले लेंगे। आज मुझे विविध भारती ने याद किया है अपनी लोक रंग सृजन भारती की श्रृंखला में, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसमें आकाशवाणी की अहम भूमिका है। मुझे गढ़ने में हर समय मुझे आकाशवाणी ने एक सर्वोत्तम मंच दिया और आज मैं आप सबके समक्ष हूँ। तो सरस्वती का हम लोग यहाँ भोग में सुरस्वती कहीं लगा, तब सुनावत है आप सबके
5: सुरस्वती मैया की जय।
6: हाँ।

0: क्या बात है।
1: जाने माने सभी जो उपस्थित गण हैं सबका मैं मंच से स्वागत करती हूँ। बहुत आभारी हूँ विविध भारती की।
0: शुक्रिया शैलेश जी। अभी यहाँ पर लोकगीतों की जो परंपरा है वो बड़ी समृद्ध है।
1: देखिए विविध भारती आपका 90 वर्ष
0: तो उस पर कुछ गा रही।
1: हाँ सुनाई गाती हूँ इतना।

0: क्या सुंदर अंदाज में आपने पेश किया। तो ये भी बता दीजिए कि इन मौकों पर इस ये लोकगीत गाया जाता है। इस
1: ये तो सोहर है, 150-200 वर्ष पुरानी हमारी परंपरा है। जब जब प्रसव पीड़ा में नारी होती है तो सोहर इसका नाम ही है। तो इसके स्वर ऐसे हैं कि जिनसे वो अपने सारे कष्ट को भूल जाती है, मतलब वो हर लेता है। क्योंकि म्यूजिक और स्वर जो ईश्वर तक जाने का इतना एक सहज माध्यम, इसीलिए माना गया है कि इसके जो भाव हैं, इसके जो लगाव हैं सुरों के, वो ऐसे होते हैं कि वो आपको एक दूसरी दुनिया में लेके जाते हैं।
0: तो अब लोकगीत का कौन सा वाला रंग छेड़ रही हैं, जिस रंग में हम अभिभूत होने जा रहे हैं?
1: अब देखिए, मैं तो बलिया की हूँ, बागी बलिया, और वहाँ की मैं पहली गायिका महिला कलाकार हूँ, बलिया की पहली जी, जी। महिला गायिका कलाकार हूँ। तो कितनी सारी वहाँ पे मुझे हमारे शब्दों में कहते ताने वगैरह भी सुनने को मिलते थे, लड़की के गवाओ तरन के ब्याह करी इनके घर के लड़की से। आज तो सब लोग, हर दूसरा घर का बच्चा या बच्ची कहता है देखिए देखिए हमारी बच्ची गा रही है, इधर देखिए कितना अच्छा गा रही है, उसको इतने सारे एक्सपोजर हैं। पर हम लोग जहाँ से आते हैं वहाँ तो बहुत मुश्किल था। हमारी माँ कहती थी हम नहीं शादी करके आए हैं, इनको लड़का बना के घुमा रहे हैं, कैसे होगा इनका शादी ब्याह कायस्थ के घर में। तो घर में ही इतनी दुविधा थी। अगर मैं बलिया से सीधे भैया बम्बईये इन्हीं बतावा, यहाँ देखत हैं सब बदल बा, मेट्रो गाड़ी चल रहा है, यहाँ देख के बड़ा घबराएगा भैया कहाँ सही आए, जगह आए कि नहीं आए। अच्छा तो देखे कि भाई अब उनके पति तो मेट्रो में नौकरी कर रहे हैं, तो उनको साड़ी भेजे एक नहीं दुई ठो, मेट्रो में नौकरी कर रहे हैं, भरारू घूमने आ रही है, पहन के घूमो यार, लोग देखें। तो देखिए वो कैसे चल रही है।

गाड़ी की यात्रा तो बड़ी मजेदार रहल है। शैलेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। अब लोक संगीत की जो छटा है, उत्तर प्रदेश से हम महाराष्ट्र की संस्कृति की ओर ले चलेंगे। हम महाराष्ट्र के लोक रंग की ओर चलते हैं, जहां महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र खानदेश अपनी सरलता, लोक भाषा और लोक संगीत के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, पहचाना जाता है। वहां के लोकगीतों में खेत है, खलिहान है, पूरी संस्कृति है, परंपरा है। बाकी मैं नहीं बोलती हूँ, प्रशांत मोरे जी जो प्राध्यापक भी हैं और संगीत के बहुत जानकार हैं, संगीतकार भी हैं। तो प्रशांत मोरे जी आपको माइक दे रहे हैं, जरा महाराष्ट्र के लोक

0: रंग के बारे में बताइए और सुनाइए, कुछ प्रस्तुति दीजिए।
1: सर्वांना नमस्कार। भाषा कळते ना, जरी भाषा कळली नाही तरी भावना कळेल, आणि भावना ह्या सगळ्याच ठिकाणी भाषा बदलतात पण भावना बदलत नाही।
0: बिल्कुल
1: है क्या ना, भाषा बदलते भावना बदलत नाही। भावना काय असते? भावना तीच असते। सैमा

0: बहुत बहुत आभार प्रशांत जी, बहुत सुंदर गाया और ऐसे लग रहा था कि भले इसमें समझ में आता है कि भाषा बोली कोई भी हो, लेकिन संगीत में इतनी ताकत है कि आपको मोहित कर लेती है और झूमने पर मजबूर कर देती है। अब हम नाट्यकर्मी और गायिका और अभिनेत्री विभा रानी जी को बुला रहे हैं मंच पर। बिहार के लोकगीतों की छटा हम देखेंगे और बिहार का लोक संगीत भी बहुत समृद्ध है, वहाँ के मैथिली लोकगीत आप सुनते ही होंगे, लेकिन कुछ अलग तरह की प्रस्तुति विभा रानी देंगी। खास तौर से एक गायन का प्रकार है झिझिया, झिझिया के बारे में बताइए विभा जी, क्या होता है, और फिर वो गायन का प्रकार भी प्रस्तुत कीजिए। जोरदार तालियां एक बार हो जाए।
1: बिहार के उत्तरी भाग मिथिला सची मैथिली भाषा है, सृजन भारती सब कार्यक्रम में ऐठा हमरा आमंत्रित कैल गेल है। हम विविध भारती के बहुत बहुत आभारी छी। हमर करियर के शुरुआत आकाशवाणी से भेल है, तो बुझाइए जे आकाशवाणी हमरा लेल नैहर माने मायका अछि। अभी लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है, संकट है। एक तरफ भोजपुरी की जोरदार आवाज, दूसरी तरफ महाराष्ट्र का रणझुंझार शिवशाही, अब उसके बीच में मैथिली बड़ी मीठी मीठी भाषा है। इतनी मीठी भाषा है कि लोग कहते हैं कि उसमें मैथिली में लड़ते भी हैं तो लोगों को लगता है कि प्रेम ही करते हैं।
0: क्या बात है।
1: एक बार एक कवि सम्मेलन में एक भोजपुरी के कवि और मैथिली के कवि भी बैठे हुए थे। भोजपुरी के कवि पूरी वीर रस की कविताएं सुना गए, उसके बाद मैथिली के एक कवि आए, उन्होंने प्रेम रस की कविता सुनाई, तो भोजपुरी के कवियों को भी चढ़ा कि मैं भी प्रेम कविता सुनाऊंगा, तो वो उठे और कहा हम प्रेम करब।
0: वाह वाह।
1: तो हरिमोहन झा जी जो मैथिली के बहुत बड़े व्यंग्यकार थे, वो बोले वहीं से बैठे बैठे, हम माहुर लौ कर मर रहब, मतलब मैं जहर खा करके मर जाऊंगा अगर ऐसा प्रेम होगा तो। तो ऐसी मीठी और ऐसी छोटी छोटी इस तरह की भाषा है मैथिली, तो आपको दोनों के बीच में जरा संतुलन बना करके चलना होगा। ममता, आपने कहा कि झिझिया, शैलेश ने अभी सुनाया था देवी गीत सरस्वती वंदना। झिझिया दशहरे के समय में गाया जाने वाला, नृत्य किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, और उसमें देवी की आराधना की जाती है, दुर्गा की आराधना की जाती है और भगवती की आराधना की जाती है। भगवती के भाई हैं भैरव, ब्रह्म उनके बोलते हैं, उनकी आराधना की जाती है।

0: लोकगीतों में कहानी किस्से होते हैं, मनुहार होता है, नोकझोंक होती है, तकरार होती है, तो एक जाट और जटिन जब बात करते हैं तो उस बातचीत को लोकगीत में कैसे पिरोया जाता है, ज़रा बताइए विभाजी।
1: जट जटिन मिथिला का एक खेल है, ये भी एक नृत्य है और जिसे बारिश के समय में खेला जाता है। इसके पीछे की कहानी ये है कि एक बार अकाल पड़ा, सूखा पड़ा और उस सूखे के कारण कहीं बारिश नहीं हो रही थी, फसल सूख रही थी फसल, तो जट वो चला विदेश कि हम तो परदेश जा रहे हैं। जटिन उसकी पत्नी उसको वो कह के गया कि जैसे ही तुम्हें आकाश में मेघ दिखे तुम मुझे आवाज़ देना और मैं वहाँ से आऊँगा। 12 बरस हो गए, इस बीच बारिश नहीं हुई, जट परदेश में था, कमाता रहा, जटिन के संदेश का इंतज़ार करता रहा। जटिन भी अकेली थी, वो अपने मायके चली गई। 12 साल के बाद उसने देखा कि आकाश में काले काले मेघ आए हैं, तो उसने वहीं से आवाज़ दी, ए जटिन।

जट्टा को आवाज सुनाई दी। उसने वहीं से कहा, एलियोगे जट्टिन एलियो, एलियोगे जट्टिन एलियो, आयब गेलियोगे जट्टिन आयब गेलियो। और जट्टा आ गया, जटिन भी मायके से आ गया। अब जब 12 साल के बाद पति पत्नी मिले हैं तो थोड़ा सा मान मनोबल तो होगा ना। तो जटिन कहती है, तुमसे मैंने जब जब टीका मंगवाया, गहने मंगवाए, तुम कभी भी जो है ले करके नहीं आए। मेरी बाली उम्र जो है, क्योंकि बचपन में तब शादी हो जाती थी, वो बर्बाद हो गई। तो जटा भी कहता है, मैंने जब तुमको दिया तो तुम तो मायके में जाके बैठी थी, नैहर में जाके बैठी थी, तो कैसे पहनोगी। तो ये इस जट जटिन की कथा और उसके बीच ये गीत है।

0: वाह वाह वाह, क्या बात है विभा जी, बहुत अच्छा आपने गाया है और बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत आभार विभा जी, और बहुत कम समय में बहुत सारी प्रस्तुतियां दी, शुक्रिया आपका।
1: बहुत देर से हम सुन रहे थे आप लोगों की, अब हम लोगों के गाने गावे की बारी है। नानू भैया बहुत ही हो गई, चलो आ जाओ अब अपनी बुंदेली को झंडा फहरावे। बुंदेलखंड की खासियत ये है कि वहां अगर आप किसी का नाम पूछें, कहे भैया तुम्हारा नाम का है, तो जवाब आएगा तुम्हें क्या करने, मतलब नाम बताने से पहले व्यक्ति ये सवाल पूछेगा कि तुम्हें करना क्या है, नाम से क्या करना है। लेकिन बुंदेलखंड में बहुत प्रेम है, नरोत्तम बेन बुंदेलखंड के बहुत प्रसिद्ध गायक हैं। तो भैया नानू भैया इसी के साथ शुरू करो आज की महफिल, फिर तुम्हारी मर्जी जो तुम गावे चाहो।
2: तो प्रणाम पहले सभी जनन को, नरमदे हर, जय महाराष्ट्र जय भारत।
3: ये बम्बुलिया और एक लमटेरा, ये बहुत ही अद्भुत चीज है बुंदेलखंड के। बुंदेलखंड का सबसे फेमस फॉर्म है राई। बुंदेलखंड के फोक की आप बात करेंगे तो राई के बिना मामला अधूरा होता है। ऐसा ही ये है बम्बुलिया और लमटेरा। लमटेरा यानी लंबी टेर, लंबी टेर लंबी आवाज। तो बहुत अच्छी जानकारी लोगों के से हमें इनके बारे में मिली कि पहले क्या होता था कि लोग गांवों में रहते थे, गांवों से जाते थे, खेत के रास्ते से गुजरते थे, मेला देखने जा रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो एक साथ निकला करते थे वो लोग। और एक बंदा कहीं बहुत दूर है बैलगाड़ी में, उसने वहां से कुछ एक लाइन बोल दी, कुछ एक लाइन उसने गा दिया, फिर पीछे का कोई भी बंदा है जिसने सुना बैलगाड़ी पर चला रहा है तो वो उसकी एक लाइन सुनकर जो है उसका जवाब दिया करता था। फिर किसी और छोर पे कोई दूसरा बंदा होता था, उसने सुना, उसको जवाब सूझा तो ऐसा फिर वो गाता था, तो उसको लमटेरा कहते थे। इसी से मिला हुआ है बम्बुलिया, वो भी लंबी लमटेरा का ही एक रूप है, उसमें देवी महिमा खासकर नर्मदा जी इन सबका जो जिक्र होता है उसके लिए मामला है। भाई चंग पैटर्न पे आप चलते चलिएगा।

0: थैंक यू।
1: वाह वाह क्या बात है।
0: धन्यवाद धन्यवाद
1: नरोत्तम जी, बहुत बढ़िया आप गा रहे हैं। अगर बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा गाया, और ज़ोरदार तालियां नानू जी के लिए, ज़ोरदार तालियां, क्योंकि ये जो पूरी कहानी मध्य प्रदेश की, बुंदेलखंड की कहानी थी इनके गाने में। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं उत्तराखंड की ओर। आमंत्रित कर रहे हैं ममता वर्मा को, जो वैसे पहाड़ों पर हम जब सैर करने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। बर्फ़ की बारिश में भीगना बड़ा सुखद लगता है, लेकिन वहाँ का जीवन कितना कठिन है ये हम में से शायद ही कोई सोचता है। लेकिन पहाड़ों का लोकगीत बहुत ही सुंदर है, बड़ी मिठास है। भले ही आपको समझने में कठिनाई हो, लेकिन मीठी आवाज़ में ममता वर्मा बहुत बढ़िया गाती हैं। तो ममता से हम, उनसे कुछ पहाड़ों के बारे में कुछ जानकारी भी चाहते हैं। ममता, हम आप गाए इससे पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। हमने सुना है कि उत्तराखंड, जहाँ की आप रहने वाली हैं, वहाँ का जीवन काफ़ी कठिन है और कमाई का जरिया बहुत कम है, तो वहाँ का जो पुरुष समुदाय है वो कमाने के लिए शहरों की ओर चले जाते हैं और महिलाएं अकेली रह जाती हैं। महिलाएं अपना जीवन यापन खुद करती हैं, खेती किसानी से लेकर जो भी काम होता करती हैं, और बड़ी निडर होती हैं। तो हम ममता से पूछते हैं, वहाँ के जीवन के बारे में बताइए कि जब पुरुष घर में नहीं होते तो डर नहीं लगता है वहाँ के जो?
2: नहीं, वहाँ की महिलाएं जो होती हैं बहुत निडर महिलाएँ होती हैं, शक्तिशाली होती हैं, कभी कभी भालू और बाघ से भी वो लड़ जाती हैं। नमस्कार, प्रणाम, पहलाद। मैं ममता वर्मा उत्तराखंड कुमाऊं से बिलोंग करती हूँ। मैं आपके सामने जो गाना प्रस्तुत करना चाहती हूँ, उस गाने में ही एक लड़की और एक औरत का दुख पीड़ा जो होता है वो उस गाने में व्याख्यान किया है। ये प्रहलाद मेहरा जी ने ये गाना गाया है। एक लड़की के दुख और उसके पीड़ा, वो जो घर में काम करती है वो उस काम का व्याख्यान इस गाने में किया है।
1: तो वो गा के सुनाइए।

वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब एक हमने सुना है दर्शकों की ओर से फरमाइश भी आई है कि एक गाने पर आप नृत्य भी करती हैं, और वो नृत्य भी थोड़ा सा अगर आप चार लाइन भी गाते हुए सुना सकती हैं तो सुनाइए। और आपकी जो पोशाक है, वेशभूषा है, हम अपने दर्शकों को और अपने रेडियो के श्रोताओं को बता दें कि ममता वर्मा ने जो पोशाक पहनी है, बाकायदा उत्तराखंड की एक जो महिला होती है वहाँ की पोशाक पहन रखी है, जो बहुत खूबसूरत लग रही है।

0: वाह, बहुत सुंदर प्रस्तुति और नृत्य के साथ गाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पूरे सुर में, सुर के साथ और भाव के साथ आपने प्रस्तुत किया। ममता वर्मा, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ये थी लोक संगीत संध्या की विविध रंगी प्रस्तुति। कार्यक्रम के अंत में सभी कलाकारों ने और वहां उपस्थित दर्शकों ने मंच पर जैसे धमाल मचा दी, और इसके बाद वरिष्ठ उद्घोषक जयंत पात्रिकर ने धन्यवाद ज्ञापित किया।
0: आखिर में दो लाइन चलत मुसाफिर मोहलियो रे, इस गाने पर सारे दर्शक खड़े होके नृत्य करेंगे और यहाँ पर मंच पर सारे कलाकार हम सब उसमें शामिल रहेंगे।
2: उड़ उड़ बैठी पनवनिया दो कनिया, पनवा के सब रस ले लियो रे।

0: तो कनिया उड़ उड़ बैठी बज जिया तो कनिया है उड़नी के सब रस ले पिजड़े वाली मुनिया है उड़नी के सब रस ले लियो रे पिजड़े वाली मुनिया। थैंक यू विविध भारती,
1: धन्यवाद।
0: मुंह से रिदम जिन्होंने बजाया, मुझे तौफीक भाई की याद आ गई, एक जोरदार तालियां।
2: शैली जी, एक कमाल की बात यह है कि साज नहीं थे, लेकिन इस बीच में ये नानू और जयंत जी ने जिस तरह से बीट बॉक्सिंग की है वो बहुत कमाल का था, बहुत ही गजब।
1: विविध भारती की ओर से आयोजित सृजन भारती के इस लोकरंग कार्यक्रम में आज की इस शानदार प्रस्तुति के लिए विविध भारती परिवार आप सभी का आभार व्यक्त करता है। इस विविध रंगी शाम में शामिल होकर और उसमें नए रंग भरने के लिए, इन लम्हों को यादगार बनाने के लिए और इस कार्यक्रम की शोभा में चार चांद लगाने के लिए दिल से आप सभी का विविध भारती परिवार आभार व्यक्त करता है, शुक्रिया अदा करता है। हम सभी आभार व्यक्त करते हैं हमारे नगर सेवक शिवा शेट्टी जी के प्रति, हरीश छेड़ा साहब अध्यक्ष बोरीवली सांस्कृतिक केंद्र, ये ऑडिटोरियम हमें उपलब्ध करवाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। राजेश बेलदार जी साहब हमारे निदेशक अभियांत्रिकी विविध भारती के, आपका तहे दिल से शुक्रिया। ताड़े साहब और सभी इंजीनियरिंग के साथियों का, विशेषकर मंगेश सांगड़े जी और विनायक रेणके जी सक्रिय सहयोग देने के लिए हम उनके आभारी हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। साउंड सिस्टम के लिए डीजे जस्सी और उनकी टीम का आभार, और हमारे आज के कलाकारों का हम तहे दिल से आभार व्यक्त कर रहे हैं, डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव, विभा रानी, ममता वर्मा, प्रोफेसर प्रशांत मोरे, नेहा जी और नरोत्तम बेन जी, आप सभी का इस लोकरंगी कार्यक्रम में आपकी शानदार प्रस्तुति के लिए बहुत बहुत आभार। संगत करने वाले सभी साथी सिद्धार्थ मेस्ता, सुधीर जंगम साहब और बाकी साथी थे, उन सभी का हम आभार व्यक्त करते हैं, और आप सभी का एक बार फिर से हम अमूल्य वक्त देने के लिए और बहुमूल्य वक्त देने के लिए दिल से आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विविध भारती की मासिक गतिविधि सृजन भारती के अंतर्गत आयोजित लोक संगीत संध्या लोक रंग के संपादित अंश। इस कार्यक्रम का संपादन और प्रस्तुति तेजश्री कांबले, और अब आज्ञा दीजिए, नमस्कार। ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
3: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
3: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
3: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
4: परेशान हूं मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
5: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ any GI problem is education, nutrition, exercise, and when do you get self-tested and see a doctor. ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
5: अगर आप टाइम पे नहीं सो खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: ये है विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 12 बजे का समय होने जा रहा है। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार।

श्रोताओं, अभी तक आप हमारे केंद्र से सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के ठीक 12 बजे हैं। लीजिए अब सुनिए बच्चों का कार्यक्रम बाल मंडल।

नन्हे मुन्ने बच्चों का अपना कार्यक्रम बाल मंडल। नन्हे मुन्ने बच्चों का अपना कार्यक्रम बाल मंडल।

जी नन्हे मुन्हे दोस्तों, नमस्कार। शुरू हो चुका है आपका चहीता कार्यक्रम, जिसका नाम है बाल मंडल। हमें मालूम है कि संडे का दिन होता है छुट्टी भरा दिन, यानी कि छुट्टी भरा मतलब मस्ती भरा दिन ये होता है, और इंतज़ार रहता है आपको साथ में अपने चहीते कार्यक्रम का, बाल मंडल का। तो भैया, आज का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे अपनी रेडियो दीदी पूजा शर्मा के साथ। उम्मीद करते हैं हमारे सभी नन्हे मुन्हे बच्चे एकदम से ठीक हैं, छुट्टी का आनंद ले रहे हैं, घर के छोटे मोटे कामकाज में अपनी मम्मी दादी पापा दादा और घर वालों का हाथ बटा रहे हैं, अपने कमरे की साफ सफाई कर रहे हैं, और भैया अपने स्कूल का काम भी कर रहे हैं। यही होते हैं ना अच्छे बच्चे। और अच्छे बच्चे वो होते हैं जो साफ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, फिर चाहे अपने कमरे की साफ सफाई हो, घर की हो, आंगन की हो, या अपने हाथों की। जी हाँ, जब भी आप खेलकर बाहर से आते हैं, कुछ खाने को दौड़ते हैं, तो आप पहले अपने हाथों को साबुन से बहुत अच्छे तरीके से धोते हैं। यही पहचान है हमारे अच्छे बच्चों की। जी दोस्तों, तो आज का दिन खास है क्योंकि आज संडे है। जी बिल्कुल, आप सभी जानते हैं और अपना चहीता कार्यक्रम सुन रहे हैं। साथ ही में दोस्तों, आज बहुत खास दिन हम मना रहे हैं, और वो दिन क्या है भला? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपसे एक प्रश्न पूछा जाए, जब संडे का दिन होता है तो आप अपनी मम्मी से, दादी से, या जो भी घर में आपके सदस्य हैं उनसे आप कहते हैं कि भाई आज संडे का दिन है, आज तो आपकी पसंद का, यानी कि हमारे बच्चों की पसंद का कुछ किचन में बनना चाहिए, और वो बनता भी है। भी खुशबू ऐसे कि पूरे घर को महका देती है। आप दौड़े दौड़े आते हैं और अपने मनपसंद की चीज़ जो बनवाई होती है मम्मा से, दादा दादी से, या कोई भी जो घर के और हैं उनसे, और फिर मज़े से उसको खाते हैं, उसका आनंद लेते हैं। क्यों करते हैं ना आप ऐसे? साथ साथ में आप हाथ भी बटाते हैं किचन में, ये भी हमें मालूम है, क्योंकि चाहे लड़का हो चाहे लड़की, घर में काम काज में हाथ बटाना तो अच्छे बच्चों की पहचान है ही, लेकिन वो बच्चे जो किचन में भी हाथ बटाते हैं तो वो तो और भी अच्छे बच्चे बन जाते हैं, है ना? तो भाई अपनी पसंद की चीज़ें आप बनवाते हैं तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसी से ही मिलता जुलता दिवस आज हम मना रहे हैं। दोस्तों, आज हम मनाते हैं वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। आपको बताएं, ये दिन बहुत खास है और ये दिन हर साल 7 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है दूषित भोजन और पानी से होने वाली बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, और ये सुनिश्चित करना कि खेत से लेकर थाली तक हर व्यक्ति को सुरक्षित, पौष्टिक और पर्याप्त भोजन मिल सके। तो भाई देखिए, जब आप बाहर के खाने की जिद करते हैं, फिर घर वाले आपको समझाते हैं कि भाई देखिए ना, घर का बना खाना सेहतमंद होता है, सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है घर का बना खाना, है ना? और उसमें अगर आप अपनी रंग बिरंगी थाली सजाते हैं, यानी कि उसमें तरह तरह के आपके पास फल होते हैं, तरह तरह का खाना होता है, यानी कि दालें उसमें होती हैं, तरह तरह की सब्जियां उसमें होती हैं, है ना? आप चावल भी खाते हैं, आप चपाती भी खाते हैं, आप और अनाज भी खाते हैं, तो यानी कि आपकी थाली हो गई रंग बिरंगी। और रंग बिरंगी थाली से ना आपका स्वास्थ्य एकदम ठीक रहता है, आप एकदम से सुरक्षित रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, और अगर आप तंदुरुस्त हैं तो आपका मस्तिष्क, यानी कि आपका दिमाग भी बिल्कुल ठीक ठाक काम करता है। तो दोस्तों, बीमारियों से बचे रहने के लिए ज़रूरी है कि हमारा खाना पीना बहुत अच्छा हो। बिल्कुल एकदम से स्वस्थ रहने के लिए साफ सफाई का होना बहुत बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसीलिए ये दिवस मनाया जाता है, ताकि आप खराब खाना ना खाएं, आप बासी खाना ना खाएं, आप ऐसी चीज़ ना बार बार खाएं जो आपके स्वास्थ्य को खराब कर सकती है। तो आपको बताएं कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है। देखिए, ये दिवस जो है ना, वो हमें जागरूक करता है कि बीमारियों से बचना बहुत ज़रूरी है। असुरक्षित भोजन के सेवन से दुनिया भर में हर साल लाखों लोग खाद्य जनित बीमारियों का शिकार होते हैं। दोस्तों, ये दिन इन बीमारियों को रोकने व जागरूक करने के लिए सहायता करता है। ये दिवस इस बात पर भी जोर देता है दोस्तों, कि सुरक्षित भोजन उत्पादन और उपभोग सरकार, खाद्य उत्पादकों और उपभोक्ताओं की साझा जिम्मेदारी है।
सुरक्षित भोजन न केवल अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है दोस्तों, बल्कि कृषि, पर्यटन और वैश्विक व्यापार को भी मजबूती प्रदान करता है। दोस्तों आपको बताएं, इसकी शुरुआत हुई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी कि FAO द्वारा। संयुक्त रूप से इसकी अनाउंसमेंट हुई थी कि इस दिवस को 7 जून को मनाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2018 को प्रस्ताव पारित कर हर साल 7 जून को इस दिवस को मनाने की घोषणा भी कर दी। पहला विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून 2019 को मनाया गया था। अब देखिए, हम और आप कैसे योगदान दे सकते हैं इस दिवस को और अच्छे से मनाने के लिए। देखिए दोस्तों, स्वच्छता बनाए रखना, हमारी साझेदारी, एक मतलब जागरूक रहना और हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम अपने आसपास में स्वच्छता बनाए रखें। खाना बनाने और खाना खाने से पहले हाथों को बहुत अच्छे तरीके से साबुन से धोना चाहिए। कच्चे और पके भोजन को अलग अलग रखना चाहिए दोस्तों। देखिए जैसे मांस है, समुद्री भोजन है या पोल्ट्री के अन्य खाद्य

पदार्थ है, तो इनसे इनको अलग अलग रखें ताकि बैक्टीरिया आपस में ना बढ़ें और ना ही फैलें। और ये भी ज़रूरी है दोस्तों कि भोजन को जो बनाने की सामग्री है उसको सही तापमान पर पकाया जाए, भोजन को सुरक्षित तापमान पर पकाएं, खासकर मांस, सूप और इस तरह की दूसरी चीज़ें। दोस्तों सुरक्षित पानी और कच्चे माल का उपयोग करें, जैसे हमेशा साफ पानी का ही प्रयोग हमें करना चाहिए, ताज़ी सुरक्षित सब्जियों वो फलों का ही हमें सेवन करना चाहिए ताकि हम बिल्कुल स्वस्थ रहें। और अगर हम स्वस्थ हैं तो भाई हमारा दिमाग भी एकदम एकदम स्वस्थ है, और दिमाग स्वस्थ है तो हमारे बच्चे जो हैं अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे और खेल के मैदान में भी एकदम आगे रहेंगे। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें हमारे बच्चे हमारे दोस्त पीछे रहें? नहीं जी, ऐसा तो कोई क्षेत्र नहीं है। तो इन्हीं जानकारियों के साथ नन्हे मुन्हे दोस्तों अब बढ़ते हैं आगे और आपको सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत, उसके बाद हम आपके लिए लेकर आए हैं एक प्यारी सी कहानी। तो आइए सुनते हैं पहले ये गीत।

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पति का कपड़ा।
0: कपड़ा?

0: यूनिवर्सिटी
1: UGC से मान्यता प्राप्त। हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
0: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
0: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त। हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: जी नन्हे मुन्हे दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम में, जिसका नाम है बाल मंडल।

दोस्तों, आपको हमने बताया था कि हम एक प्यारी सी कहानी आपके लिए लेकर आए हैं। तो भाई, कहानियाँ सुनना किसे पसंद नहीं है भला, चाहे फिर वो कहानी दादी सुनाए, नानी सुनाए या फिर आपकी कोई रेडियो दीदी। बिल्कुल, तो है ना आप तैयार कहानी सुनने के लिए? पर कहानी के अंत में हम आपसे ये जरूर पूछेंगे कि आपको इस कहानी से क्या सीख मिली। तो चलिए करते हैं शुरुआत। दोस्तों, रोहन और राधा को गर्मी की छुट्टियों का इंतज़ार रहता था, क्योंकि दोनों हर बार छुट्टियों में अपने नाना नानी के घर सुंदरपुर जाते थे। गांव जाने का समय होता तो वे गाना गाने लगते, नाना के घर जाएंगे, दूध मलाई खाएंगे, मोटे होकर आएंगे। सुंदरपुर में जो कुछ रोहन और राधा को मिलता था, वे कभी उन्हें अपने शहर में नहीं मिलता था। उनका शहर था जयपुर। गाँव का वातावरण, वहाँ का खूबसूरत तालाब, बचारों ओर से रंग बिरंगे फूलों से घिरा रहता था, जिसमें सफ़ेद सुंदर बतकें भी तैरती रहती थी। तालाब के पास ही लगा बड़ा सा आम का सदाबहार पेड़ नाना नानी की तरह दिल खोल कर स्वागत वो प्यार देने को तैयार रहता था। हर गर्मी की छुट्टी उनको खेलना, बाहर जाना, खूब सारी मस्ती करना बहुत अच्छा लगता था। और उस तालाब के किनारे पर वो ये सारी मस्तियाँ किया करते थे, यानी कि ये वाला स्थान उनका फेवरेट बन चुका था। हर साल उसका जन्मदिन भी मनाया करते थे। किसका? उस आम के पेड़ का। छुट्टियों में जब जाते तो एक दिन उस पेड़ का जन्मदिन मनाया करते। उस दिन वे अपने दोस्तों और परिवार के लोगों को बुलाते, पेड़ को सजाते और खूब आनंद मनाते। इस बार दोनों ने मिलकर सोचा कि वे आम के पेड़ के जन्मदिन पर उसे सजाने के लिए तरह तरह के रिबन व चमकीले रंग बिरंगे कागज लेकर जाएंगे, ताकि लहराता पीले मीठे आमों से लदा आम का पेड़ अपने जन्मदिन पर खूब सुंदर लगे, गाँव के आकर्षण का केंद्र बने। जब दोनों अपने मम्मी पापा के साथ नाना जी के घर पहुंचे, तो वो सबसे पहले रोहन ने अपने प्यारे पेड़ के बारे में पूछा, नाना जी, क्या हमारा पेड़ बिल्कुल ठीक है? राधा बोली, रोहन भैया, नाना जी से क्या पूछते हो? चलो, हम तालाब के किनारे अपने सभी दोस्तों से मिलकर आते हैं और पेड़ से भी। फिर क्या था, दोनों भाई बहन झट से तालाब के किनारे जाने के लिए दौड़ लगाने लगे। उनके नाना जी उन्हें बुलाते रहे, पर उनको तो बस अपने आम के पेड़ से मिलने की जल्दी थी। बस वे जैसे ही तालाब के किनारे पहुंचे, उन्होंने देखा कि तालाब का पानी बहुत गंदा हो गया है। अब तो उसमें बतकें भी नहीं तैर रही थीं। आसपास रंग बिरंगे फूल भी मुरझा गए थे, साथ ही साथ उनका प्यारा आम का पेड़ गायब हो चुका था। वे सोचने लगे, अरे, हमारा प्यारा पेड़ कहाँ गया और सुंदर तालाब किसने गंदा कर दिया? दोनों का चेहरा उतर गया था। रोहन राधा से बोला।

ला, कहीं किसी ने पेड़ को काट तो नहीं दिया? दोनों घर जाने की सोच ही रहे थे कि उन्हें सामने से नाना जी आते दिखाई दिए। नाना जी दोनों बच्चों की उदासी का कारण जानते थे। उन्होंने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया और बताया कि आजकल शहरों से बहुत से लोग छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ आ रहे हैं। वे अपने साथ थैलियों में बंद की हुई बड़ी सारी खाने पीने की चीजें भी ला रहे हैं। जब वो वापस जाते हैं तो सारा कचरा इधर ही फेंक जाते हैं। सुंदर तालाब में भी उन थैलियों को फेंक जाते हैं। ये जो रंग बिरंगी थैलियां तुम पानी के ऊपर दिखाई देख रहे हो ना, ये सब उन लोगों के ही कारण हैं। इसलिए अब इस तालाब पर कोई जानवर पानी पीने भी नहीं आता। सारे फूल भी मुरझा गए हैं। कुछ दिन पहले कुछ लोग आए और कई सारे पेड़ काट कर ले गए, जिसमें तुम्हारा प्यारा आम का पेड़ भी था। आपने उन्हें रोका नहीं नाना जी? रोहन ने पूछा। तो मायूस नाना जी ने कहा, वे सरकारी आदेश लाए थे, मैं कैसे रोक सकता था। राधा और रोहन बहुत दुखी हुए। तभी रोहन बोला, चलो राधा, हम एक नया आम का पेड़ लगाते हैं और अपने दोस्तों को बुलाकर लाते हैं। हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने से क्या होगा, हमें तो कुछ ना कुछ तो करना ही है ना, ताकि हम अपने तालाब के आसपास की गंदगी को साफ कर सकें। हम इस जगह को कैसे सुंदर बनाएंगे, बातों से नहीं करके दिखाना होगा। राधा ने भी झट से हाँ कहा और उठ खड़ी हुई। अगले दिन रोहन व राधा अपने दोस्तों के साथ मिलकर तालाब के आसपास के कचरे को साफ करने में जुट गए। एक नया आम का छोटा सा पौधा भी लगाया। वो आम की गुठली जमीन में दबा दी। उस दिन सभी ने मिलकर आम के पेड़ का पहला जन्मदिन भी मनाया। दोनों जो रिबन, रंग बिरंगे कागज जयपुर से लाए थे ना, उनसे तालाब के आसपास के पेड़ पौधों को सजाया और मिलकर वादा किया कि वे सदा अपने आसपास सफाई रखेंगे। रोहन ने तालाब के किनारे अपने नाना जी से लिखवाया, कृपया कचरा तालाब में ना डालें, वो पेड़ ना काटें। दोनों भाई बहन यह सोचकर खुश थे कि वह दिन भी जल्दी आएगा जब उनका लगाया आम का पेड़ बड़ा हो जाएगा और हम जैसे ही शहर से आएंगे तो उसे कस कर गले लगाएंगे, जी भर कर प्यार करेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की कहानी, आम का पेड़।

तो दोस्तों, कहानी से पहले हमने कहा था कि कहानी तो हम सुनवाएंगे आपको, लेकिन हमने आपसे ये ज़रूर पूछना है कि इस कहानी से आपने सीखा क्या। हाँ, हमारे सभी दोस्त बहुत ही समझदार हैं। देखिए दोस्तों, अभी अभी हमने विश्व पर्यावरण दिवस मनाया, और ये दिवस सिर्फ एक दिन के मनाने का तो है नहीं, हमें हर दिन पर्यावरण दिवस मनाना है। यानी कि हमें हर दिन अपने पर्यावरण की रक्षा करनी है, सुरक्षा के बारे में सोचना है, क्योंकि इसे गंदा भी हम लोग ही तो कर रहे हैं ना। तो इस कहानी से हमने ये सीखा कि जो हमारे सबसे प्यारे मित्र हैं, चाहे वो तालाब है, चाहे वो रंग बिरंगे फूल हैं, चाहे वो प्यारा आम का पेड़ है, चाहे वो कोई और फलदार पेड़ है, हमने उनकी रक्षा करनी है, क्योंकि ये बिना मांगे हमें सब कुछ देते हैं, तो हम उनके साथ इतना बुरा क्यों करते हैं भला। तो अच्छे बच्चे हमेशा अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, और उनको उतना ही प्यार देंगे जितना ये हमें देते हैं।

जी हाँ दोस्तों, और हमें भी पूरी पूरी उम्मीद है कि हमारे दोस्त भी ये पुकार सुनेंगे कि अपना पर्यावरण बहुत अच्छे से रखना है, इसकी देखभाल हम ही ने करनी है, इसको दूषित हम बिल्कुल नहीं करेंगे। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा सा समय हमारे पास है तो आपको हम एक रोचक जानकारी देना चाहेंगे। क्या दोस्तों आपने कभी सोचा है कि जानवर आपस में कैसे बात करते हैं? आपने देखा होगा कि जब एक मेंढक के टरटराने की आवाज़ आती है तो दूसरी तरफ से दूसरा मेंढक भी टरटराता है। हाँ बिल्कुल, तो एक रिसर्च में ये पाया गया है कि अलग अलग तरह के जानवर जो हैं वो एक दूसरे से बात करते समय एक ही रिदम पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं। साइंटिस्ट के अनुसार हालांकि जुगनुओं में रोशनी का चमकना, मेंढकों का टर्राना जैसे ये कम्युनिकेशन के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, ये जीव लगभग एक ही टेम्पो यानी लगभग एक ही गति, एक ही रफ्तार, एक ही लय को संकेत के रूप में एक दूसरे के पास भेजते हैं और सिग्नल देते हैं। ये कम्युनिकेशन सिग्नल 0.5 से 4 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी रेंज में बार बार आते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि जीव इस रिदम का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग प्रजातियों के दिमाग इस रेंज में डेटा को आसानी से समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि जैसे एक स्पर्म वेल है, तो अगर उसकी बात करें तो ये बात करने के लिए क्लिंकिंग जैसी आवाज़ें निकालती हैं और दूसरी स्पर्म वेल भी ठीक वैसी ही आवाज़ निकालती है। आपने ये भी नोट किया होगा कि जब एक कुत्ता भौंकता है तो उसी रिदम में, उसी फ्रीक्वेंसी में दूसरी साइड से भी आवाज़ आती है, बिल्कुल वैसी ही फ्रीक्वेंसी, वैसे ही भौंकने की, यानी कि एक दूसरे के साथ ये बातचीत कर रहे होते हैं। तो इन्हीं जानकारियों और इन्हीं गीतों के साथ आज का बाल मंडल कार्यक्रम का समय यहीं पर पूरा होता है। अपना बहुत ख्याल रखिए, बड़ों का कहना ज़रूर ज़रूर मानिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए और हाँ, खेल के मैदान के साथ खूब दोस्ती बनाए रखिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ दीजिए अपनी रेडियो दीदी पूजा शर्मा को अनुमति। नमस्कार।

0: नन्हे मुन्ने बच्चों का अपना कार्यक्रम बाल मंडल।
1: अभी आप सुन रहे थे बाल मंडल कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन के 12:30 हो चुके हैं। लीजिए अब सुनिए सैनिकों के लिए कार्यक्रम।

सैनिक भाई बहनों, जय हिंद। जी हाँ, जलवा हमारी भारत माता का, जो रुतवा हमारी भारत माँ का है, वो पूरे संसार में और कहीं नहीं और किसी का नहीं। बदौलत आप सब

सैनिक भाई बहनों, जो गीत अभी अभी आपने सुना वो हमने लिया था हिंदुस्तान की कसम फिल्म से। आवाजें आपने सुनी सुखविंदर सिंह, उदित नारायण, जसपिंदर नरूला व साथियों की। और ये गीत आपके रेडियो सेट्स पर है बाजीगर फिल्म से। आवाजें इस गीत में आप सुनेंगे कुमार सानू, अनु मलिक व साथियों की।

सैनिक भाई बहनों, अगला गीत है कसूर फिल्म से, आवाजें अलका याग्निक और उदित नारायण की।

सैनिक भाई बहनों, अगला गीत है कुमार सानू और अलका याग्निक के युगल स्वरों में। फिर तेरी कहानी याद आई फिल्म से।

सैनिक भाई बहनों, ये था द जेंटलमैन फिल्म से इस कार्यक्रम का आखिरी गीत। आवाजें आपने सुनी SP सुब्रमण्यम और चित्रा की।

इसी गीत के साथ आज का सैनिकों के लिए कार्यक्रम यहीं पर संपन्न करने की अपनी रेडियो दोस्त पूजा शर्मा को दीजिए अनुमति। जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। दिन का 1 बजा है, अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा। राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर लेकर हम बस कुछ ही पलों में हाजिर होंगे।

लीजिए श्रोताओं, सुरीला सफर कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं। आज आपके साथ आपके सुरीले सफर की हमराही बनेगी आपकी ये साथी पूजा नरानिया। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

जी हाँ श्रोताओं, आज की इबारत तो आपने पढ़ ही ली है ना? जी हाँ, मैंने कहा था कि जरा प्यार से पढ़िएगा। प्यार से पढ़ा ना आपने, मुझे यकीन है कि बहुत उलझाया नहीं होगा आज की इबारत ने आपको, क्योंकि बहुत ही सामान्य शब्दों से सरल भाषा में कविता के रूप में ये इबारत हमने आपके लिए, सिर्फ आपके लिए तैयार की है। हाँ तो हम सफर पर जा रहे हैं ना, तो उलझन में क्यों फंसाना? प्यार से लिखा है और प्यार से पढ़ा है, तो प्यार से ही इस सफर को तय भी तो करेंगे हम और आप मिलकर साथ में। तो तैयार है ना आप सभी मेरे साथ आज के इस सफर पर जाने को? हाँ, मैं पहली बार आपसे इस कार्यक्रम के माध्यम से मुखातिब होने जा रही हूँ और स्वागत करती हूँ आप सभी का तहे दिल से आपके अपने कार्यक्रम सुरीला सफर में। हमारे सभी प्रिय श्रोताओं ने मुझे आज पहली बार सुरीला सफ़र शुरू करने की बहुत शुभकामनाएं बड़े प्यार से बड़े सम्मान के साथ दी है। मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को इसके लिए धन्यवाद अर्पित करती हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुझे भी अपना साथी स्वीकारने के लिए।

कुछ साथियों ने तो मुझे पायलट घोषित किया है। जी हाँ, क्योंकि हम सुरीला सफ़र लेकर जो चलने वाले हैं ना, इस सफ़र की पायलट उन्होंने मुझे बना दिया है। मुझे बड़ी खुशी है कि आपने मुझे इस तरीके से इस नाम से नवाजा है। और देखिए कुछ श्रोता मुझे किस तरह से आज मेरा स्वागत करते हुए हमें संदेश भेज रहे हैं कि देश की सुरीली धड़कन पर पहली बार जब नए उद्घोषक की जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है कि कहीं ये पूजा जी तो नहीं। देखिए उन्होंने मेरा नाम भी इसमें शामिल कर लिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बार सुरीला सफ़र लेकर आ रही हैं तो स्वागत। और विविध भांति का प्रसारण हवा के संग संग जब होता है तब खुशियां ही खुशियां दामन में समा जाती है। जिया बेकरार होने के साथ बहार छा जाती है, भंवरे भी गुनगुनाने लगते हैं, बाग की हर कली खिलने लगती है, तब ये गीत गूंज उठते हैं। कुछ गीतों के बारे में उन्होंने कहा, जैसे कि इन हवाओं में इन फिजाओं में आजा आजा रे तुझको विविध भारती का प्यार पुकारे। क्या बात है,

तो श्रोताओं, सबसे पहले आपके लिए हम इबारत भी तो पढ़कर सुना देते हैं, है ना? क्योंकि हाँ, आपने तो पढ़ ली है, पर फिर भी हम आपको पढ़कर ज़रूर सुनाएंगे। कुछ श्रोता जो कुछ देरी से जुड़ पाए हैं, उनके लिए भी कुछ आसानी हो जाएगी, है ना? तो पढ़ देते हैं आपके लिए हम आज की इबारत। प्यार की गली में जब से तेरी आहट उतरी है, हवा भी गीत गुनगुनाए, पानी भी कहानी सुनाए, आँख चुराए, फिरती हूँ मैं सबसे तेरे नाम पर। आंचल में भर ली है मैंने खुशियाँ इस संसार की, कलियाँ खिला दी तूने मेरे गोरे अंग में, जियरा ने तेरी यादों में कैसी सांवरी महफिल सजाई है। दो मन थे जो दूर दूर तक अपनी राहों में भटके, आज मोहब्बत ने दोनों की एक डोर बंधाई है। आग ओढ़कर पिघले जवानी, चांदनी भी शर्मा जाए, किसी के होठों पर मेरा नाम 100 बार उभरा है। आंखें चार हुई तो जैसे थम गई पुरवैया भी, तकदीर ने चुपके से प्रेम दीपक वारा है। जा रे जा कहकर भी तुझको जाने कब जाने देती हूँ, हर इनकार के पीछे मैंने एक इकरार उतारा है। संगमरमर सा चेहरा तेरा, पानी सा निर्मल मन है, हवा ने तेरी खुशबू को हर सू आकर बिखेरा है। हम जोली छेड़ रहे हो क्यों दिल के कोमल तारों को, इंतजार की लंबी रातों ने सपना सवारा है। सीने के सुर्ख बाग में अब तेरी चाहत खिलती है, हर पंखुड़ी पर तेरे नाम का रंग गहरा है। प्यार की गली से होकर जो तेरे दिल तक पहुंची हूँ, अब मेरी हर धड़कन ने बस तुझको ही पुकारा है।

जी हाँ श्रोताओं, ये थी आज की इबारत एक कविता के रूप में, प्यार से ओतप्रोत। हाँ, प्यार से भरी बातें। प्यार से भरी है इबारत एक स्त्री का मन, जब प्यार से भर जाता है तो हवा, पानी और मौसम कैसे उसे सताने लगते हैं, बस हर पल मिलन का इंतजार रहने लगता है। अनछुआ सा प्यार जो सिर्फ नजरों से ही ऐसी चुवन दे जाता है कि वो शर्म से पानी पानी हो जाती है, मन बस में नहीं रहता, बदन का तार तार पिघला देता है। वैसे प्यार तो है ही इस इबारत में, पर साथ ही क्या और है जो हमें प्यारा है, जिसके आने का हमें इंतजार है अब बेसब्री से, है ना, जिसके बिना हमारी अगन कम नहीं होने वाली है। आप बताते चलिए, सुरीले सफर का सुरीली शुरुआत हम करने जा रहे हैं इस गीत के साथ, जिसे सुनकर आपको पता लग ही जाएगा कि मैंने पूछा है कि वो क्या है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, हमारी एक श्रोता कह रही हैं कि प्यार की गली बहुत सक्रिय होती है, एक बार व्यक्ति पहुंच तो जाता है लेकिन वापस आना मुश्किल होता है, और कभी वह आ भी गया तो इश्क में डूबी ठंडी हवा उसे पुरानी आहट लिए चुभने लगती है, उनकी प्रेम कहानी आंखों द्वारा खारा पानी बन बहने लगती है, अपने आप से आंखें चुराने लगते महबूब के नाम का आंचल ओढ़ फिरते हैं, फिर चमन में कलियां खिले या कांटे मिले उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता, है ना। और उन्होंने एक गाना भी हमें यहाँ पर बताया है, देखते हैं कि क्या वो आगे इस सफर में शामिल होने वाला है। फिलहाल इस इबारत से जो शब्द है उससे रिलेटेड ये जो है हम गाना आपको सुनवाने वाले हैं, उसी शब्द पर आधारित। जी तो, लेकिन मैं उससे पहले आपको प्रश्न सौंप रही हूँ, वाद्य यंत्रों के साथ इस गीत में ऐसी कौन सी क्रिया है जो ताल से ताल मिला रही है, बस उसी का नाम हमें लिख भेजिए। और इस फिल्म में ये एक और सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ, बहुत ही सीधा सा सवाल है कि इस फिल्म में मनोज कुमार जो कि अभिनेता और जया भादुड़ी अभिनेत्री हैं, इनका आपस में क्या रिश्ता है, क्या है जो इन्हें आपस में जोड़ता है।

जी हाँ साथियों, पानी रे पानी, इसी का तो इंतजार है हम सभी को बिल्कुल बेसब्री से, है ना। पानी रे पानी, तेरा रंग कैसा, वैसा ही तो रंग है जिसमें भी ये घुल जाता है, मिल जाता है, बस वैसा ही हो जाता है। शरबत में घुल जाए तो वैसा, भूख को दबा के और प्यास बुझाए ऐसा, प्यास में प्यार में पानी प्यार के तरह ही बन जाता है। तभी तो पानी के बिना प्यार की बातें ही अधूरी होती हैं। और हम सभी को प्यारा है ये पानी, और पानी शब्द हमारी इबारत में हमने शामिल किया था, है ना। और हमारे कुछ श्रोताओं ने हमें लिख भी भेजा था ये गीत, पानी रे पानी। बिल्कुल सही, जो कब आएगा, कितना इंतज़ार है पानी का हमें, बरसात का पानी जो तपती धरती को ठंडा कर जाएगा, हमें शीतलता दे जाएगा। बस हम कर रहे हैं पानी का इंतजार। श्रोताओं, आप बताते चलिए, हम आपके संदेशों को शामिल करते जाएंगे। बहरहाल आपका आपके संदेश हमें मिल रहे हैं और कुछ कमेंट्स हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं।

हमारे श्रोता कहते हैं कि सुरीला सफ़र का कार्यक्रम हम सफ़र बनने के लिए उन्होंने स्वागत कहा है, और ज़िंदगी की ट्रेन में अब हम काफ़ी आगे की डब्बे में सवार हैं, जहां प्यार के मायने बदल जाते हैं। हमारा प्यार अब बच्चों तक सीमित रह गया है, पुराने प्यार के किस्से याद करने की चीज़ भी नहीं रह गई। वो रह गुज़र, वो कश्मकश, वो जज्बात, वो अफसाने, वो अनसुलझे सवाल, वो अनकहे इजहार अब हमारे लिए बेमानी है। ये सारी बातें हमारे युवा श्रोताओं के लिए हैं, ऐसा वो लिख रहे हैं। वैसे ये गाने सुकून देने वाले हैं जो आज प्यार से भरे हुए हैं। वैसे ऐसा तो नहीं है कि आप इन जज्बातों को भूल जाएं। आज हम इस कार्यक्रम में जो बात करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है आपको आज वो याद आने वाले हैं, सारे प्यार भरे लम्हे जिन्होंने आपको कभी गुदगुदाया था।

जी श्रोताओं, हमने आपसे पूछा था वाद्य यंत्रों के साथ इस गीत में ऐसी कौन सी क्रिया है जो ताल से ताल मिला रही है, और हमने एक और सवाल पूछा, इस फिल्म में मनोज कुमार और जया भादुड़ी को ऐसा उनका क्या रिश्ता है और ऐसा क्या है जो उन्हें आपस में जोड़ता है। जी हाँ, प्यार ही तो है वो रिश्ता जो दो लोगों को आपस में जोड़ देता है। और वाद्य यंत्रों के साथ जो क्रिया है वो है ताली। ताली बजाकर इस क्रिया के साथ इस गीत में वाद्य यंत्रों के साथ ताल से ताल मिलाया जा रहा है, और कितना खूबसूरत गीत हमें ये मिला है ना।

तो हम आपके संदेशों को साथ ही साथ पढ़ते चले जाएंगे। देखिए हमारे एक श्रोता क्या लिख रहे हैं। जी, उन्होंने स्वागत किया है और एक श्रोता लिख रहे हैं कि प्रेम की गली में आहट यानी किसी के आगमन का पहला एहसास रहस्यवाद और प्रेम के प्रारंभिक चरण होता है, जहां प्रेमी के मिलन की कल्पना में पूरी प्रकृति, हवा, पानी सभी आनंदित हो उठते हैं। साथ ही प्रकृति का सजीव और संवेदनशील रूप उजागर होता है, जैसे हवा का गुनगुनाना और पानी का कहानी सुनाना मानवीकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। जी हाँ, बिल्कुल सही फरमाया आपने। ऐसे ही हमारी एक श्रोता कहती हैं कि जिस भी उम्र में जो चीज़ दिल को छूती है वही यादों में शामिल हो जाती है, जैसे तुम्हारी आहट मेरी यादों में ही शामिल नहीं है, वो तो हवा की सरसराहट में किसी गीत की धुन में ऐसे बस गई है कि जैसे ही ज़रा सी हवा लहराती है लगता है कि तुम आए हो, कोई गहरी संवेदना मन को छू जाती है। जब तुम पुकारते हो तुम्हारे दिल की गली तक पहुँचना कितना मुश्किल था, मगर जिंदगी के हर पड़ाव को जीते हुए बस यही चाहती हूँ, मेरी हर धड़कन पर बस तुम्हारा नाम हो। क्या बात है, बहुत खूब आपने लिखा है। एक श्रोता लिखते हैं कि आज फिर एक बार कविता को पढ़ने का मौका मिला है और पूरे भाव को अगर देखा जाए तो दिल की धड़कनों में छिपी एक मीठी सी हलचल जो किसी खास व्यक्ति की मौजूदगी, उनकी मुस्कान या उनकी यादों से जुड़ी होती है, उसे उभारने का प्रयास हुआ है। प्यार ऐसा एक शब्द है जो मानव जीवन के सबसे गहरे और जटिल भावनाओं में से एक को व्यक्त करता है। फिर भी प्यार को आमतौर पर एक गहरी भावना, लगाव और निस्वार्थता के रूप में परिभाषित किया जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने।

एक श्रोता कह रहे हैं कि आज की काव्यमय इबारत मन को मोह लेती है, प्यार की कोमल सुंदर भावनाओं को दोहरा देती है। बिल्कुल सही बात है, आज हमने प्यार के साथ हवा, पानी और प्रकृति को भी शामिल किया है। आपको लगभग सारे ही गीतों में आज अगर देखा जाए ना इन गीतों को, तो उसमें प्रकृति कहीं ना कहीं शामिल है, पानी और हवा कहीं ना कहीं शामिल है। चलिए अगला गीत हम आपको अब सुनवाने जा रहे हैं। इस गीत को सुनकर बताइएगा कि इस गीत में हेमा मालिनी जी किसे कह रही हैं, जा री जा। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि हमने आपको जो गीत सुनाया कार्यक्रम की शुरुआत में, वो था फिल्म शोर से लता मंगेशकर और मुकेश साथियों की आवाज़ों में इंद्रजीत सिंह तुलसी का लिखा गीत, और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत को संगीत से सजाया था। और अब ये अगला गीत।

श्रोता, ये जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म पड़ोसन से, इस गाने में जो आपको बताना है वो ये प्रश्न है कि ये हसीनाएं किसकी सवारी कर रही हैं।

और श्रोताओं, ये भी बताइए कि क्या आप आज के समय में साइकिल का उपयोग करते हैं। साथ ही साझा कीजिए आपके प्यार के लम्हों में साइकिल ने क्या योगदान दिया।

जी श्रोताओं, आपको हेमा मालिनी वाला गीत भी हम बस थोड़ी ही देर में सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हमने आपको सुनवाया है पड़ोसन फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर, आशा भोसले और साथियों के स्वरों में। और इस गीत में ये हसीनाएं साइकिल की सवारी कर रही हैं, और हमने आपसे पूछा कि साइकिल का उपयोग क्या आप करते हैं, और साथ ही हमें आप ये भी बताइए कि आपके प्यार के लम्हों में साइकिल किस तरह से आपका योगदान देती रही है।

साइकिल उस जमाने में सिर्फ सवारी ही नहीं थी, ये प्यार के लम्हों की साथी भी बनती थी। साइकिल पर प्यार के लम्हों को ज़्यादा जिया जा सकता था, है ना। मोटर बाइक या कार में अगर हम जाते हैं तो इसकी बजाय, क्योंकि क्या होता है कि वक्त इसमें बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है, साइकिल पर तो हम धीरे चलते हैं ना, और लम्हे सीमित हो जाते हैं। वैसे आज के ज़माने में और परिस्थितियों को देखकर साइकिल के महत्व को ज़्यादा समझा जा सकता है। किसी ऊर्जा की खपत नहीं हो रही है इसमें, सिवाय शारीरिक ऊर्जा के। हमारे साथियों ने हमारे पहले गीत के साथ हमने जो प्रश्न पूछे थे उसके जवाब बिल्कुल सही हम तक पहुंचाए थे। पानी ही था जिसका हमने बेसब्री से इंतज़ार किया, और ये शोर फिल्म का गाना है। इस तरह से हमें हमारे श्रोता बताते ही चले जा रहे हैं कि हाँ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी ने इसे संगीतबद्ध किया था और ये शोर फिल्म का गीत है। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया आपके संदेशों के लिए।

क्या बात है, एक श्रोता ने तो हमारी ही कविता की कुछ लाइनें यहाँ पर हमें लिखकर भेजी हैं। हाँ, और इसका जवाब भी आ गया कि पड़ोसन फिल्म का ये गीत और सायरा बानो जी अपनी सहेलियों के साथ में साइकिल की सवारी कर रही है, क्या बात है। जी हाँ, हेमा मालिनी जी वाला गाना ये नहीं था, लेकिन हम आपको बस अब सुनवाने जा रहे हैं वो गीत फिल्म अभिनेत्री से।

यहाँ भी गीत में बारिश है, पानी है, प्यार का इकरार है। पानी, घटा, हवा सब कैसे प्यार के साथ जुड़ जाते हैं, ये हमें हमारे पुराने हिंदी फिल्मी गीतों से पता चलता है।

0: एक स्त्री कैसे खिल उठती है, प्यार ही प्यार लुटाने लगती है जब उसे बहुत प्यार मिलता है। जी हाँ श्रोताओं, आपके जवाब हमें मिलते जा रहे हैं। आप सभी ने बहुत अच्छे से हमारे सवालों को सुना। बहुत ही सिंपल, बहुत ही सामान्य से सवाल आज हम आपसे पूछ रहे हैं। जी, शोर फिल्म का जो गीत आपने सुना था उसका जवाब भी सभी ने दिया है कि प्रेम का रिश्ता है। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। और पानी रे पानी गीत से आगाज़ होना भी बहुत भाया है। आप सभी को धन्यवाद। जी हाँ, मैंने संदेशों को शामिल करने की कोशिश में कुछ अभी गीत कम ही सुनाए थे, लेकिन मैं अब सिर्फ आपको गीत ही सुनवा रही हूँ। आगे इसे और सुरीला जो बनाना है इस सफ़र को। चलिए ले लेते हैं एक संदेश और फिर इस सफर को हम आगे बढ़ाते हैं।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं सुरीला सफर। आइए अब आपको सुनवाते हैं मिलन फिल्म का ये गीत। और इस गीत में जो अभिनेत्री हैं, यानी स्त्री जो प्यार से ओतप्रोत है, जिन्हें प्यार तो है इस संगीत सिखाने वाले गुरु से, अपने मन की बातों को वो उनके साथ सुर में पिरोकर गा रही हैं, वो कौन है?

0: सोर
1: पवन पर शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, सोर सोर सोर।

कई श्रोताओं ने गीत लिख भेजे हैं, उनमें से कुछ गीत बिल्कुल हमारी इबारत से संबंधित शब्दों पर आधारित हैं और वो शामिल हैं हमारी भी लिस्ट में और आपकी भी लिस्ट में।

जी हाँ श्रोताओं, ये गीत भी प्यार से भरा हुआ था। सावन के महीने की बात हो रही थी और हमने आपसे पूछा था कि कौन है ये स्त्री, ये अभिनेत्री जो प्यार में है और संगीत सिखाने वाले गुरु से प्यार करती हैं और मन की बातों को उनकी साथ सुर में पिरो रही हैं। जी हाँ, वो है नूतन। आप सभी के जवाबों के लिए बहुत शुक्रिया। हमारे कई श्रोताओं ने कहा है कि बहुत आग बरस रही है तो हमें सिर्फ पानी का ही इंतज़ार है। बिल्कुल सही, इसलिए तो हमने पानी शब्द को अपनी इबारत में शामिल किया था। कई श्रोताओं ने कई कविताएं लिखकर और कुछ पंक्तियाँ भेजी हैं हमें लिखकर, जो कि लंबी लंबी हैं, तो हमने शुरू में कोशिश तो की उन्हें शामिल करने की, लेकिन उससे वक्त बड़ा चला जाता है। तो हाँ जी, देखिए उसके लिए तो मुझे माफ़ कीजिएगा कि मैं उन्हें पूरी तरीके से यहाँ शामिल नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है आपके सभी संदेश इसमें शामिल हो जाएं।

अगला गीत अब आपको हम सुनवाने जा रहे हैं। देखिए, झुक गया आसमान फिल्म से है। इससे पहले हमने मिलन फिल्म से आपको गीत सुनवाया लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में, आनंद बख्शी के बोल थे और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत से सजा गीत। और अब ये गीत आप सुनने जा रहे हैं, बताइए किस फिल्म का गीत है।

जी हाँ, हमने आपसे पूछा था कि इस फिल्म का जो गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, कौन है अभिनेत्री? जी हाँ, सायरा बानो जी। प्यार के एहसास से लबरेज वो बातों को याद कर रही हैं प्यार की, और अपनी खुशी जता रही हैं। हमारे कई श्रोता हमें संदेश भेजते जा रहे हैं, उनके कुछ गीत इस इबारत के शब्दों के साथ उन्होंने पहचाने हैं और कुछ नहीं पहचाने हैं। कोई बात नहीं, चलिए हम आपको सुनवा रहे हैं हीर रांझा फिल्म का ये गीत। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि झुक गया आसमान फिल्म का गीत अभी आपने सुना उनसे मिली नज़र, लता मंगेशकर ने इसे गाया था, हसरत जयपुरी के बोल थे शंकर जयकिशन के संगीत से सजा। अब जो गीत सुनवा रहे हैं उसे आप बताइए कि इसमें जो अभिनेता राजकुमार ने दुपट्टा बांधा है उसका क्या रंग है।

जी हाँ, हीर ने कहा कि मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आँख चुराएं, हमें क्या हो गया है। जी हाँ, ये प्यार ही तो है, प्यार उन्हें हो गया है रांझे से, और उन्होंने अपनी बात उन्हें बता दी है।

सभी श्रोता हमें कह रहे हैं कि बिल्कुल ये गीत उनके इसमें शामिल हुए हैं, वो हमें गीत लिखकर भेज रहे हैं। और साथ ही देखिए, अब कार्यक्रम में हम ये आखिरी गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं। इससे पहले आपने ये गीत सुना हीर रांझा फिल्म से, अब ये गीत है चुपके चुपके इस फिल्म से। और आप बताइए कि इसमें शर्मिला जी जिन्हें छुपा रही हैं सबसे, वो उनके क्या लगते हैं?

लता मंगेशकर की आवाज में आप ये गीत सुन रहे हैं आनंद बख्शी के बोल एस डी बर्मन का संगीत। हीर रांझा फिल्म का जो गीत आपने सुना था उसे लिखा था कैफी आजमी ने, मदन मोहन का संगीत था।

बस श्रोताओं, ये गीत हम आपको इतना ही सुनवा पाएंगे क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप सभी ने हमारा स्वागत किया बहुत सम्मान के साथ, बहुत प्रेम के साथ। लेते हैं अब आपसे विदा। आपके संदेशों के लिए भी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अब दीजिए आज्ञा पूजा नारायणिया को। नमस्कार।

0: through the tournament. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. India-Indonesia Joint Commission meeting underway in New Delhi. Comprehensive strategic partnership and ways to further deepen bilateral cooperation under review. Home Minister Amit Shah calls for close watch on financial and property transactions along international borders. CBSE to close Class 12 re-evaluation application window tonight. National award-winning Malayalam actor Saleem Kumar passes away in Kochi. IMD forecasts widespread rainfall across the country in the next 2 to 3 days. And in cricket, India declare first innings at 564 for 8 against Afghanistan in one-off test in New Chandigarh. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी। व्यापक रणनीतिक साझेदारी और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर चर्चा। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देशभर में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे एकमात्र टेस्ट मैच में पहली पारी 564 रन पर घोषित की। और अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली में जारी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो बैठक की सह अध्यक्षता कर रहे हैं। डॉ जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संयुक्त आयोग की बैठक 4 साल के अंतराल के बाद हो रही है और ये मानना होगा कि इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने पिछले वर्ष द्विपक्षीय संबंधों की स्थापना के 75 साल पूरा करने का उत्सव मनाया है।
2: मैं आप सभी के साथ व्यापक और सार्थक चर्चा की अपेक्षा करता हूं। हमारी बातचीत द्विपक्षीय सहयोग के सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रहेगी, जिनमें राजनीतिक संबंध, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री व्यापार तथा निवेश, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा, पर्यटन, शिक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं। मुझे विश्वास है कि हम सहमति से तय किए गए एजेंडा के अनुसार आगे बढ़ते हुए इन सभी विषयों पर सकारात्मक और रचनात्मक विचार विमर्श करेंगे।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक में दोनों देशों के बीच मजबूत व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की जाएगी और द्विपक्षीय सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।
3: भारत और इंडोनेशिया के बीच सांस्कृतिक संबंध, औपनिवेशिक शासन का साझा अनुभव और स्वतंत्रता के बाद राजनीतिक संप्रभुता, आर्थिक आत्मनिर्भरता तथा स्वतंत्र विदेश नीति जैसे समान लक्ष्य रहे हैं। समय के साथ दोनों देशों के संबंध राजनीति, अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में और मजबूत हुए हैं। जनवरी 2001 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के स्तर पर संयुक्त आयोग की स्थापना हुई। वर्ष 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जकार्ता यात्रा के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने अपने संबंधों को व्यापक नीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। दोनों देशों ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग पर साझा दृष्टिकोण को भी अपनाया, जिससे विशेष रूप से रक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय संबंधों को अधिक मजबूती मिली है। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेन देन, भवन निर्माण और संपत्तियों की खरीद फरोख्त पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में बीएसएफ के त्रिपुरा सीमा मुख्यालय में पूर्वोत्तर राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया।
4: गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए और इनमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती जिलों में वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करना राज्यों की जिम्मेदारी है। श्री शाह ने जिला अधिकारियों और वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा का सर्वेक्षण करने का

0: निर्देश दिया। बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक शाह, मुख्य सचिव जेके सिन्हा, पुलिस महानिदेशक अनुराग और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों सहित सभी 8 सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों और पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित थे।
1: सरकार ने आज कहा कि अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ते हैं और अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है।
2: पश्चिम एशिया में हाल के संकट के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए सरकार ने कहा है कि भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल रहा जिसने समुद्री यातायात में गंभीर बाधाओं के बावजूद होर्मुज जलडमरू मध्य के रास्ते ऊर्जा आपूर्ति को निर्बाध बनाए रखा। सरकार के अनुसार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं हुई और एलपीजी की वितरण व्यवस्था भी सामान्य रूप से चलती रही। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी को 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर पर विशेष राहत मिल रही है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी पहले 4 रिफिल पर प्रतिवर्ष 300 रुपए की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी सहायता प्राप्त करते हैं। इसके बाद उन्हें एक सिलेंडर के लिए प्रभावी रूप से 642 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, जबकि दिल्ली में सामान्य उपभोक्ताओं के लिए इसी सिलेंडर की खुदरा कीमत 942 रुपए है। मंत्रालय के अनुसार आपूर्ति में व्यवधान की अवधि के दौरान घरेलू एलपीजी उत्पादन में 60% से अधिक की वृद्धि की गई। प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: वहीं आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 14 किलो 200 ग्राम के सिलेंडर पर 29 रुपए की वृद्धि की गई। दिल्ली में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 942 रुपए हो जाएगी। तेलुगुदेशम पार्टी टीडीपी ने 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों के लिए अपने 3 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने उम्मीदवारों की सूची जारी की। पार्टी ने उद्योगपति सना सतीश, शिक्षाविद भाष्यम रामकृष्ण और टीडीपी सोशल मीडिया विंग के प्रमुख चिंतकयाला विजय को अपना उम्मीदवार बनाया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन जमा कर दें। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा प्रश्न पत्र के कथित लीक या बिक्री के दावों का खंडन किया है। एनटीए ने कहा है कि ये छात्रों और उनके परिवारों की चिंताओं का फायदा उठाने वाले संगठित नकल गिरोहों का काम है। एजेंसी ने सक्रिय रूप से आपत्तिजनक चैनलों, खातों और सामग्री की पहचान कर संबंधित प्लेटफॉर्म के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की चेतावनी दी है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने कल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एयू फाइनेंस धोखाधड़ी मामले की जांच के सिलसिले में चंडीगढ़, पंचकुला और दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में 6 परिसरों पर छापे मारे। ये मामला हरियाणा सरकार के 8 विभागों और चंडीगढ़ नगर निगम तथा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी क्रेस्ट के 2 विभागों में 661 करोड़ रुपए के गबन और सरकारी धन की हेराफेरी से संबंधित है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम में गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल्स को शामिल किया गया है। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमरीका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष

0: एक नए व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनन में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है।
1: संघर्ष के 100वें दिन भी होर्मुज जलडमरू मध्य में तनाव बना हुआ है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के अनुसार सेना ने ईरान के 2 हमलावर ड्रोन मार गिराए हैं। शुक्रवार को अमरीका ने ईरान के 4 ड्रोन नष्ट कर दिए थे और ईरान के गोरुक तथा केश्म द्वीप स्थित रडार और निगरानी ठिकानों पर हमले किए थे, जिसके जवाब में ईरान ने शनिवार को कुवैत और बहरीन में अमरीकी ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले किए। अमरीकी अधिकारियों ने कहा कि अधिकांश मिसाइलों को लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। इस संकट का असर पश्चिम एशिया के अन्य हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। दक्षिणी लेबनान के नबातियेह क्षेत्र के पास इसराइल के एक सैन्य अभियान के दौरान लेबनानी सेना के एक वाहन को निशाना बनाया गया, जिसमें सेना के कुछ जवान घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में संघर्ष रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास लगातार जारी हैं, लेकिन अभी भी कई बड़ी चुनौतियां बनी हुई हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से अपनी पहचान बनाई और 1996 में सिद्दीक शमीर के निर्देशन में फिल्म इष्टमानु नूरुवट्टम से सिने जगत में प्रवेश किया। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता सलीम कुमार के निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि दुख की इस घड़ी में उनकी संवेदनाएं अभिनेता के परिवार और उनके अनगिनत प्रशंसकों के साथ हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन। यह दिवस खाद्य सुरक्षा को एक अधिकार और सामूहिक जिम्मेदारी के रूप में एक सशक्त अवसर प्रदान करता है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। इस अवसर पर सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ तथा आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान का आग्रह किया। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मॉनसून आगे बढ़ रहा है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों में देश भर में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की है। उत्तर और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में लू की स्थिति भी बनी हुई है। विभाग के अनुसार मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, तमिलनाडु के शेष हिस्सों, दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उत्तर बंगाल की खाड़ी और कुछ अन्य इलाकों में अगले 2-3 दिनों के दौरान मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारत ने मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश को 3-1 से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार खिताब अपने नाम किया। ये मैच कल गोवा के मडगांव में खेला गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय महिला फुटबॉल टीम को सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 जीतने पर बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि इस जीत से आने वाले समय में युवाओं को फुटबॉल खेलने की प्रेरणा मिलेगी। क्रिकेट में न्यू चंडीगढ़ में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच के आज दूसरे दिन 8 विकेट के नुकसान पर 564 रन बनाकर अपनी पारी घोषित कर दी। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 6 ओवर में 1 विकेट खोकर 28 रन बना लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक अधिवक्ता पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक नई दिल्ली

0: में जारी। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय और संपत्ति संबंधी लेन देन पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE कक्षा 12 के पुनर्मूल्यांकन आवेदन पोर्टल को आज रात बंद कर देगा। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कोच्चि में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में देश भर में तेज वर्षा का पूर्वानुमान व्यक्त किया। और क्रिकेट में भारत ने अफगानिस्तान के साथ खेले जा रहे अपने एकमात्र टेस्ट मैच में अपनी पहली पारी 564 रन पर घोषित कर दी है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दिन के 2:30 हुए हैं। अब से लेकर दिन 3 बजे तक आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।
2: आशा भोसले की आवाज में वक्त फिल्म से सहे लुधियानवी के बोल हैं, धुन सजाई है रवि ने।

सदाबहार नगमे इस कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के युगल स्वरों में। साहिल लुधियानवी के ही बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम इज्जत।

0: अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो बहुत सारी बीमारियों का आगमन आपके शरीर में होता है।
1: परेशान हूँ मैं।
0: फैटी लिवर, इन्फेक्शन, एसिडिटी जैसी पेट की समस्याएं इन दिनों बहुत कॉमन है।
2: वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ एनी GI प्रॉब्लम इज एजुकेशन, न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड व्हेन डू यू गेट सेल्फ टेस्टेड एंड सी अ डॉक्टर। ये तीन चीज अगर हम कर पाए ना तो काफी हद तक हमारी बीमारियां कम हो जाएंगी।
0: पेट की बहुत सारी बीमारियों पर प्रकाश डाला है हेपेटोलॉजिस्ट और गैस्ट्रोएंट्रियोलॉजिस्ट डॉक्टर गौरव मेहता ने।
2: अगर आप टाइम पे नहीं सो, खा के तुरंत सो गए तो एसिडिटी की संभावना ही काफी ज्यादा होती है। और अगर हम टाइम पे ना सोए, 7 से 8 घंटे नींद पूरी ना करें तो हमको शुगर होने के चांसेस भी होते हैं ज्यादा, फैटी लिवर के चांसेस भी ज्यादा होते हैं।
0: तो सुनिए डॉक्टर गौरव मेहता की बातें 8 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे और अब आपको सुनवाते हैं आंखें फिल्म का ये गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने, साहिल लुधियानवी ने लिखा है और संगीतबद्ध किया है रवि ने।

अब आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में अगला गीत साहिर लुधियानवी के बोल हैं संगीतकार रवि, फिल्म का नाम काजल।

0: सबसे हसी इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक हो तुमको।
1: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली, बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
2: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
2: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
1: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
2: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे, और यह अगला गीत दिल ने फिर याद किया, इस फिल्म से मोहम्मद रफी, सुमन कल्याणपुर और मुकेश की आवाजों में। जीएल रावल ने इस गीत को लिखा, सोनिक ओमिका संगीत।

त्रिशूल फिल्म का गीत सुन रहे थे आप। साहिर ने इसे लिखा था, संगीत बत किया था खयाम ने। और आइए अब आपको सुनवा रहे हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है राज। शमीम जयपुरी के बोल हैं, कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

ये तन्हाई कालम और इस पर आपका गम, ये तन्हाई

0: और इसी गीत के साथ सदाबहार नगमे।
1: अभी तक आप हमारे केंद्र से सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 101.8 MHz पर। दिन के 3 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पाराशर से प्रादेशिक समाचार सुने। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि ढली नारकंडा रामपुर सड़क को फोर लेन में विकसित किया जा रहा है और इसका सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने आज शिमला जिले के हाटू माता मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पत्रकारों से बातचीत में बताया कि फोर लेन परियोजना में सुरंग के निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि भूस्खलन से होने वाली क्षति को कम किया जा सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार हाटू माता रोपवे परियोजना के निर्माण के दिशा में कार्य कर रही है और नाबार्ड की सहायता से ये परियोजना चलाई जाएगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हाटू माता सड़क के सुधार कार्यों के लिए धनराशि मंजूर की गई है और इस कार्य में पेड़ों को कटान से बचाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने निर्विरोध चुनी गई नगर पंचायत नारकंडा को 50 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। आज विश्व खाद्य दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संदेश को भी दोहराया जिसमें उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य और एक मजबूत राष्ट्र के लिए खाद्य तेल का इस्तेमाल 10% कम करने व संतुलित आहार अपनाने की बात कही थी। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक हर जगह सुरक्षित भोजन। केंद्रीय युवा कार्यक्रम व खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज सुबह नई दिल्ली में फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल पहल के 77वें संस्करण में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिल चलाने से पर्यावरण स्वच्छ रहता है और यातायात जाम की समस्या से भी छुटकारा मिलता है। साइकिल चलाने से स्वास्थ्य को होने वाले फायदों का उल्लेख करते हुए मांडविया ने नागरिकों से इस पहल में शामिल होने और फिट इंडिया के सपने को साकार करने का आग्रह किया।
1: साइकिलिंग करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। साइकिलिंग से फ्यूल का बचत होता है। वर्तमान में ट्रैफिक की बहुत बड़ी समस्या है, उसका भी समाधान है, तो क्यों ना हम साइकिलिंग करें। देश के नागरिकों में अपने हेल्थ के प्रति अवेयरनेस बढ़ी है। मोदी जी ने आधा घंटा रोज फिटनेस देने के लिए कहा है, तो ये फिटनेस का डोज आधा घंटा के लिए हम हमेशा साइकिलिंग करेंगे तो मैं मानता हूँ कि हमारी कई समस्या का समाधान होगा।
0: 12वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे अंतिम तिथि से पहले अपने आवेदन भरकर जमा कर दें। अटल टनल रोहतांग क्षेत्र में पिछले कुछ समय से पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है और यातायात दबाव को देखते हुए लाहौल स्पीति जिला प्रशासन में एक कार्य योजना तैयार की है। उपायुक्त किरण भड़ाना ने बताया कि कुल्लू जिला प्रशासन व सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों के साथ इस बारे में बात की गई है। उन्होंने कहा कि सीमा सड़क संगठन को संभावित आपदाओं व चुनौतियों से निपटने के लिए आपातकालीन कार्य योजना तैयार रखने को कहा गया है।
2: ओवर द इयर्स ये देखा गया है कि यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो काफी इंक्रीज हुआ है। इससे डिजास्टर लाइक सिचुएशंस भी हो सकती हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी एंड लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज भी हो सकते हैं। हमें यहाँ पे थोड़े प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। उसके अलावा जो अटल टनल है इसमें मेंटेनेंस कब कब होती है, इसका ऑक्सीजन लेवल, इन केस ऑफ एनी डिजास्टर तो क्या SOPs रहेंगी इसमें। BRO से बोला भी गया है कि इन केस ऑफ डिजास्टर तो सिनेरियो बिल्डिंग करी जाए, इसमें डिफरेंट SOPs बनाई जाए ताकि हम इसमें मिलके काम कर पाए और ये प्लान कर पाए कि इस जगह को ये जितनी सुंदर है और जितना टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो बना रहे और कोई आउटवर्ड इंसिडेंट ना हो।
0: सिरमौर जिले के दुर्गम क्षेत्र हरिपुर धार का राजकीय प्राथमिक स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में अन्य सरकारी स्कूलों के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। इस स्कूल में 200 से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और स्कूल के 3 विद्यार्थियों का चयन नवोदय के लिए हुआ है। स्कूल के अध्यापक कमल शर्मा ने बताया कि स्कूल के 8 विद्यार्थियों को स्वर्ण जयंती माध्यमिक मेधावी छात्रवृत्ति योजना का लाभ भी मिल रहा है और इसके तहत प्रतिवर्ष 1,80,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जा रही है। खास बात यह है कि हरिपुर धार स्कूल में हर वर्ष बच्चों के दाखिले में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।
3: ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारी इस पाठशाला से हर वर्ष नवोदय विद्यालय के लिए बच्चों का चयन होता रहा है। इस वर्ष भी हमारी इस पाठशाला से 3 बच्चों का चयन नवोदय के लिए हुआ है। नवोदय के अतिरिक्त यहाँ से जो बच्चों का सिलेक्शन है वो सैनिक स्कूल के लिए भी हुआ था। 8 बच्चे ऐसे है जो स्वर्ण जयंती मिडल मेरिट स्कॉलरशिप की जो योजना है उसमें 1,80,000 बच्चों को दिया जाता है, उससे लाभान्वित हो रहे हैं।
0: इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:00 PM। नमस्कार।
4: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए गए। आइए अब सुनते हैं सामायिक चर्चा। विषय है जनसमर्थ पोर्टल के 4 वर्ष और वाचक स्वर है अनुराग प्राशर का।
0: जनसमर्थ पोर्टल ने डिजिटल वित्तीय समावेशन और सरल क्रेडिट वितरण के 4 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इसे 6 जून 2022 को लॉन्च किया गया था। एकल विंडो प्लेटफॉर्म के तौर पर माने जाने वाला ये पोर्टल प्रौद्योगिकी आधारित और उपयोगकर्ता अनुकूल प्रक्रियाओं के माध्यम से संस्थागत क्रेडिट तक पहुंच को सरल बनाता है। ये पोर्टल कृषि, कारोबार, आवास, नवीकरणीय ऊर्जा और आजीविका सहित कई क्षेत्रों को कवर करता है। ये देश भर में विविध लाभार्थी समूहों का सहयोग करता है। कई भाषाओं में उपलब्ध जनसमर्थ एक एकीकृत डिजिटल इकोसिस्टम के तौर पर उभरा है। ये मंच उद्यमियों, किसानों और आजीविका चाहने वालों के लिए सुगमता, पारदर्शिता और कुशल क्रेडिट सुविधा को प्रोत्साहन देता है। पूरे भारत में उद्यमशीलता की महत्वाकांक्षाएं आमतौर पर एक साधारण आवश्यकता से शुरू होती है, सही समय पर सही मदद। महत्वाकांक्षी उद्यमियों और महिला नेतृत्व वाले उद्यमों से लेकर कृषि व्यापार क्षेत्र में प्रवेश करने वाले युवा पेशेवरों तक कई लोगों को अपनी महत्वाकांक्षाओं को साकार करने के लिए सुलभ और समय पर वित्तीय आवश्यकता होती है। हालांकि सरकारी योजनाओं के माध्यम से कई अवसर मौजूद हैं, लेकिन कई पोर्टलों और प्रक्रियाओं को समझना आम तौर पर चुनौतीपूर्ण बना रहता है। इस आवश्यकता को समझते हुए सरकार ने क्रेडिट संबंधी योजनाओं के लिए एक डिजिटल मंच के तौर पर जनसमर्थ पोर्टल की शुरुआत की। यह अपनी तरह का पहला प्लेटफॉर्म है जो लेंडर्स को सीधे लाभार्थियों से जोड़ता है। इसे सरकारी योजनाओं की पहुंच बढ़ाने और क्रेडिट वितरण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के दोहरे उद्देश्यों के साथ तैयार किया गया है। जनसमर्थ ने अपनी यात्रा के 4 वर्ष पूरे कर लिए हैं और पोर्टल निर्बाध क्रेडिट वितरण के माध्यम से वित्तीय समावेशन को मजबूत करना जारी रखे हुए है। जनसमर्थ एकीकृत और यूजर के अनुकूल डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से क्रेडिट आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाता है। ये देश के ग्रामीण और वंचित वर्ग की आबादी की सुविधा के लिए 8 अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है। ये पोर्टल क्रेडिट संबंधी 16 केंद्रीय सरकारी योजनाओं के लिए आवेदन जमा करने के लिए एक एकीकृत डिजिटल गेटवे प्रदान करता है। कृषि और नवीकरण ऊर्जा से लेकर उद्यमिता और आवास तक ये पोर्टल कई क्षेत्रों और समुदायों में समावेशी क्रेडिट पहुंच को सक्षम बनाता है। जनसमर्थ पोर्टल का प्रभाव देश भर में इसकी ओर से दी गई व्यापक क्रेडिट सुविधा और इसके द्वारा संभव बनाए गए उद्यमशीलता के सफर दोनों में देखा जा सकता है। लॉन्च होने के बाद यह पोर्टल देश भर में संस्थागत क्रेडिट तक पहुंच बढ़ाने के लिए एक प्रमुख डिजिटल मंच के रूप में उभरा है। 1 जून 2026 तक पोर्टल के माध्यम से लगभग 54.10 लाख आवेदनों पर काम किया जा चुका है, जिनकी कुल राशि 3,00,951 करोड़ है। इसके साथ ही बैंकों ने 49,55,000 लाभार्थियों को लगभग 2,76,494 करोड़ की राशि के लिए डिजिटल मंजूरी दी है। ये कुशल डिजिटल क्रेडिट तंत्रों पर बढ़ती निर्भरता को दर्शाता है। एकल विंडो डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में तैयार किया गया जनसमर्थ पोर्टल विविध क्रेडिट आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है।
5: एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, दिन के 3:10 हुए हैं। अब से लेकर शाम 5 बजे तक आप हमारे केंद्र से सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
6: कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लीजिए, हम अगला खत शामिल कर रहे हैं। नेहरू चौक पेठन से ये खत हमें आया है। सुरेश जाधव, अनीता जाधव, प्रसाद जाधव, बेबी सोनल जाधव, इन्होंने इस गीत की फरमाइश की है जो कि है फिल्म दोस्ती से, राही मनवा दुख की चिंता। इस गीत को गा रहे हैं मोहम्मद रफ़ी, उन्हीं की आवाज़ में ये गीत आप सुनेंगे। मजरू सुल्तानपुरी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
7: दुख हो या सुख जब सदा

कभी कभी इस फिल्म का गीत सुनना चाहा है। पंचकुला सेक्टर 9 से इन्होंने हमें खत लिख भेजा है। आशु चुग, अश्विनी चुग और गोविंद चुग ने, साथ ही गांधी चौक रोपड़ पंजाब से भी, हरदेव मीका, बलविंदर मीका, बलविंदर

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कार्यक्रम मनचाहे गीत में अगला खत हमने शामिल किया है कस्बा गुन्नौर यूपी से फारूक अली खान और खानपुरी खान फैमिली का। इन्होंने हमें गीत की गुजारिश की है हाथ की सफाई फिल्म से। और इन्हीं के साथ ऊपरकोट बुलंदशहर से भी इसी गीत की फरमाइश मोहम्मद सईद अब्बासी और पूरा अब्बासी परिवार कर रहा है। साथ ही पुराना तालाब डुमरो से वली उल्लाह अंसारी, आसमा नाज अंसारी, वसीम अकरम, अजीम वकार और उनकी बिटिया प्यारी सोनम। इंदिरा विहार दिल्ली से वसीम अकरम, अजीम वकार, डब्ल्यू अंसारी और बेबी अंसारी। गुलशन बावरा की बोर कल्याण जी आनंद जी का संगीत, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की।

लीजिए, अगला पत्र हम शामिल कर रहे हैं। राजावत कॉम्प्लेक्स, नई सड़क, एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत, राज मधु राजावत, राशि रक्षित, चितरंजन कमल, उमेश सरोज, आरती रेखा, रितिका रिचा, स्वीटी सागर, रिया रीत, ऋषभ राजावत और समस्त राजावत परिवार का। और साथ ही इन्होंने जो गीत की फरमाइश की है वो है फिल्म पतंग से, और इसी गीत की फरमाइश हमें भेजी है राजा रामनगर देवास से राजेश अग्रवाल, शांति महाजन, मुकेश महाजन ने। साथ ही घंटाघर चौक खंडवा से भी संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और समस्त सन्मति पंचोलिया परिवार और सन्मति पंचोलिया ने। और उसके अलावा शीशगढ़ बरेली से इलियास इदरिसी, नईम इदरिसी और नदीम इदरिसी, इन्होंने हमसे फरमाइश की है पतंग फिल्म के इस गीत की। लता मंगेशकर का गाया गीत, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त की बनाई धुन।

लीजिए, अब मनचाहे गीत कार्यक्रम का ये आखिरी खत हम शामिल कर रहे हैं। कुंडलेश्वर वार्ड खंडवासी योगेश गुजराती और रेखा गुजराती का, इन्होंने फिल्म चिराग के इस गीत की फरमाइश की है। मोहम्मद रफ़ी ने इस गीत को गाया है, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, मदन मोहन का संगीत।

मोहम्मद रफी के गाए चिराग फिल्म के इस गीत के साथ ही मनचाहे गीत कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हो रहा है। आप इसी तरह मनचाहे गीत कार्यक्रम में अपनी फरमाइशों के, अपने मनचाहे गीतों के पत्र हमें लिखते रहिए, वो ज़रूर शामिल होंगे। और अब दीजिए आज्ञा पूजा नरानिया को। नमस्कार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। श्रोताओं, नाट्य तरंग में आइए आज सुनते हैं नाटक गुलाब की पंखुड़ियां, इसका दूसरा और अंतिम भाग। लेखक सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब।
1: ठहरो, कौन है?
2: मैं हूं नजीबाबाद का नवाब जाब्ता खान। वालिये का नाम राजा साहब से अभी मिला है, इत्तला करा दो, कहो जाब्ता खान आया है।
1: आप यहीं ठहरिए, मैं अभी इत्तला करके आता हूं।
3: आहा, ओ बल्ले बल्ले, आइए नवाब साहब आइए। क्या ये खुशकिस्मती है कि आपके दीदार हुए।
2: जनाबे अली, खुशकिस्मती तो मेरी है जो अपने अजीजों से एक अरसे बाद मुलाकात हो रही है।
3: हाँ हाँ जी, काफी अरसा हो गया, आपसे कोई 5 साल पहले मिले थे। चलो, कल किसी बात लगती है।
2: जी हाँ जी, कल किसी ही बात लगती है।
3: कहिए, कैसे आड़ा हुआ? कुछ परेशान से नजर आते हैं।
2: किबला?
3: अरे भाई, किबला शिबला छोड़ो, सीधे से चचा कहो चचा। मैं आपके वालिद का दोस्त था और वो मुझे अपना छोटा भाई मानते थे।
2: जी चचा जान, इस वक्त मैं बहुत मुसीबत में हूँ।
3: मुसीबत? अब मुसीबत आए तुम्हारे दुश्मनों पर? हाँ तो बताओ क्या मुसीबत है।
2: अब आपको क्या बताऊं चचा जान, बादशाह से मुकाबला किया था मगर हमारी फौज की शिकस्त हो गई। नजीबाबाद के बहल लुट गए, बेगमें गिरफ्तार कर ली गई, सारे इलाके में लूट खसोट मची है। मेरे लड़के गुलाम कादिर की जा बख्शी तो हो गई चचा जान, लेकिन उस मासूम को भी वो दिल्ली ले गए हैं।
3: तेरे की हार हो गई, जंग का तो हमें पता लग गया था मगर आपकी हार के बारे में अभी मालूम हुआ। हाँ तो के करना है?
2: जी, आपके पास पनाह और फौजी इमदाद की उम्मीद से आया हूँ।
3: बरखुरदार, बादशाह के खिलाफ पनाह देना बगावत तो है, लेकिन सिख कभी पनाह के लिए आए हुए को ना उम्मीद नहीं करता। आप यहीं रहे।
2: बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन चचा जान वो फौजी इमदाद
3: है? हाँ जरूर जरूर। और लछवाले, जरा सरदार मन बहार सिंह को इत्तला करो हमसे मिले।
4: जी बिल्कुल।
5: सत श्री अकाल जी।
3: सत श्री अकाल मन बहार, सत श्री अकाल।
5: हजूर ने मैंने याद किता ही है।
3: जी हाँ सरदार जी, आपको एक खास काम सौंपना है।
5: सौंपो जी सौंपो।
3: ये है नजीबाबाद के नवाब जाब्ता खान, इन्हें आपकी मदद की जरूरत होगी।
5: साड़ी मदद?
3: बस यही कि आप मैं अपने 150-200 सवारों के इनके साथ रहें और जी जान से इनकी इमदाद और हिफाजत करें।
5: जो हुकुम हुजूर, जो हुकुम, मैं उन्हीं जान दी तैयारी करता हूँ।
3: और देखो बरखुदार, मैं आपकी इमदाद के लिए एक निहायत बहादुर, नेक और वफादार सरदार को लगा रहा हूँ। इनकी वफादारी की अनगिनत मिसालें हैं हमारे पास।
2: जी चचा जान, मैं भी इन्हें अपने भाई के मानित ही रखूंगा।
3: जी जी, यही मैं चाहता हूँ। ये सरदार ऐसे हैं कि ता जिंदगी आपकी पुश्त दर पुश्त वफादारी करेंगे, जान पर खेल कर भी आप लोगों की हिफाजत करेंगे।
2: तो चचा जान, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूल सकूंगा।
3: और जाओ, गम ना करो, वाहे गुरु खैर करेंगे।
6: मोहतरमा दादी जान, आपने याद फरमाया?
7: हाँ, ये तुम्हारा चहेता गुलाम कादिर तो बहुत हराम ज्यादा निकला।
6: क्यों, क्या हुआ?
7: अभी बताती हूँ, लेकिन लेकिन पहले वादा करो कि इसे माहौल सजा मिलेगी।
6: दादी जान, पहले से वादा क्यों करा रही हो? क्या आपको हमारे इंसाफ या हम पर भरोसा नहीं?
7: हाँ, इसलिए कि शहंशाह हिंदुस्तान बहुत रहम दिल है। उस दिन हमने लॉन्ड्री को पंखा नहीं खींचते रहने पर सजाए ताजियाना दी थी, लेकिन लेकिन जनाब ने उसे माफ।
6: उफ दादी जान,
7: हम बराबर देख रहे हैं कि हरम में भी बारह दखल अंदाजी और हमारी तौहीन होती रहती है।
6: मोहतरमा दादी जान, हमारा ये रदा तो कभी नहीं रहा। लीजिए, मैं वादा करता हूँ। हाँ फरमाइए, क्या बात है?
7: गुलाम कादिर की शहजादियों से ये छेड़छाड़, तौबा तौबा।
6: उसकी ये जुर्रत, उसका हरम में आना बंद क्यों नहीं कर दिया? अब तो वो बड़ा भी, हमारा मतलब है जवान हो गया है।
7: वो तो हमने आज ख्वाजा सराओं को हुक्म दिया है कि वे अब हमारे हरम में न
6: दादी जान, आपको क्यों कर इल्म हुआ?
7: हमसे शहजादी ने खुद शिकायत की है।
6: उसने किस शहजादी से गुस्ताखी की, जरा बुलाइए उसे।
7: उफ़, तो अब शहजादियां भी शहंशाह के रूबरू बयान देंगी, एक मामूली कनीज की तरह।
6: अच्छा, कुछ तफसील तो मिलनी चाहिए।
7: तफसील तो यही है कि गुलाम कादिर शहजादी ज़ैनब की तरफ गुस्ताख निगाहों से ताक रहा था और बेहुदा इशारे भी कर रहा था।
6: उस कमीने की ये मजाल, इस्माइल, उस कमीने बदज़ात कादिर को हमारे हुजूर में पेश करो।
4: जो हुक्म आली जा। आलम बना, गुलाम कादिर हाजिर है।
6: बदसात, तेरी जान बचाकर दिल्ली से लाए और इतने नाजो अंदाज से रखा, तेरी ये मजाल की तू शाही हरम में।
8: हुजूर, हुजूर, रहम।
6: अब भी हमसे रहम की उम्मीद? इस हराम खोर की कोड़ों से खाल उधेड़ दी जाए।

उफ, कितने साल हो गए मुझे इस शिकस्ता हाली में। इस दरमियान क्या क्या हद से गुजरे, कोड़े लगवाए गए, जानवरों की तरह सुलूक किया गया। मेरे साथ इस वक्त हरम की एक कनीज भी कितनी खौफनाक लगती है, और बेगमें खूंखार। वो तो अच्छा हुआ कि तिकोजी होलकर ने अब्बा हुजूर का कसूर माफ करवाकर उन्हें मीर बख्शी का ओहदा और अमीरुल उमरा का खिताब अता करने के लिए शहनशाह को मजबूर कर दिया। तब कहीं जाकर मुझे निजात मिली इनके जुल्मों से। लेकिन अब्बा हुजूर भी अल्लाह को प्यारे हुए और मुझ बदनसीब को छोड़ गए। बस अब तो चचा मनबहारी सिंह का ही सहारा है। अब्बा हुजूर ने मेरा हाथ उन्हीं को तो थमाया था, अब किले में रहने से मुझे क्या फायदा। क्यों ना आजाद होकर कोई इलाका फतह करूं, दुआबे के शहरों में फौज कशी करके अपनी कुव्वत बढ़ाऊं। कोल, जलेसर, सादाबाद, यहीं से शुरुआत करनी चाहिए। चचा से मशवरा करके बहुत जल्द अपने मंसूबों को अमली जामा पहनाऊंगा।

0: नामवर, किसने भेजा है ये खत?
1: हुजूर, ये खत पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा।
0: तुम बाहर जाओ।
1: जी अच्छा हुजूर।
0: तो ये है वो खत। अजीज
2: नवाब गुलाम कादिर, बात तस्लीमात से तहरीर है कि किले और हरम की हालत फिलहाल बहुत नाजुक चल रही है। किले में हमारी बार बार तौहीन होती है, बादशाह अक्सर बदसलूकी करने लगे हैं। अगर तुम अपनी फौजी ताकत से किले पर कब्जा कर लो और शाह आलम सानी को तख्त से हटाकर बेदार बख्त को तख्त नशी कर दो तो हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। साथ ही तुम्हें 12 लाख रुपहली सिक्के बतौर इनाम अता करेंगे। इसके अलावा हम लोगों को अपना मददगार ही समझो। किले तक पहुंचने के बाद जो कुछ इमदाद हम और हमारे वफादार खादिम कर सकेंगे जरूर करेंगे।
0: तो ये खत बादशाह की दादी जान और बेगम महल साहिबा की तरफ से है। ये वही जमानी बेगम है जिन्होंने मेरे कोड़े लगवाए, जलील किया और आज मुझसे इमदाद की तालिब है। कहीं कोई दगा तो नहीं? नहीं, कोई दगा नहीं। इतने दिन किले में रहा, बेगमों की मोहरें अच्छी तरह पहचानता हूं, क्यों ना इससे फायदा उठाया जाए। हर तरफ हमारी फतह हो रही है, हमारा सितारा बुलंदी पर है। अब दिल्ली की तरफ कूच करना हमारे हक में होगा।

0: मियाँ शमशेर खां, किली की हालत बिगड़ती जा रही है। सुना है हरम में भी काफी साजिशें चल रही है।
1: हाँ लाला जी, क्या बताऊं, मुझे तो रात दिन फिक्र लगा रहता है। हालांकि हर मजहब के लोग शहंशाह के फरमा बरदार हैं, लेकिन पता नहीं चलता कि
0: कल कौन गद्दारी कर बैठे। कुछ भी हो, हमें तो इस नेक और रहमदिल शहंशाह की जान की बाजी लगाकर भी नमक हलाली करनी है। अभी अभी पता चला है कि गुलाम कादिर ने सिंधिया के जनरल लेसनो को भी हरा दिया है।
1: उफ, हुजूर, फिर तो उसका हौसला बहुत बढ़ गया होगा।
0: क्यों नहीं, लगता है अब वह दिल्ली पर भी चढ़ाई जरूर करेगा।
1: उसे सिख सरदार मनबहार सिंह से बड़ी भारी मदद मिली है।
0: हाँ, वैसे वो सरदार बड़ा नेक और संजीदा है। जाब्ता खान ने मरते वक्त कादिर का हाथ उसे थमा दिया था। सुना है उसकी ठंडी फौलाद जैसी आंखों के सामने गुलाम कादिर भी बदकारी करने से डरता है।
1: जी हाँ, सुना तो यही है। शायद ऐसा शख्स आड़े वक्त में कुछ मदद कर सके।
0: हाँ, लेकिन हमें किले में कारगुजारियों पर कड़ी निगाह रखनी चाहिए।
1: आप ठीक कहते हैं लाला जी।

तो नाजिर मंजूर अली ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। एक तो नहीं, पूरे 250 छकड़े बारूद का इंतजाम कर दिया। बहुत खूब, वाह नवाब गुलाम कादिर, अब तुम्हारी फतेह याबी में कोई शक नहीं। तुम्हारी क्या, या तो ये पैसे की फतह है या चचा सरदार की फतह है। अब किसी को भी मैं बच्चों के घरौंदों की तरह तोड़ मरोड़ सकता हूं। पैसा फेंको, काम बनाओ। पैसा पैसा पैसा, हर किसी का माई बाप पैसा ही तो है। हमने अकबराबाद, कोल, सादाबाद, जलेसर, कहां कहां से पैसा लूटा। और बुजुर्ग बेगमों ने भी तो हमें पैसे की दावत दी है। अब सारी दिल्ली नवाब गुलाम कादिर के पैरों तले होगी। आहा!

0: लाला जी, गुलाम कादिर किले में दाखिल हो गया है। ये मैंने तहकीक कर लिया है कि शहनशाह से दस्तखत कराने के लिए एक दस्तावेज तैयार हो रही है। शायद कादिर को मीर बख्शी का ओहदा और पुश्तैनी खिताब दिया जाए। और उधर जा बना हरम में जा चुके हैं।
1: उफ मियां शमशेर खां, फिर तो मुझे वहीं जाकर जहां पना को आगाह करना होगा।
0: हुजूर, बादशाह सलामत आपको इतनी इज्जत देते हैं कि आप किसी भी वक्त उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इस गुलाम कादिर से उन्हें खतरे के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता।
1: देखो, मैं जाता हूँ। अगर वक्त मिला तो दस्तखत कराने के बहाने कादिर से ही वह दस्तावेज हत्या लूंगा, तब शहंशाह को आगाह करा पाऊंगा।
2: कहिए लाला जी, कैसे आना हुआ?
1: जहां बना, गुस्ताख ही माफ हो। वैसे बंदा इस वक्त हुजूर को कतई जहमत नहीं देता, मगर जरूरत कुछ ऐसी।
2: बोलो लाला जी, क्या बात है?
1: हुजूर, गुलाम कादिर किले में दाखिल।
2: हाँ हाँ, वो हमसे मिल चुका है।
1: जहां पना, वह एक दस्तावेज पर दस्तखत कराना चाहता है। मैंने दस्तखत कराने से पहले उसे पढ़ने की गुस्ताखी कर ली है।
2: पढ़ लिया तो अच्छा ही किया, लेकिन तुम इतना परेशान क्यों नजर आ रहे हो?
1: अलीजा, मुझे तो इसमें दगा का अंदेशा हो रहा है।
2: दगा? कैसी दगा? देखें क्या है दस्तावेज में। लेकिन इसमें दगा क्या हो सकती है? ये सब बातें तो वो पहले ही तय कर चुका है। लाला जी, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। गुज़िश्ता वक्त में वो लड़ाई पर आमादा था, मगर अब उसकी अक्ल ठिकाने आ गई है। वो हमारे हुजूर में माफी के लिए पेश हो चुका है और हमने उसे माफ भी कर दिया है।
1: आलम पनाह, वादे का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर हो तो अभी भी बहुत कुछ सकता है। अभी हमारे लाल पलटन किले में मौजूद है, जहां पनाह के हुक्म के दे रहे, अभी इसके टुकड़े टुकड़े करवा दूंगा।
2: लाला शीतलदास, ये हमारी जानिब से दगा होगी। हिंदुस्तान की तरफ से गुलाम कादिर जैसे नाचीज के साथ दगा, तवारीख के सफ़े लहू से रंगीन हो जाएंगे और हजार हजार जुबानों से हमें आने वाली पीढ़ियां लानत देगी। लीजिए, ये दस्तखत शुदा दस्तावेज कादिर को दे दें।
1: जी बहुत अच्छा।
3: जनाब ने कैसे याद किया?
2: कादिर, हमें तुमसे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतने गुस्ताख निकलोगे। शाही दरबार के सलीके तो जैसे तुमने बालाए ताक रख दिए।
3: जनाब, अभी हुजूर का गुस्ताखी से साबका पड़ा ही कहा है, गुस्ताखी तो अब मुलाहजा कीजिए।
2: क्या कहा?
3: हुजूर, ये गुलाम कहने में नहीं करने में एतकाद रखता है। गुलामों, देख क्या रहे हो, इस बादशाह को पकड़कर बंद कर दो।
2: नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ेगा, नहीं।
3: लेकिन जरा ठहरो, इसे भी बेदार बख्त की तख्त नशीनी का चश्मदीद गवाह बन जाने दो और इसकी आंखें निकलवा दो। आहा!

0: शादियों से भला ये कैसे हो सकता है कि ये आज लाल किले के इस भरे दरबार में नाचे।
1: अब दिल्ली के तख्त पर मेरा कब्जा है, बादशाह मैं हूँ। तुम सब मुगल शहजादियों और बेगमात को आज मेरे सामने भरे दरबार

हुजूर, सिंधिया की फौजें फरीदाबाद तक आन पहुंची।

0: फरीदाबाद तक?
1: जी सरकार, इधर फरीदाबाद तक और उधर पलटने गुड़गांव से आगे निकल गई है।
0: हमें इसकी खबर पहले क्यों नहीं दी गई?
1: हुजूर, अभी जासूस ने कहा।
0: ठीक है ठीक है, पहले हमें खजाने से जवाहरात ले आने दो, बाकी बाद में देखेंगे। अब तो जान बचाना जरूरी है, ये बला कैसे आन तक की?

0: बीसा जी, इतनी जल्दी करते करते भी रास्ता लंबा होता जा रहा है। सरदार इंगले,
1: श्रीमंत
0: अभी कितनी दूर और है दिल्ली?
1: श्रीमंत यही कोई 10 कोस और होगी।
0: काश ग्वालियर और दिल्ली के बीच की जमीन एक हो जाती। पता नहीं गुलाम कादिर क्या क्या जुल्म उठा रहा होगा शहंशाह पर। हे भगवान, हमारे लश्कर और दिल्ली के बीच की दूरी को गारत कर दे।
1: श्रीमंत अब ज्यादा देर नहीं लगेगी, उधर फरीदाबाद की तरफ से भी हमारा लश्कर शायद पहुंच चुका होगा।
0: भगवान को ना जाने क्या मंजूर था कि हमें ऐसी समझ दी कि दिल्ली को छोड़कर राजपुताना में जा फंसे फिर ग्वालियर चले गए, वरना ये मुसीबत क्यों खड़ी होती। जहां बना बस मेरे पहुंचने भर की देर है,

0: जहां बना पले की ये दुर्दशा, बड़ी बड़ी देर लगा दी मेरे फरिश्ते, लेकिन लेकिन देर आया दुरुस्त आया। जहां बना सचमुच कहर बपा कर दिया उस कमबख्त ने, हुजूर का चेहरा देखकर रोना आता है। हाय रे नसीब, मुझे इतनी देर से खबर मिली।
1: मेरे मसीहे, तुमने आकर हमें नई जिंदगी बख्शी है।
0: हुजूर, वो कमीना भी जल्दी पकड़ा जाएगा और माकूल सजा पाएगा। अब मुझे इजाजत बख्शे, मैं उस चंडाल चौकड़ी की खबर लेता हूं। किले के इंतजाम और हुजूर की सेवा के लिए सरदार शिंदे को छोड़ जाऊंगा।
1: खुदा हाफिज, खुदा हाफिज।

0: बोलो सरदार इंगले, क्या तोहफे भेजे हैं माधव जी सिंधिया ने?
1: जहांपनाह, सबसे अहम तोहफा है इस पिटारी में उस नीच कादिर के आंख, कान, नाक, होंठ और उंगलियां। उसे श्रीमंत सिंधिया ने फौजी दरबार में तड़पा तड़पा कर जिंदा खाल उतारने की सजा दी और ये हुजूर की खिदमत पे भेजे हैं।
0: इंगले, हमें आज जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हासिल हुई है। हाथ लगाकर देखूंगा। ये उस कमीने की आंखें हैं, ये कान, हाँ दोनों कान, ये नाक, ये उंगलियां, वाह ये शायद उसके होठ हैं। वाह बहुत खूब, बहुत खूब। इन्हें हरम में भेजो और कहो कि सब इस पर थूके और उसके बाद इन्हें कुत्तों के सामने डलवाते।
1: और ये हैं हुजूर के गद्दार कारकुन नाजिर मंजूर अली और इस्माइल बेग।
0: इन बदसातों को हाथियों से कुचलवा दिया जाए अभी इसी वक्त।
2: नहीं,

0: सरदार मनबहार सिंह, श्रीमंत की तरफ से आखिरी तोहफा। ये कादिर के मददगार उसके मुंह बोले चचा है।
1: हुजूर,
2: बोलो बोलो लाला शीतलदास, क्या कहना चाहते हो?
1: आलम भना, मैंने शहजादियों की उस रूहेले से इज्जत बचाई, शहजादों की जाने बचाई और जामा मस्जिद का सोना चांदी लूटने से बचाया।
2: हाँ हाँ, हमें इल्म हो चुका है लाला जी, बोलो क्या इनाम चाहते हो?
1: हुजूर, मैं ये सब इसी सरदार मनबहार सिंह की मदद से कर सका।
2: ओहो, बहुत नेक है सरदार, इसे 1000 अशरफियां और 1 घोड़ा दिया जाए ताकि ये अपने वतन पंजाब तक महफूज पहुंच सके। इस गुलाब के फूल को अगरचे हम देख नहीं सकते हैं, मगर इसकी पंखुड़ियां कितनी दिलकश हैं। इन्हीं पंखुड़ियों में हमारा फरमाबरदार अजीज दोस्त माधोजी सिंधिया भी शामिल है।

लाला शीतलदास, होली करीब है। किले में टेसू के फूल देगों में डलवाकर कसूमी रंग तैयार किया जाए, ताकि हमेशा की तरह होली का जश्न किले में ही मनाया जा सके।

गुलाब की पंखुड़ियां, इस नाटक का दूसरा और अंतिम भाग अभी आपने सुना। लेखक थे सुरेंद्र कांत, निर्देशक मुमताज शकेब। इसी के साथ अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के।

0: नमस्कार श्रोताओं, उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आज ऐसे कलाकार की बातें जो पुराने जमाने के महान गीतकार और पार्श्व गायक हैं।
1: आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की।
0: जिनके गीतों में ऐतिहासिक कहानियां सुनाई देती हैं और स्वतंत्रता संग्राम की गाथा भी।
2: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो दूर हटो दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: जिनके गीतों में धार्मिकता भी है और

0: कभी धूप तो कभी छाँव।
1: जी हाँ, अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप की मंदाकिनी जोशी से बातचीत हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा भाग।
2: दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ मंदाकिनी जोशी। आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में हम कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद कर रहे हैं। इसीलिए आज विविध भारती के स्टूडियो में ठीक हमारे सामने बैठी हैं गीतकार और कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप। स्वागत है आपका मितुल जी विविध भारती के इस स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत आभार जो आज आपने मुझे यहाँ बुलाया।
2: मितुल जी, जब बात चल रही है प्रदीप जी की, तो 5 दशक के अपने इस फिल्मी सफर में प्रदीप जी ने कई फिल्मों के लिए गीत लिखे। चल चल रे नौजवान, या आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, या दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, न जाने कितने ऐसे बहुत सारे देशभक्ति गीत हैं। 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की श्रद्धांजलि में भी उन्होंने जो गीत लिखा वो आज भी हम भूल नहीं पाते हैं, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। तो इस गीत की रचना कैसे हुई, राष्ट्रभक्ति का ये अमर गीत प्रदीप जी द्वारा कैसे लिखा गया, क्या माहौल था, आपके घर का क्या माहौल था, और स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने इस गीत का तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की उपस्थिति में 26 जनवरी 1963 को दिल्ली के रामलीला मैदान में सीधा प्रसारित किया गया इस गीत को, जो कि एक ऐतिहासिक घटना बन गई, इसके बारे में आप हमें बताइए।
3: जैसे मैंने कहा कि उनको देशभक्ति उनके रग रग में थी। जब ये चीन के साथ हमारा ये जो लड़ाई हुई और तब हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए, वो चीज़ उन्हें बहुत मन तक बहुत झकझोर गई, है ना। और उसमें उनको लगा कि ये इतने हमारे शहीद हो रहे हैं, हमारे ये जो लड़ाई में हमारे जवान, उनके बारे में हम क्या सोच रहे हैं, क्या हम लोग सोच रहे हैं क्या होगा उनके परिवार का, कुछ कुछ सोच रहे हैं हम लोग के नहीं। तो वो चीज़ें उनको बहुत मन में दुख दे रही थी। तो ये अचानक से उन्होंने लिखा गाना था, है ना। और वो एक शैतान सिंह नाम के, मेजर शैतान सिंह, जिनकी वहाँ पर शहादत हुई रिजांगला में, और वो चीज़ से भी उनको बहुत वो आहत हुए। वो जा रहे थे कहीं, रास्ते पे चल रहे थे, और चितलकर काका सी रामचंद्र, उनका घर माहिम में था, तो वहाँ पर उनको मिलने जा रहे थे। तो वहाँ चलते चलते उनको लगा कि ये देखिए क्या हो रहा है देश में, हमारा क्या होगा, हमारे जवानों का क्या होगा। उन्होंने एक लाइन लिखी, उनको मन में आई, और उनको मन में ये आई कि जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी, शहीद शहीद शहीद जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी। अब ये गीत तो उस वक्त तो उनको दिमाग में ये लाइन ही आई, उनको लगा मैं भूल जाऊँगा जब तक मैं घर जाऊँगा, हो

0: रास्ता है मैं ये लाइन भूल जाऊं। रास्ते पे उन्होंने एक देखा कि एक पान पट्टी की एक दुकान थी पान वाले की। उन्होंने कहा भैया कुछ मिलेगा लिखने के लिए? बोलते हैं यहाँ कहाँ मिलेगा भैया, ये एक सिगरेट का बॉक्स है खाली, इस पे कुछ लिख सकते हैं? आपके पास पेन है? बोलते मेरे पास तो पेन नहीं है। पास में कोई भाई खड़े थे, उन्होंने कहा ये ले लीजिए पेन। उन्होंने उस पे वो लाइन लिख दी और वो घर आ गए। वहाँ पर जाके वो जो अपनी मीटिंग ख़त्म करके घर आने के बाद फिर इसके ऊपर जो मंथन चला उनका, और मंथन में से धीरे धीरे धीरे धीरे ये गीत शेप अप हुआ। और मंथन कैसा चला कि दिनों दिनों उन्होंने घर में बैठ के लाइन की लाइनें अलग अलग स्टाइल में लिखते रहे, और फिर जाके ये गीत एक गीत के रूप में बना। अब वो तो गीत तो बन गया, लेकिन वो तो उनको पता नहीं था, उन्होंने तो जैसे कवि थे तो अपने आप से लिखते थे।
1: जी
0: उसी दौरान महबूब खान ने एक प्रोग्राम तय किया था दिल्ली में, जैसे फंड रेजिंग का प्रोग्राम रखा था नेशनल स्टेडियम में।
1: जी
0: महबूब खान आए घर पे और प्रदीप जी से कहा कि आपको एक गाना देना है, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के सभी लोग वहाँ पर एक एक गीत देने वाले हैं और हम वहाँ पर लाइव परफॉर्मेंस करने वाले हैं, तो आपकी तरफ से भी एक गीत हमें चाहिए। मेरे बापू को लगा कि अभी जो गीत मैंने लिखा है उसी को थोड़ा ठीक करके इसी को दे सकता हूँ, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी,
1: कुर्बानी
0: तो वो गीत तो उन्होंने बहुत लंबा लिखा था अपनी स्टाइल में।
1: बिल्कुल
0: तो फिर बैठ के उन्होंने तराशा और उसको कम किया, जैसे बहुत लंबा था उसमें से काट छाट के। महबूब खान ने कहा कि मुझे ये गाना उसमें सुवीनियर में लिखना है, क्योंकि हम सभी लोग सुवीनियर में हम लोग क्या गाने वाले हैं, हमारे परफॉर्मेंस क्या है, वो हम लिखने वाले हैं। इन्होंने कहा कि मैं ठीक है, मैं कल आपको देता हूँ। उन्होंने चितलकर काका को घर पे बुलाया, मतलब सी रामचंद्र, कि देखो भाई हमको ये गाना वहाँ पर देना है, और महबूब खान बोल रहे हैं कि हमको ये गीत का पूरा उसमें लिख के देना है,
1: ठीक
0: तो
1: है
0: मैं नहीं चाहता हूं कि ये गीत जब तक वहां पर गाए नहीं कोई तब तक ये खुलना नहीं चाहिए कि ये गीत क्या है।
1: जी
0: तो चितलकर काका ने कहा ठीक है, अब सुवीनियर में देना है लाइंस। तो उन्होंने महबूब खान को चार लाइनें दी। ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। ये लाइनें दी कि भैया ये मेरी लाइनें हैं और जब तक मैं इसको ठीक करके दूंगा तब तक ये चार लाइनें आप इसमें छाप दीजिए। तो ये खुला नहीं कि इसमें गीत में क्या है, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा। ठीक है, मतलब ये होगा कि हाँ शुभ दिन है, ये है वो है, सब लोग खुश हो जाओ, हम लोग सब अच्छे हैं, मतलब वॉट एवर। तो उस प्रकार का उन्होंने साइलेंट रहे कि हमारे उसमें गीत में क्या है।
1: जी
0: अब जब तक गाने का रिहर्सल होना था, लता दीदी गाने वाली थी, उसके पहले ये भी था कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगे। ठीक है, अब तब चितलकर काका का थोड़ा सा लता दीदी के साथ संबंध ठीक नहीं थे, तो लता जी ने कहा कि मैं गाना नहीं गाऊंगी, मैं श्री रामचंद्र के साथ गाना नहीं गाऊंगी, ये तो ओपन सीक्रेट है। तो फिर ठीक है, आशा दीदी गाएगी। फिर ये तय हुआ कि आशा दीदी और लता दीदी दोनों गाएंगी साथ में। अब उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसमें तो हमको पता नहीं है, हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन आखिरी में लता दीदी ने गाया। तो वो तो तब रिकॉर्डिंग कुछ नहीं हुआ था, रिकॉर्डिंग तो उसके बाद में
1: बाद
0: हुआ,
1: में हुई
0: ये तो लाइव वहां पर गाया उन्होंने,
1: दिल्ली
0: तो
1: में।
0: रिहर्सल कैसे करेंगे? एक बार घर पे आके रिहर्सल करके गए लता दीदी, एक ही बार चले गए दिल्ली, है ना। लेकिन वो इतनी अच्छी और उत्कृष्ट गायिका थी कि उनको तो समय नहीं लगा उसको उठाने
1: पकड़ने
0: में,
1: में। हाँ
0: और चितलकर काका और उनका तो संबंध ठीक नहीं थे, फिर भी दोनों ने साथ में खड़े होके स्टेज पे ये गाना पेश किया। प्रदीप जी को नहीं बुलाया गया था, नो इनविटेशन। हाँ, तो ये भी अजीब सी बात है, देखिए कि जिस इंसान का गाना वहाँ बज रहा है, वहाँ गा रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्री के दूसरे सभी गीतकार थे, प्रदीप जी को ये लोग भूल गए बुलाना, तो इनवाइटेड नहीं थे, तो वो नहीं जाएंगे, वो नहीं गए। गीत वहाँ पर पेश हुआ, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर, वीरों ने है प्राण गंवाए।
1: जी
0: तो माहौल चेंज हो गया, पर मत भूलो सीमा
1: लो
0: पर, वीरों ने है प्राण गंवाए। लोग एकदम सुनना
1: स्तब्ध रह
0: शुरू
1: गए।
0: किया कि ये क्या है, जवाहरलाल नेहरू जैसे एक ज्ञानी व्यक्ति बैठे हुए थे, राधा कृष्णन जैसे बहुत ज्ञानी थे, मतलब ऐसे हमारे वहां पर नेता बैठे थे जो समझ पा रहे थे कि ये क्या है, और पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई कुछ ना बोले, और लता दीदी की आवाज में ये गाना वहां पर गूंजा, लोगों की आंखों में आंसू भरे। और ये हकीकत है, वहां पर जितने लोग वहां मौजूद थे, एक इंसान ऐसा नहीं था जिसकी आंखों में पानी ना
1: नहीं
0: हो।
1: था
0: और जवाहरलाल जी रोए, वो तो पता है सबको,
1: जी,
0: क्योंकि
1: बिल्कुल
0: उनके मन में भी ग्लानि बहुत थी कि हमारे कितने शहीद हो गए, हमारे जवान, हमारे ऑफिसर्स, हमारी आर्मी। तो वो चीज़ को सुन करके सभी बहुत दुखी थे, मन में बहुत ग्लानि थी,
1: जी
0: गिल्ट फीलिंग।
1: जी
0: पूरा हो गया कार्यक्रम, जवाहरलाल जी ने पूछा कि बेटी तुमने तो रुला दिया, लेकिन कवि कहाँ है, ये
1: अच्छा
0: लिखा किसने है?
1: जी
0: तो लता दीदी ने कहा, नहीं वो तो नहीं आए हैं, कवि प्रदीप ने लिखा है, वो नहीं आए हैं। तो वहाँ पर यशवंतराव चव्हाण खड़े थे, है ना, वो अपने डिफेंस मिनिस्टर थे तब, यशवंतराव चव्हाण। उनको जवाहरलाल जी ने कहा कि चव्हाण जी आपके वहाँ के हैं, ये तो बम्बई के लोग हैं ये सब, तो आप जब बम्बई जाएंगे तो आप प्रदीप जी को ज़रूर कहिए कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो ये बात हो गई। दूसरे दिन अखबारों में छपा कि इतना सारा हुआ, जवाहरलाल जी की आंख में पानी आ गया। मुझे याद है क्योंकि मैं भी बैठी हुई थी, मैं तो
1: जी
0: छोटी बच्ची थी, लेकिन मुझे याद है। हम लोग चाय पी रहे हैं बाहर बैठ के बरामदे में, हमारे देखते हैं कि बाहर रास्ते पे से दौड़ते हुए लक्ष्मीकांत आ रहे हैं,
1: जी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जोड़ी के लक्ष्मीकांत जी
0: लक्ष्मीकांत जी।
1: जी
0: वो आए, दौड़ के मेरे पिता के पैरों में पड़ गए, बोलते प्रदीप जी आपने तो पूरे देश को रुला दिया, बोलते आप छा गए, आपका वहाँ पर आपका गीत जो बजा है, तो हम नहीं, हम तो म्यूजिशियन थे, वो तो म्यूजिशियन थे तब, मैंडोलिन बजाते थे उसी गीत में,
1: अच्छा
0: बोलते हम सब तो थे, लेकिन हमने देखा कि पूरा माहौल जो है पूरा चार्ज हो गया था, और आंखों में आंसू के साथ लोगों ने इस गाने को
1: सुना।
0: सुना। तो लक्ष्मीकांत आके बोले खुद, है ना, इट वॉज एब्सोल्युटली, मैं तो कहूँ कि मैं समझ नहीं पा रही थी, मैं बहुत छोटी थी,
1: जी जी
0: लेकिन मैंने लक्ष्मीकांत जी को आते हुए देखा, उनको पैर पड़ते हुए देखा, और उनको ये कहते हुए सुना,
1: सुना।
0: ये मैं आज तक भूल नहीं पाती हूँ।
1: और इस वक्त आपसे बात करते हुए, ये घटना सुनते हुए हमारी आंखों में भी पानी सा आ गया है कि कितना उम्दा गीत उन्होंने लिखा। पर बड़ा अफसोस हुआ कि उन्हें नहीं बुलाया गया। और इसके पीछे का कारण क्या कभी सामने आया?
0: नहीं, ये हो सकता है कि भूल गए, और नेचुरली भूल गए, लेकिन हो सकता है कोई पॉलिटिक्स होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता है। ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो वहाँ पर वो होते तो जवाहरलाल नेहरू उनको बधाई देते कि आपने बहुत अच्छा गीत लिखा, और बात ख़त्म हो जाती। लेकिन जवाहरलाल जी जब 2 महीने के बाद मुंबई आए,
1: जी
0: उन्होंने खास बोला यशवंतराव चव्हाण को फिर से कि आपने कहा था ना मैं मिलवाऊंगा वो कवि से, तो अब मुझे उनसे मिलना है। राजभवन में प्रदीप जी को बुलाया गया, वहाँ पर बैठ के जवाहरलाल जी ने बहुत सारी उनकी कविताएं सुनी 2-3 घंटे तक। और अच्छा ये गीत भी आपका है, दूर हटो ये दुनिया वालों, आपने लिखा है? अरे ये तो हम गाते थे, हम जेल में थे, तब हमको आके बताया किसी ने कि ये गीत चल रहा है और लोग खुशी होके वापस वापस से इसको सुन रहे हैं,
1: जी
0: आपका लिखा गीत है, चल चल रे नौजवान आपका है, अरे ये तो इंदु भी गाती थी।
1: बताइए
0: ऐसी बातें कहाँ होती थी अगर वो
1: जी
0: जाते थे दिल्ली?
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: ये भी एक नसीब और डेस्टिनी है,
1: कि जो होता है अच्छे
0: अच्छा
1: के
0: होता
1: लिए
0: है।
1: होता है जी
0: उसके बाद में उनको कहा गया, मतलब जवाहरलाल जी ने कहा कि हमारा एक प्रोग्राम है कल यहीं पर, तो हम चाहते हैं कि आप लोगों के सामने ये गीत सुनाइए।
1: अच्छा इसी गीत को
0: इसी गीत
1: आप
0: को।
1: सुनाएं।
0: तो प्रदीप जी ने कहा कि मैं तो कवि हूँ, मैं तो साजिंदे के साथ तो गा नहीं सकता हूँ, अपनी तरीके से सुनाऊंगा। वो कहते हैं कि हाँ हम आपकी तरीके से ही सुनना चाहते हैं, जैसे आप गाएंगे। फिर वहाँ पर बहुत बड़ी प्रोग्राम था, एक मीटिंग थी, वहाँ पर प्रदीप जी ने ये गीत सुनाया, और सुनाने के बाद जवाहरलाल जी ने कहा कि ये आपने जो हाथ में लिखा है ना गाना, वो मुझे दे दीजिए, आपकी लिखाई का गीत मैं रखूंगा। तो उनकी लिखी हुई हस्तलिपि में आज भी आनंद भवन में वो गीत सुरक्षित है।
1: वाह बहुत सुंदर। तो कहना चाहिए कि जो कवि प्रदीप जी की कलम से निकले जो गीत थे, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और उसके बाद में देश की रक्षा में सैनिकों का मनोबल बढ़ाया
0: जी
1: और साथ ही उनके गीत

0: तो देखिए हमारी आंखों में भी पानी है और हमारी आंखें भी नम है आज इस बातचीत को जब हम कर रहे हैं। मिथुल जी, कवि प्रदीप जी की रचनाओं पर हम बात कर रहे हैं, उनके जो देशभक्ति रचनाएं हैं उनके बारे में हम इतनी विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि मिली उस देशभक्ति गीत के बाद ही, जिसका जिक्र अभी हमने थोड़ी देर पहले ही किया था, ऐ मेरे वतन के लोगों।
1: जी
0: और उन गीतों को लोग आज भी सुनते हैं और उनके लिखे गीतों को आज भी हम देशभक्ति से ही जोड़ते हैं। उनका पूरा जीवन लेखन, देश प्रेम, राष्ट्रवाद और मानवीय संवेदनाओं को समर्पित रहा और वे देशभक्त के पर्याय बन गए।
1: जी
0: एक समय ऐसा भी आया। आप इस बात को कैसे कहेंगी? आप किस तरह का माहौल लगता था? कौन कौन से लोग उनसे मिलने आया करते होंगे?
1: हाँ, मैं आपको एक खास बात ये बताऊं कि प्रदीप जी कभी भी दूसरे प्रोड्यूसर्स या म्यूजिक डायरेक्टर्स के घर पे या ऑफिस में कभी गए नहीं। जो भी उनसे बात करना चाहे वो हमारे घर पे आते थे।
0: जी
1: तो ये नहीं है कि कभी वहाँ पर बैठे हुए हैं उनकी ऑफिस में या उनके रिकॉर्डिंग रूम में, कभी नहीं। जो भी रिहर्सल होते थे गानों के वो हमारे घर पे होते थे। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी बात थी कि बड़े बड़े लोग आते थे,
0: जी
1: आशा दीदी, लता दीदी, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, मोहम्मद रफ़ी, इन सबको सुनने का रिहर्सल्स में हमको मौका मिलता था।
0: बिल्कुल
1: तो हम छोटे छोटे बच्चे कान लगा के खड़े रहते थे दरवाजे के पास, और
0: हाँ
1: कभी कभी ऐसा होता था कि अचानक दरवाजा खुल जाता था तो हम पकड़े जाते थे, हम लोग
0: जी
1: खड़े। तो ये बात थी, एक तो ऐसा था कि लोग आते थे। और जो भी प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने पिताजी को, कवि प्रदीप जी को, पूरी छूट दे के रखी थी कि आप जैसा लिखना चाहें वैसा लिखिए, हम आपको नहीं कहेंगे कि आप इस लाइन पे लिखिए। तो कई उनके ऐसे गीत थे जो आज इतने पॉपुलर हैं, कौन सी फिल्म है लोगों को नहीं पता, लेकिन गीत लोग जानते हैं। जैसे जागृति फिल्म या नास्तिक फिल्म, उसमें इतने सारे अच्छे अच्छे गीत हुए और उसमें पूरी छूट दे के रखी थी कि आपको जो लिखना है आप लिख सकते हैं। तो वो छूट के कारण भी उनकी एक स्वतंत्रता कभी बाधित नहीं हुई, और वो एक कारण था कि आज भी कई गाने पॉपुलर हैं।
0: जी
1: दूसरा ये कि हमारे घर पे और कौन कौन आते थे, तो कई नेता भी आते थे, अभिनेता भी आते थे हमारे घर पे, मनोज कुमार, राजेंद्र कुमार, उस वक्त के लोग
0: जी
1: काफ़ी आते थे। जो उनके साथ कभी काम नहीं किया हो वैसे लोग भी आते थे, सिर्फ मिलने के लिए।
0: जी जी
1: और म्यूजिक डायरेक्टर्स तो रिहर्सल होता था इसीलिए आते थे। तो उनका बातचीत सभी से थी, लेकिन वो कभी भी अपने आप को उन्होंने झुकाया नहीं, ना वो किसी विचारधारा के साथ गए।
0: जी
1: उनकी अपनी विचारधारा क्या थी? राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र सबसे ऊपर।
0: बिल्कुल
1: कोई भी आए जाए नेता, उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। नेता कोई आते भी थे तो उनको बहुत खुली तरह से बोलते थे कि आप लोग ये गलत काम कर रहे हो, और वो सुन भी लेते थे। ऐसा माहौल था तब, वो सुन भी लेते
0: क्योंकि उनकी गीतों से वो बात निकली, उनकी कलम में
1: थे।
0: वो
1: हाँ,
0: जादू था।
1: तो जैसे कई ऐसे नेता थे जो हम मैंने देखा था कि वो आके बैठते थे, उनसे बात करते थे और कुछ सुन के ही जाते थे कि आपने ये गलत काम किया, ये अपनी पॉलिसी गलत है। तो इस प्रकार से उनका बातचीत का दौर चलता रहता था। उनको क्या पसंद था? न्यूज़, अखबार, मतलब जो अखबार सुबह आए तो चार पांच अखबार पढ़े बिना उनकी सुबह नहीं होती थी, पूरी नहीं होती थी। चाय और अखबार वो सबसे पहले सुबह उनके साथ में, उनके या तो कमरे में हो या हमारा अच्छा बरामदा है वहां पर।
0: कौन कौन से अखबार हुआ करते थे, कुछ याद है आपको?
1: हाँ, अभी अभी भी यार, टाइम्स ऑफ इंडिया और इंडियन एक्सप्रेस, क्योंकि वो बोलते थे कि इंडियन एक्सप्रेस लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें सही समाचार आते हैं। फिर नवभारत टाइम्स, मतलब हिंदी अखबार, इंग्लिश अखबार और मराठी अखबार,
0: जी
1: वो मराठी भी पढ़ते थे। तो वो चाहते थे कि सभी तरह की उनको जो समाचार मिलता रहे, क्योंकि मराठी अखबार में लोकल ज़्यादा आएंगे न्यूज़, हिंदी अखबारों में हिंदी प्रदेशों के न्यूज़ आएंगे, और इंग्लिश में तो सब कुछ आएगा ही आएगा। तो ये छह अखबार हमारे वहाँ रोज़ आते थे, और गुजराती, मतलब गुजराती भी, क्योंकि मेरी माँ गुजराती थी।
0: इतनी भाषाओं का
1: इतनी भाषाओं के हमारे वहाँ अखबार
0: आते
1: आते
0: थे और
1: थे
0: उसे पढ़ा
1: और
0: जाता था।
1: आज भी आते हैं, वो मैंने
0: जी
1: बंद नहीं किए।
0: जी
1: तो मुझे भी वो आदत है कि सुबह सुबह अखबार के सिवाय हमारी सुबह नहीं
0: नहीं
1: होती।
0: होती।
1: बीबीसी न्यूज़, उनका रोज़ का सवेरे का 5:45 बजे का न्यूज़ वो सुनते थे। ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज़, मतलब समाचार जो हिंदी में आएंगे, अंग्रेजी में
0: जी
1: आएंगे,
0: हाँ,
1: वो सब उनको सुनना ज़रूरी था।
0: तो घर में एक रेडियो था।
1: हाँ,
0: जी
1: एक नहीं, 2-3 रेडियो थे, क्योंकि तब तो टेलीविज़न भी नहीं था ना। तो रेडियो उनका साथी था, मेरी माँ का अलग साथी रेडियो था और मेरे लिए अलग रेडियो था। तो हमारे घर में 3 अलग-अलग रेडियो बजते थे। तो मैं जो है विविध भारती सुनती थी।
0: अच्छा।
1: जैसे मैंने कहा, वो हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखते थे कि दिन में कुछ भी अगर समाचार आए तो हमको वो पहले बताते थे। जैसे कैनेडी को गोली मारी गई तो सबसे पहले उन्होंने आके हमको बताया कि देखो ये हो गया है। तो ये अपडेटेड रहते थे हर एक चीज़ में।
0: मतलब पल पल उनका देश के लिए समर्पित था और
1: हाँ।
0: हर कण कण
1: तो
0: में वो देशभक्ति का
1: ये जो
0: जज्बा था।
1: जागरूकता थी ना, वो मुझे नहीं लगता कि सभी परिवारों में रहती है। तो जागरूकता रहने से मैं, माँ, और तब दीदी की शादी भी हो गई थी, वो मुझसे बड़ी थी, तो हम तीनों लोग जागरूकता, मतलब वो क्या आ रहा है, सुनने की आदत हो गई कि सबसे पहले समाचार सुनो क्या हो रहा है, समाचार सुन लिए उसके बाद में चाहे कुछ भी करो। तो मेरी माँ भी सुबह, मेरे पिता के जाने के बाद, सुबह सवेरे वो रेडियो का समाचार पहले सुनती थी।
0: तो मितुल जी, अब एक और गीत हम आपकी पसंद का सुन लेते हैं। बताइए कौन सा गीत सुनवाएं आपको।
1: एक हम लोग थोड़ा सा हटके सुनाते हैं, संबंध फिल्म का, अंधेरे में जो बैठे हैं नजर उन पे भी कुछ डालो,
0: वाह
1: अरे ओ रोशनी वालो।
0: वाह, क्या बात है। महेंद्र कपूर साहब का गाया हुआ गीत है
1: जी
0: ये,
1: जी
0: और बहुत पसंद करते हैं लोग इस गाने को। गाने में बहुत ही दर्शन छुपा है, बहुत ही खूबसूरत गीत। आइए सुनते हैं ये गीत।

0: बेटियों ने अपने पिता से क्या सीखा, मतलब उनको जिस करीबी से आपने देखा, क्या क्या लगा आपको कि नहीं, हम अपने पिता से ये नहीं सीख पाए, हमें सीख लेना चाहिए था, ऐसा कभी महसूस करते हैं आज उम्र के इस पड़ाव पर आकर?
1: अच्छा गाना नहीं सीख पाए, अच्छा लिखना नहीं सीख पाए, ये दो चीज़ें तो खैर नहीं कर पाए हम। और दीदी तो फिर भी ठीक ठाक गाती थी, और मतलब प्रोफेशनली नहीं ऐसे, लेकिन जागरूकता, सरल जिंदगी, हमें कभी भी कोई कंपटीशन नहीं रहता है कि हमको ये नहीं मिला, हमको ये नहीं मिला, उसके पास ये है, मुझे भी वो चाहिए, वो कभी नहीं रहा। फिल्म इंडस्ट्री के लिए कभी कोई अट्रैक्शन नहीं रहा,
0: फिल्मी
1: सबसे
0: दुनिया
1: बड़ी
0: में
1: बात,
0: रहते हुए भी,
1: रहते हुए
0: उस
1: भी।
0: माहौल में रहते हुए भी।
1: और आज भी ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी बात हुई कि हमको फिल्म इंडस्ट्री के लिए कोई अट्रैक्शन नहीं रहा कि हमको फिल्म में काम करना है या गाना गाना है या हमको ये करना है, ऐसा नहीं रहा
0: और किसी
1: वो।
0: तरह का कोई आपको मिला भी नहीं वहां से कि कोई व्यक्ति आए और कहा हो कि मितुल जी हमारे लिए कुछ लिखिए अपने पिता की तरह या गा के
1: हाँ
0: बताइए?
1: हाँ नहीं, लिखने के लिए तो मुझे दो तीन लोगों ने अभी भी कहा था, जैसे बप्पी दा ने कहा था मुझे उनके जाने के कुछ सालों पहले कि आप पिताजी की तरह आप भी लिखिए, मैं उसके म्यूजिक कंपोज करूँगा, बप्पी लहिरी ने।
0: जी
1: तो वो तो मुझे मिलता रहता है, लेकिन मुझे मालूम है कि मैं नहीं लिख पाऊंगी, मैं जानती हूँ, तो मैं क्यों अपने आप को उसमें एक्सपोज करूँ, तो वो काम नहीं हो पाया।
0: आप उनकी कोई कविता सुनाना चाहती हैं तो हमारे श्रोता भी सुनना चाहेंगे जो आपको पसंद हो,
1: हाँ हम
0: जो
1: अभी,
0: फिल्मों में नहीं आई और उन अलग से जो उनका संकलन था
1: हाँ
0: कविताओं का।
1: हाँ हाँ तो उन्होंने जैसे देशभक्ति के ऊपर कविताएं लिखी, तो एक दो लाइनें उसकी सुनाती हूँ और एक
0: जी
1: दो लाइनें कुछ अलग मूड की सुनाती हूँ।
0: जी
1: तो उन्होंने, मैंने जैसे पहले कहा था कि आज़ाद जब नहीं रहे, चंद्रशेखर आज़ाद, तब कविता लिखी थी। उसी दौरान, उसके बाद में जब हमको आज़ादी मिली,
0: जी
1: तब उन्होंने एक कविता लिखी थी कि लो फिर पुलक उठे, वे जो थे दले गए। लो फिर पुलक उठे, वे जो थे दले हुए, उर्वी पर अपार दुर्वा दल नए नए। कल तक थी जो विकल दैन्य से दबी रही, आज वही खिल उठी शस्य श्यामला मही। निखिल प्रकृति लहलही, विमल वातास वही, पल्लव पल्लव ने नवयुग की कथा कही। मतलब
0: वाह
1: नवयुग में खुशी से आनंदित है
0: जी
1: क्योंकि
0: जी
1: हमको उस वक्त आज़ादी
0: आजादी
1: मिली
0: मिल
1: थी।
0: गई।
1: और आप अगर सुने, एक और उनका गाना है जो आप बाद में बजा सकते हैं कि इंसान का इंसान से हो भाईचारा,
0: भाईचारा यही
1: ये
0: पैगाम
1: वो
0: हमारा।
1: ही तरीके का है कि उसमें उन्होंने लिखा है कि हर एक महल से कहो कि झोपड़ियों में दिए जलाएं,
0: चलाएं
1: छोटों और बड़ों में अब कोई फर्क
0: फर्क न
1: नहीं रह
0: रहने
1: जाए।
0: पाए।
1: तो ये एक गीत भी उनका बहुत देश
0: पॉपुलर
1: के
0: हुआ
1: लिए
0: था
1: पॉपुलर
0: देश
1: है,
0: के
1: और
0: लिए।
1: आज भी वो संदेश लोगों में जाना चाहिए कि इंसान का इंसान से उभाई जा रहा,
0: ये
1: और कुछ नहीं,
0: यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको हम ठुकरा नहीं सकते
1: ठुकरा नहीं
0: हैं,
1: सकते।
0: भुला नहीं सकते हैं,
1: हाँ
0: झुठला नहीं सकते
1: हाँ
0: हैं। तो आप कहें तो यही गीत हम
1: ये
0: सुन
1: गीत
0: लें
1: ये जरूर बजाइए, बहुत
0: जी।
1: अच्छा गीत है।
0: आइए सुनते हैं ये गीत।

0: मितुल जी, जब देश आजाद हुआ, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि उन्होंने उन लोगों के लिए लिखा जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण गंवा दिए, और एक ऐसी ज्वाला देश में उत्पन्न कर दी अपने शब्दों के जरिए, अपने गीतों के जरिए, कि नेहरू जी की भी आंखें नम हो गई और सुनने वालों की आंखें नम हुई। तो जब देश स्वतंत्र हुआ, उस समय क्या माहौल था और किस तरह का माहौल घर में था? हमें पता है तब आपका जन्म नहीं हुआ था, लेकिन जब आप बड़ी हुई और इस तरह की बातें घर में चली होंगी, तो माँ के द्वारा ये बातें आप तक आई होंगी, उसके बारे में हमें बताइए।
1: मेरी माँ बताती थी कि जिस दिन ये 1947 15 अगस्त ये इतना बड़ा दिन था
0: जी।
1: पूरे देश के लिए, तो वही माहौल हमारे घर में था। हमारे घर के बाहर रंगोलियाँ बनाई गई। मेरी माँ बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी, वो बहुत अच्छी रंगोली बनाती थी, तो उन्होंने बहुत बढ़िया भारत माता की रंगोली बनाई। उन्होंने बहुत सुंदर से फूलों से पूरा आंगन सजाया, और बापू को तो हमारा जो वो शीरा रहता है ना आटे का, वो बहुत पसंद था हमेशा,
0: हलवा।
1: हलवा। तो वो उन्होंने स्पेशली बोलती है कि मैंने बहुत सारा बनाया और प्रदीप जी ने भी खाया और आसपास के लोगों को भी हमने खिलाया। तो एक तो हलवा बना घर में, और बंधेज अपने तोरण बनाए हाथों से, गेंदे के फूल लेके हाथों से। मतलब तब ये था कि जितना हाथ से बना के करेंगे वो आनंद का एक दिखा सकते हैं कि हम कितने खुश हैं। तो घर घर में वो बना, मतलब हमारे घर में, आसपास के घरों में, तो माहौल बहुत ही सुंदर था और बहुत ही खुशबूदार था, क्योंकि इतने सारे फूल थे, इतने सारे पत्तियां थी और गाने बज रहे थे। उस वक्त तो ऐसा माहौल नहीं था कि लोग बड़े बड़े डीजे बनाएं और वो करें, लेकिन रेडियो में गाने बज रहे थे और लोग एक दूसरे को बधाइयां दे रहे थे।
0: और ऐसे में अगर कभी प्रदीप जी के गीत बज रहे होंगे, जन जन तक पहुंच रहे होंगे, तो क्या माहौल होगा?
1: बहुत बढ़िया, बहुत। और उस वक्त भी लोग बधाइयां देने आते थे कि प्रदीप जी आपका भी इसमें बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि आपके गीतों के द्वारा हम लोगों ने
0: जागृति हुई, एक
1: जागृति मिली
0: आंदोलन का
1: हमको।
0: जो बीज था वो वहीं से उत्पन्न हुआ।
1: हाँ, मतलब इस प्रकार का माहौल था ये जो हमको माता पिता ने दोनों ने बताया।
0: जी।
1: और लेकिन लेकिन प्रदीप जी इसमें भी थोड़े आश्वस्त नहीं थे।
0: अच्छा।
1: जब मिल गई आज़ादी, उसके 2-4 साल के बाद उनको लगा कि आज़ादी तो मिल गई है, लेकिन क्या आप इसको संभाल पाओगे क्या?
0: बहुत बड़ा सवाल।
1: हाँ, तो ये उनके मन में उसी वक्त उठा था कि हमने तो आज़ादी दिलवा दी, हम तो चले जाएंगे, उसके बाद में क्या? क्या आप इस देश को आज़ाद रख पाओगे? तो उन्होंने बच्चों को पूछा कि हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के,
0: इस देश को रखना मेरे
1: मेरे
0: बच्चों
1: बच्चों संभाल
0: संभाल के।
1: के, तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के। ये
0: जी,
1: कितनी बड़ी बात उन्होंने कही, क्योंकि
0: बहुत
1: उनको
0: बड़ी।
1: वही चिंता रही कि एटम बमों के जोर पे ऐठी है दुनिया, तुम क्या करोगे? तुम खुद कुछ भी करना चाहो पूरी दुनिया में बम से? और आज वही माहौल नहीं है क्या? हाँ, आज जो इतने बड़े बड़े लोग लड़ रहे हैं, इतने बड़े
0: जी
1: बड़े देश,
0: जी
1: आज भी वही बात है। तो वो उन्होंने उस वक्त यही सोचा था कि आगे क्या होगा।
0: जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, यानी कवि प्रदीप जी वहां पहुंच गए जो आज हम देख रहे हैं। उस समय वो उस बात तक पहुंच गए और उन्होंने चिंता व्यक्त की जो आज सच साबित हो रही है
1: हर एक लाइन सुनिए आप।
0: जी।

0: मितुल जी, आज प्रदीप जी के बारे में हमें इतनी बातें पता चल रही हैं और हम इतने अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आपको बता नहीं सकते हैं। बहुत सी बातें उनके बारे में हमने पढ़ी, जैसा कि आपने भी कहा कि वो बहुत साहसी थे, दबंग थे और जो कहना होता था सामने कह देते थे। कवि प्रदीप जी ने तो असंख्य गीत लिखे हैं। जब कोई फिल्म वाले या निर्माता पहले से बनाई गई धुन लेकर उनके पास आते थे और कहते थे कि इस धुन पर प्रदीप जी आप कोई गीत लिख दीजिए, तो वो कहते थे कि भाई मुर्दे का कफन पहले खरीदे हुए, मतलब मुर्दे को उसकी साइज का काटना पड़ेगा, तो मैं ये काम नहीं कर सकता। और इस तरह से वो सही बात कह देते थे। क्या इस तरह से उनका सही कहना, कहीं आपको लगता है कि उनके गीतों में कटौती हुई या कुछ और गीत, बहुत सारे गीत जो आ सकते थे नहीं आए उनकी इस बेबाकी से और बहुत ही सही रवैये से?
1: हाँ, ये आप मुझे लगता है ऐसा मतलब हुआ होगा, क्योंकि उनको कभी भी, जैसे आपने कहा कि पहले से बनाई हुई धुन पे उन्होंने कभी नहीं लिखा, उन्होंने लिखा वो अपनी खुद की धुन पे लिखा, और इसलिए कई बड़े बड़े संगीतकार भी उनसे थोड़ा दूर रहते थे कि भाई ये तो हमको काम नहीं करने देंगे, वो खुद गाएंगे और प्रोड्यूसर कहेगा कि यही धुन ठीक है। तो उसमें ओपी नैयर के साथ भी ऐसा एक वाक्या हुआ था,
0: जी,
1: संबंध फिल्म जिसमें कवि प्रदीप जी के गीत और ओपी नैयर का संगीत।
0: संगीत
1: तो जब प्रोड्यूसर राम मुखर्जी, उन्होंने कहा कि प्रदीप जी लिखेंगे गीत और आप म्यूजिक देंगे, तो नैयर साहब ने कहा कि नहीं नहीं मैं म्यूजिक नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि प्रदीप जी को आदत है कि खुद अपनी धुन बनाते हैं और फिर आप लोग हमको कहते हैं कि इस धुन पे आप अपना संगीत दीजिए। तो राम मुखर्जी ने कहा ऐसा हम कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। तो वो आए घर पे और कहा कि

0: दीप जी, एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट हो रहा है, तो आप अपनी धुन इसमें मत दीजिएगा। बोलता मैं कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी मेरी आदत तो वैसी है, ओपिनियर चाहे तो बदल दे। हाँ, मैं नहीं बोलूंगा कि मत बदलो, ठीक है। तो वो भी अपने घर पे ही हुए इतने रिहर्सल्स। ओपिनियर आते थे, आशा भोसले दीदी आती थी, महेंद्र कपूर, बहुत बढ़िया माहौल था। और कहीं पर भी कुछ ऊंच नीच नहीं हुआ। और नय्यर साहब ने बापू के बनाई हुई धुन पे भी एक दो थोड़ा ऊपर नीचे करके संगीत दिया, और वो धुन को थोड़ा सा चेंज किया, जिसमें है चल अकेला तेरा मेला पीछे
1: पीछे
0: छूटा
1: छूटा
0: राही
1: राही
0: चल
1: चल
0: अकेला।
1: अकेला।
0: ये गीत बहुत पॉपुलर हुआ, संबंध के कई गीत बहुत पॉपुलर हुए। तो ये फिर ये एक प्रोजेक्ट बहुत सुंदर हुआ, और ओपिनियर को भी जो टेंशन था वो खत्म हो गया कि नहीं, प्रदीप जी के साथ काम कर सकता हूँ।

0: अपने जमाने के सुप्रसिद्ध गीतकार और गायक कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल प्रदीप से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का ये था दूसरा भाग। तकनीकी सहयोग अनुश्री गुप्ता का था, संपादन सहायक झरना सोलंकी, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। अब आज का उजाले उनकी यादों के कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले उनकी यादों के।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत। हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: हम आकाशवाणी के हमीरपुर केंद्र से बोल रहे हैं एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर। शाम के 5 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हो गई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया की विदेश मंत्री सुग्यानो ने की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि हाल के वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और अधिक प्रगाढ़ हुई है। उन्होंने कहा कि बैठक में राजनीतिक, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार, पोत परिवहन, निवेश, स्वास्थ्य, औषधि निर्माण और उर्वरक जैसी द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर गहन चर्चा हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृह मंत्री की अध्यक्षता में त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। गृह मंत्री ने पिछले 5 वर्ष के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया है। श्री शाह ने कहा कि मादक पदार्थों और हथियारों की तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जाने चाहिए। उन्होंने जिला अधिकारियों तथा वस्तु और सेवा कर अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को नकली मुद्रा के बारे में सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसी विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमत में 29 रुपये प्रति सिलेंडर की वृद्धि की गई है। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 942 रुपये है। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन आज पूरे हो गए। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन मार गिराए। इससे पहले शनिवार को ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की थी। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मलयालम अभिनेता सलीम कुमार का कल रात कोच्चि में निधन हो गया। वे 57 वर्ष के थे। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। सलीम कुमार ने शुरू में मिमिक्री स्टेज और टेलीविजन कॉमेडी शो से पहचान बनाई। 3 दशक के करियर में उन्होंने करीब 350 फिल्मों में काम किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजौरी में आतंकरोधी अभियान के दौरान शहीद हुए सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट बीरेश्वर गोस्वामी को श्रद्धांजलि अर्पित की है। जम्मू वायुसेना स्टेशन पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ लेफ्टिनेंट गोस्वामी का अंतिम संस्कार किया गया। लेफ्टिनेंट गोस्वामी का राजौरी जिले में अभियान के दौरान एक गहरी खाई में गिरने से निधन हो गया था। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सम्मान मेजर बराक की अनुकरणीय सेवा और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों में भारत के दीर्घकालिक योगदान की पहचान है। न्यू चंडीगढ़ में भारत के साथ एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान ने पहली पारी में 5 विकेट पर 113 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत ने पहली पारी 8 विकेट पर 564 रन बनाकर घोषित कर दी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान देश के कई हिस्सों में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हुए हैं। अब आइए आपको जानकारी देते हैं आज शाम हमारे केंद्र से प्रसारित व रिले होने वाले शेष कार्यक्रमों की।

कार्यक्रम रूपरेखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे पहाड़ी भजनों पर आधारित कार्यक्रम भजन संध्या। 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युव मंच। शाम 6 बजे आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। 6:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सफर सुहाने गाने नए पुराने। 6:30 पर हाजिर होंगे लेकर पहाड़ी बोली में सजीव कार्यक्रम गल तुसांधी। शाम 7 बजे आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे हिंदी समाचार। 7:05 पर आप सुनेंगे देशगान। 7:10 पर आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष कार्यक्रम। 7:45 पर आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे। रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। इस दौरान 8:45 पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम दिलांदे मीत पहाड़ी गीत। 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चांदनी रातें और देर रात 11 बजे आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे। ये थी आज हमारे केंद्र से प्रसारित व रिले होने वाले शेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। शाम के 5:07 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं पहाड़ी भजनों पर आधारित कार्यक्रम भजन संध्या।

भजन संध्या कार्यक्रम सुनने वाले सारे श्रोताओं जो आहां दा प्यार भरा नमस्कार, राम राम। हाजिरन पहाड़ी भजना पर आधारित कार्यक्रम लेकर इन्हें, ता आइए करदे हन कार्यक्रम दी शुरुआत, सुनदे हन ए भजन।

0: संजीव दीक्षित कने साथियों दी आवाज़ च यह भजन आहां सुनिया। अगला भजन सुनना इस छोटे दे अंतराल ते बाद।
1: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
2: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
3: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के

इसी ने सौगी आज का ही कार्यक्रम संपन्न करने दी उन लैंदियन अनुमति। नमस्कार, राम राम। अभी आप सुन रहे थे पहाड़ी भजनों पर आधारित कार्यक्रम भजन संध्या। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। शाम के 5:30 हो चुके हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम युवमंच।

युवा साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है युव मंच। आज का कार्यक्रम सुनेंगे आप अपनी रेडियो दोस्त पूजा शर्मा के साथ। कर रहे हैं कार्यक्रम का आगाज इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ जो है आपके लिए कुछ खास। जी हाँ दोस्तों, क्या खोजते हो दुनिया में जब सब कुछ तेरे अंदर है, क्यों देखते हो औरों में जब तेरा मन ही दर्पण है। दुनिया बस एक दौड़ नहीं, तू भी अश्व नहीं है धावक, रुक कर खुद से बातें कर ले, अंतर मन को शांत तो कर ले। सपनों की गहराई समझो, अपने अंदर की अच्छाई समझो, स्वाध्याय की आदत डालो, जीवन को तुम खुल कर जी लो। आलस्य तुम्हारा दुश्मन है तो पुरुषार्थ को अपना दोस्त बना लो, जीवन का ये रहस्य समझ लो और खुशियों से तुम नाता जोड़ो, और खुशियों से तुम नाता जोड़ो। जी हाँ युवा दोस्तों, मायूस होने की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने कभी कोई समस्या नहीं देखी, या कोई परेशानी जिसके जीवन में आई ही नहीं, या जिसने कभी हार का मुंह देखा ही नहीं। अंतर है तो बस नजरिए का। तो अपना नजरिया बदलिए, अपने अंदर की ताकत को महसूस कीजिए और हाँ, अपने सबसे अच्छे दोस्त बनिए। और दोस्तों, जो डरते नहीं और हिम्मत से आगे बढ़ते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं, और मंजिल तक पहुंचने के लिए सही करियर का चुनना बेहद जरूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, सही करियर माइंडसेट का होना बहुत बहुत आवश्यक है, जिसका अर्थ है कि सकारात्मक सोच, स्पष्ट लक्ष्य और आत्मविश्वास के साथ करियर में सही निर्णय लिए जाएं। इसलिए सोच समझ कर निर्णय लेना और अपने कौशल यानी स्किल्स और रुचियों यानी इंटरेस्ट के अनुसार करियर का चयन करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमें अपनी रुचि और क्षमता को पहचानना है। कई बार हम केवल दोस्तों, रिश्तेदारों या समाज के दबाव में आकर करियर चुन लेते हैं, जिससे बाद में हमें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए करियर का चयन भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए। हमें सीखने की मानसिकता विकसित करनी है दोस्तों। हमें नई तकनीकों और ज्ञान को अपनाने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। निरंतर सीखने की आदत न केवल हमारा विकास करती है, बल्कि हमें बदलती दुनिया और इसकी चुनौतियों का सामना करने में भी सक्षम बनाती है। दोस्तों, हमें धैर्य और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। हर इंसान का सफलता प्राप्त करने का समय अलग अलग होता है। यदि किसी कॉलेज में प्रवेश ना मिले तो उसे जीवन का अंत नहीं मानना चाहिए। असफलता से सीख लेकर आगे बढ़ना ही सफल लोगों की पहचान होती है दोस्तों। कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना

आवश्यक है। निरंतर प्रयास, सकारात्मक सोच और दृढ़ संकल्प के बल पर सफलता अवश्य प्राप्त की जा सकती है। दोस्तों, हमें अपने करियर के लिए स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। छोटे छोटे लक्ष्यों को पूरा करते हुए बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ना अधिक प्रभावी माना जाता है। समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट, अनुशासन यानी डिसिप्लिन और मेहनत जैसे गुण भी करियर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में छात्रों को संचार कौशल, नेतृत्व क्षमता, टीम वर्क और समस्या समाधान जैसे व्यावहारिक कौशलों पर भी ध्यान देना चाहिए। ये उन्हें शिक्षा और रोजगार दोनों क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। दोस्तों, हम अपने करियर माइंडसेट हमेशा उद्देश्यपूर्ण और सीखने की इच्छा से भर सकते हैं। आज के प्रतिस्पर्धी समय में केवल मेहनत करना ही काफी नहीं, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना उतना ही जरूरी है। यानी हार्ड वर्क तो ठीक है, लेकिन हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क के ऊपर भी हमें काम करना है। यदि हम अनुशासन और निरंतर अभ्यास को अपने जीवन का हिस्सा बना लें, तो वे किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सही सोच, मजबूत संकल्प और लगातार प्रयास के साथ हर छात्र अपने सपनों को साकार कर सकता है और एक सफल भविष्य का निर्माण कर सकता है। तो हम हमेशा ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे सभी दोस्त बहुत अच्छे तरीके से सही करियर चुने और उस पर हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी दिखाएं और जीवन सफल बनाएं। इन्हीं जानकारियों के साथ आइए अब चलते हैं मनोरंजन की दुनिया में और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: युवा दोस्तों, गीत के बाद फिर से स्वागत करते हैं आपका आपके अपने कार्यक्रम में, जिसका नाम है युव मंच। दोस्तों, करियर की बात हो गई, सपनों की बात हो गई, लेकिन ये सब कुछ मुकम्मल होता है जब हमारा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो, तंदुरुस्त हो, है ना? तो चलिए आज दिवस खास की बात करते हैं। आज है 7 जून का दिन और आज हम मना रहे हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, यानी वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। दोस्तों, इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य दूषित भोजन और पानी से होने वाली बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और यह सुनिश्चित करना है कि खेत से लेकर थाली तक हर व्यक्ति को सुरक्षित, पौष्टिक और पर्याप्त भोजन मिल सके। दोस्तों, असुरक्षित भोजन के सेवन से दुनिया भर में हर साल लाखों लोग खाद्य जनित बीमारियों का शिकार होते हैं। यह दिन इन बीमारियों को रोकने के लिए जागरूक करता है। साथ ही यह दिवस इस बात पर जोर देता है कि सुरक्षित भोजन उत्पादन और उपभोग सरकार, खाद्य उत्पादकों और उपभोक्ताओं की साझा जिम्मेदारी है। सुरक्षित भोजन न केवल अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है दोस्तों, बल्कि कृषि, पर्यटन और वैश्विक व्यापार को भी मजबूत करता है। आपको बताएं, इस दिन को मनाने की शुरुआत विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन यानी FAO द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 20 दिसंबर 2018 को प्रस्ताव पारित कर हर साल 7 जून को इस दिवस को मनाने की घोषणा की थी। पहला विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून वर्ष 2019 को मनाया गया था। युवा दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कैसे आपके लिए, जी हाँ, यानी हमारे युवाओं के लिए बैलेंस्ड डाइट और न्यूट्रिशियस डाइट कितनी जरूरी है, क्योंकि यह आपके शारीरिक विकास, मानसिक स्वास्थ्य और ऊर्जा के स्तर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। युवाओं को अपने आहार में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, स्वस्थ वसा यानी हेल्दी फैट्स, विटामिन और खनिजों का सही संतुलन रखना चाहिए। दोस्तों, दिन भर की पढ़ाई, खेल कूद और अन्य गतिविधियों के लिए बहुत जरूरी है ऊर्जा, और ये आपको भरपूर कार्बोहाइड्रेट्स और वसा से मिलती है, जिससे थकान दूर होती है। बात करें मस्तिष्क के विकास की, तो ओमेगा 3, फैटी एसिड और विटामिन B से भरपूर आहार मानसिक सतर्कता और याददाश्त और एकाग्रता को बढ़ाते हैं। दोस्तों, मसल्स और बोन ग्रोथ की बात करें, तो इस उम्र में शारीरिक ढांचा मजबूत होता है। पर्याप्त प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन D हड्डियों को मजबूत और मांसपेशियों को स्वस्थ रखते हैं। ताजे फल, हरी सब्जियां और नट्स जैसे पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य पदार्थ शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं, जिससे आप जल्दी बीमार नहीं पड़ते। साथ ही विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर आहार त्वचा में प्राकृतिक चमक लाते हैं और बालों को झड़ने से भी बचाते हैं। तो भाई, हम यही चाहते हैं कि आप अपने खाने में बैलेंस्ड डाइट लें, न्यूट्रिशियस फूड का इस्तेमाल करें, बाहर की आकर्ष करने वाली चीजों से आप थोड़ा सा परहेज करें और अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल ध्यान रखें। तो यही जानकारियों के साथ आइए, वक्त है अब एक और गीत सुनवाने का।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: युवा दोस्तों, आजकल देखा जाता है कि एकाग्रता और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता कम हो रही है, यानी कि ऐसी कई चीजें हैं जो हमारे ध्यान को भटकाती हैं या हमारी नींद अच्छे से पूरी नहीं हो पाती है। नींद की खराब आदतें, खराब खान पान, बाहरी तनाव और भी बहुत कुछ है जो हमारी एकाग्रता को भंग करते हैं। हमारा मन लगातार विभिन्न चीजों से विचलित होता रहता है। दोस्तों, बात करते हैं अब योग के महत्व की। अगर आप सभी को भी ये परेशानियां सताती हैं, तो एक आसान सा हल है योग। देखिए दोस्तों, मेडिटेशन से आप एकाग्रता को हासिल कर सकते हैं। ध्यान किसी भी एक वस्तु, मेडिटेशन या ध्यान किसी भी एक वस्तु, जैसे कोई प्रतीक है या कोई चीज है, उस पर ध्यान केंद्रित करके मन को एकाग्र करने में मदद करता है। यह आपको विचारों को बिना किसी निर्णय या प्रतिक्रिया के आते जाते देखने में मदद करता है और इसके बजाय अपना ध्यान उस वस्तु पर बनाए रखने में सहायक होता है। आप देखेंगे कि अनावश्यक विचार धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और विचारों में स्पष्टता आ रही है, भावनाओं पर बेहतर नियंत्रण हो रहा है और एकाग्रता में सुधार हो रहा है। दोस्तों, प्राणायाम से जीवन शक्ति बढ़ती है और ऊर्जा का संचार होता है। कई तरह के अवरोध भी दूर होते हैं, ऑक्सीजन की आपूर्ति में सुधार होता है और मस्तिष्क को पोषण मिलता है। दोस्तों, श्वास को नियंत्रित करने से मानसिक एकाग्रता बढ़ती है और विचलित करने वाले विचार भी कम होते हैं। एकाग्रता सबसे प्रभावी है प्राणायाम। ये तनाव को दूर करता है और मन को शांत करता है, जिससे एकाग्रता में सुधार होता है। तो दोस्तों, अगर पढ़ाई में आपका ध्यान नहीं लग रहा है या काम आप अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर कर नहीं पा रहे हैं, तो आप भी योग अपना सकते हैं। शुरुआत कर सकते हैं हल्के फुल्के प्राणायाम से, जिससे आपको एकाग्रता मिलती है और आपका ध्यान भी काम से या पढ़ाई से भटकता नहीं है। ये किसी भी प्रकार से आपको कोई भी नुकसान नहीं करता। तो आप भी जीवन में योग को अपनाएं और सकारात्मकता को अपनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप भी मेहनत करिए, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहिए और वो दिन दूर नहीं जब मंजिल आपके कदम चूमेगी। बस नजरिया स्पष्ट रखिए और सकारात्मकता को अपनाए रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ दीजिए अपनी रेडियो दोस्त पूजा शर्मा को कार्यक्रम संपन्न करने की अनुमति। अपना बहुत ध्यान रखिए और सुनते रहिए आकाशवाणी हमीरपुर। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युव मंच। FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
4: नीलम छुटकी राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
5: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा रहा है।
4: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है, ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
5: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
6: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: टेलीलॉके ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: बड़ी बहू,
2: ये तुम्हारे नाम।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
2: अरे और छोटी, ये तुम्हारे नाम।
1: और ये
3: मेरी गुड़िया के नाम।
4: पर दादी,
2: हाँ,
4: आपके नाम?
5: सब कुछ, मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो।
4: क्या
6: RBI कहता है?
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। शाम के 6 बजने को है, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी शिमला से प्रादेशिक समाचार रिले किए जाएंगे।
1: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
2: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
3: बन गया बजट?
2: हाँ,
3: 5,000 बच गए।
2: तो नई साड़ी ले ले?
3: ना, पिछले महीने तो ली थी।
2: एक और?
3: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
2: बढ़िया,
3: जाओ भाई।
4: RBI कहता है,
5: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पाराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन में कटौती करने संबंधी अधिसूचना को वापस लेने की घोषणा की है। शिमला में आज एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार हुआ है और मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, विधायकों और मंत्रियों को 3 महीने के एरियर सहित जुलाई महीने में पूरा वेतन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए वित्त विभाग के सभी अधिकारी व कर्मचारी काम कर रहे हैं।
1: जो चीफ सेक्रेटरी है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, डिप्टी कमिश्नर्स है, जिनकी सैलरी को और जो MLA हैं और जो मिनिस्टर्स हैं उनकी जो डेफर की गई थी सैलरी को, उस डेफरमेंट की जो नोटिफिकेशन हुई थी उसको मैंने विड्रॉ कर दिया। अगले महीने से का एरियर होगा वो भी मिलेगा और जुलाई में उनको पूरी सैलरी भी मिलेगी, एक्सेप्ट चीफ मिनिस्टर को छोड़कर। अच्छी तरह सुधार हुआ है और अच्छी तरह सुधार से बढ़ रहे हैं। हमारा राजस्व जो हमने बंद किया, भ्रष्टाचार के चोर दरवाजे बंद करे, उसमें बहुत तेजी से सुधार हो रहा है।
0: मुख्यमंत्री ने HRTC के पेंशनरों को हर महीने की 7 से 10 तारीख के बीच पेंशन देने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि पथ परिवहन निगम को सरकार की ओर से 20 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जा रहा है। इसके अलावा राज्य सरकार निगम को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के भत्तों की अदायगी के लिए 30 करोड़ रुपए देगी।
1: सरकार ने ये फैसला किया है कि 7 से 10 तारीख के बीच में HRTC की जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन मिल जाया करेगी और वो पेंशन के लिए उनका डिपार्टमेंट जो है HRTC जो है उसको हम 20 करोड़ रुपए की ग्रांट देंगे। टोटल पेंशन का खर्चा 23 करोड़ है, 3 करोड़ HRTC जो अपना रेवेन्यू होता है उससे दिया करेगी, ये हमने उसको कहा है। तो 20 करोड़ रुपया मैं मेडिकल रिवर्समेंट के लिए उनको दे रहा हूँ ताकि उनका पूरा मेडिकल रिवर्समेंट हो जाए।
0: देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहाँ मतदाताओं की संख्या 100 करोड़ से अधिक है। उन्होंने चंबा जिले के खजियार में बूथ स्तर के अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और मतदाताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान मतदाताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मतदान को लेकर अनेक सवाल पूछे। ज्ञानेंद्र कुमार ने कहा कि देश में 12 लाख मतदान केंद्रों पर काम करने वाले बूथ स्तर के अधिकारी चुनाव आयोग के धरातल पर काम करने वाले अधिकारी हैं। उन्होंने मतदाताओं से अपने जीवन में प्रत्येक चुनाव में मतदान करने की अपील की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चंबा जिले के मतदाता भविष्य में होने वाले चुनावों में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत सुनिश्चित करें।
2: इतना बड़ा लोकतंत्र है आपका देश भारत। जिस चुनाव आयोग ने, अधिकारियों ने, हमारे कलेक्टर साहिबान लोगों ने ये आपका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है ना, दुनिया की सबसे बड़ी सरकार कौन सी? भारत की सरकार। 65 लाख लोग काम करते हैं।
0: राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की अमर कृति रश्मि रथी के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित 2 दिवसीय रश्मि रथी पर्व के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि रामधारी सिंह दिनकर एक महान कवि थे और उनके समानता व देशभक्ति के आदर्शों को अपनाना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राज्यपाल ने विश्वास व्यक्त किया कि युवा पीढ़ी दिनकर की रचनाओं में निहित शाश्वत मूल्यों को आत्मसात कर देश के उज्ज्वल भविष्य की ध्वजवाहक बनेगी। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे इस मौके पर विशेष रूप से मौजूद रहे। प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में संगठन से जुड़े वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हमेशा व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। उन्होंने कहा कि ये संगठन राष्ट्र प्रथम की भावना, अनुशासन और सामाजिक उत्तरदायित्व के संस्कार अपने कार्यकर्ताओं को देता है। इसमें जयराम ठाकुर ने शिमला के विकास नगर में सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित मेधावी छात्र सम्मान वर्ग कार्यक्रम में भी भाग लिया और मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
3: एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। शाम के 6:06 हुए हैं।
4: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
5: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
4: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
6: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
4: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
6: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
4: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। शाम के 6:06 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सफर सुहाने, गाने नए पुराने।

सफर सुहाने, गाने नए पुराने, कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत और आप सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार। नए पुराने गानों के आज के इस सुहाने सफर के आइए करते हैं शुरुआत।

शैलेंद्र सिंह और साथियों की आवाज़ों में ये गीत आपने सुना, फिल्म थी खेल खेल में। अगला गीत आइए सुनते हैं उदित नारायण, अलका याग्निक और साधना सरगम की आवाज़ों में, फिल्म है विश्वात्मा।

समय चाहे कितना भी बदल जाए, संगीत हमेशा दिलों को जोड़ने का काम करता है। और यही कारण है कि नए और पुराने गीतों का अपना अपना महत्व है और दोनों मिलकर हमारे जीवन को और भी रंगीन बना देते हैं।

दिल मांगे मोर, इस फिल्म से ये गीत आपने सुना के और सुनिधि चौहान की आवाजें थी। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं टू स्टेट्स फिल्म से। इस गीत में आवाजें आप सुनेंगे आकृति कक्कड़ और शाहिद माल्या की।

जीवन की भाग दौड़ में कुछ पल ऐसे भी होने चाहिए जो मन को सुकून दें, विचारों को नई दिशा दें और चेहरे पर एक सहज मुस्कान ले आएं। ये पल मन को तरोताज़ा करते हैं और हमारे हर पल को और ज़्यादा खूबसूरत बना देते हैं।

0: विशाल डडलानी और साथियों की आवाज़ों में ये गीत आपने सुना, फिल्म थी जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और अब इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न करने की लेते हैं आपसे इजाज़त।
1: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
2: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
1: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
3: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
1: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
3: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
1: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सफ़र सुहाने गाने नए पुराने, FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। शाम के 6:30 हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है पहाड़ी बोली में सजीव कार्यक्रम गलतुसांदी।

गल तुसंदी कार्यक्रम सुनने आले सारे श्रोताओं जो आहंदा प्यार भरा नमस्कार, राम राम। हाजिरन कार्यक्रम च एक विषय लेकर ही ने जिस पर करनी यहां गल बात जानने श्रोताओं दे विचार। श्रोताओं, आज है 7 जून, कने हर साल 7 जून जो विश्व साइकिल दिवस मनाया जांदा। दिखा एक समय था जाली साइकिल आहां दी दिनचर्या दा एक जरूरी हिस्सा हुंदी ही, पर समय ने सौगी इसका उपयोग जड़ा सा घट हुंदा गया। तथी गल करिए स्वास्थ्य कने पर्यावरण संरक्षण दी, तो स्वास्थ्य पर्यावरण संरक्षण कने स्वस्थ जीवन शैली दियां बढ़दियां जरूरतां दे विच साइकिल जड़ी है सै एक बारी फिर हिस्सा दी आहां जरूरत महसूस होआ दी। ता गल करिए अज दे विषय दी, ता अज दा विषय इसी पर आधारित है कि क्या साइकिल फिरी आहां दी दिनचर्या दा हिस्सा बनी करी बेहतर जीवन शैली दी पहचान बनी सकदी। विषय एक बारी फिर सुनी लिया कि क्या साइकिल फिरी आहां दी जिंदगी आहां दी दिनचर्या दा हिस्सा बनी करी बेहतर जीवन शैली दी पहचान बनी सकदी। इस विषय पर श्रोता अपने विचार साझा कर सकते हैं कार्यक्रम च फोन करके। स्टूडियो दा फोन नंबर है 2232, कने हमीरपुर दा एरिया कोड है 01972। नंबर भी एक बार फिर दस दें 01972 2332। जी तो अहां गल करनी अज दे विषय पर, क्या साइकिल स्वास्थ्य कने पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली दी दिशा च एक प्रभावी कदम होई सकदी। तां अज दे विषय पर अहां गलबात करनी कने जानने श्रोताओं दे विचार, कने सौगी अहां कार्यक्रम च लोक गीत भी शामिल करने। तां इस दे पहले कि श्रोता अहां सौगी जुड़दे हन, सुनी लैंदे हन एक लोक गीत।

0: जी श्रोताओं, एक श्रोता हसोगी जुड़ा दे अन्न तां पहले हाले लैंदे अन्न कार्यक्रम च पहली फोन कॉल। जी गल तुसां दी कार्यक्रम च स्वागत है।
1: जी राम राम।
0: राम राम जी, कौन श्रोता बोला दे?
1: राकेश बात कर रहा हूं, कोट खाई से।
0: जी राकेश जी, कार्यक्रम च बड़ा स्वागत है। अज दा विषय थों सुनया ही होना।
1: जी जी जी
0: जी, तो क्या बोल गया अज दे विषय पर?
1: आज दे विषय पे ये कहना चाहता हूं कि पर्यावरण के बारे में हमें अपने पर्यावरण को बचाना चाहिए। जैसे कि आज जो है विश्व साइकिल दिवस है
0: जी,
1: तो अगर हम साइकिल का इस्तेमाल करें तो ये भी क्या बोलते हैं हमारे पर्यावरण को बचा सकता है
0: जी।
1: कि अगर हम देखो अब तो हर आदमी को सुविधा मिल गई है। सबसे बड़ी बात ये है कि अगर एक परिवार में 7 लोग हैं तो 7 लोगों के पास अपनी अपनी गाड़ियां हैं
0: जी बिल्कुल।
1: तो अगर अब जब घर से 7 गाड़ियां जाती हैं तो हर तो बाजार में कितना पोल्यूशन फैलता है। और जब पेट्रोल और डीजल के पास जब गाड़ियां लगाते हैं तो हर आदमी पेट्रोल भरवाने जाता है तो कितना प्रदूषण होता है और पैसे की भी क्या बोलते बर्बादी होती है और अपना जो है वायु प्रदूषण भी हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है जैसे हमें बिजली भी बचानी चाहिए और पानी का जो संरक्षण भी हमें करना चाहिए। और एक बात ये भी होती है कि हम प्लास्टिक का उपयोग भी हम कम से कम करें। ये अगर हम ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखें तो हमारा जो है वायु प्रदूषण जो है पर्यावरण जो है बिल्कुल सुरक्षित है। और पेड़ तो हमें लगाना चाहिए तो
0: जी बिल्कुल राकेश जी, कार्यक्रम च तुम फोन किया कने एक अपनी तरफा ते बड़े अच्छे विचार साझा किए, बड़ा धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: जी। जी दिखा अहां दा विषय जिहड़ा सै विश्व साइकिल दिवस पर आधारित है, पर एक पर्यावरण ने जोड़ी करी इस विषय जो राकेश जी ने एक अगे बढ़ाया कने पर्यावरण ते संबंधित और भी गल्लां जिहड़ियां सै अपनी एक भावनाएं जिहड़ियां सै आ सोगी साझा कीतियां जी। जी तो दिखा गल अहां करा दे साइकिल दे बारे च कने पर्यावरण दी गल करिए, तां दिखा राकेश जी ने भी एक गल अहां सोगी साझा कीती कि अगर अहां दी एक कोशिश अगर अहां करन तां बाकी दूजे वाहना दी जगह कुछ एक ऐसियां जगह न जाली जिथे अहां साइकिल भी ले जाई सकदे ना, जिथे अगर अहां लगदा कि घट दूरी अहां तय करनी है तां छोटी छोटी दूरी पर भी अहां बाकी वाहन दी जगह साइकिल दा उपयोग जिहड़ा सै करी सकदे हन। साइकिल जिहड़ी है सै प्रदूषण घट करने च भी मददगार हो सकदी। कने कार्यक्रम च अहां श्रोताओं दे विचार शामिल करने, पर हुण सुनी लैणा एक लोक गीत।

0: जी ए लोक गीत अहां सुनिया, कन्ने हुण कार्यक्रम च फिर अहां विषय दी तरफ आउंदे हन। कन्ने एक श्रोता अहां सोगी जुड़ा दे हन, गल तुसां दी कार्यक्रम च स्वागत है।
1: नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्ते जी, कौन श्रोता बोला दे?
1: मैडम जी मैं सरका घाट से बोला करदा, गोपालपुर से नागेंद्र सिंह नेगी
0: जी। जी नेगी जी, बड़ा स्वागत है कार्यक्रम च, आज दे विषय पर क्या बोल गए?
1: धन्यवाद मैडम जी, बहुत अच्छा विषय है, साइकिल चलाना स्वास्थ्य खातर एक आनंददायक और एक खेल जिया
0: जी,
1: खिलौना टाइप हुंदी
0: जी जी,
1: क्योंकि बचपन बिच आहा जो आहरा बड़ी ओड हुंदी जी साइकिल दी जी, साइकिल पर स्कूल जाना, साइकिल पर मतलब सरका घाट जाना, मंडी तक जो चली जाते हैं
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि तीन दिन मतलब बसा वगैरह का बड़ी कम हुंदी जी
0: जी, जी।
1: और बहुत ज्यादा भीड़ हुंदी जी बसा बिच जी, तो साइकिल चलाना एक मैं समझदा भी ऊर्जा की खपत करने खातर, एरोबिक व्यायाम करने खातर बड़े भारी फायदे जी, जे साइकिल एक परिवहन का बहुत बढ़िया साधन
0: है।
1: तारीख भी जी युद्ध के दौरान हराम तेल महंगा होया करदा, बड़ी भारी प्रॉब्लम होया करदी, एलपीजी की समस्या होगी तेल की, खास तौर पर पेट्रोल डीजल की, साइकिल जो जरूर चलानी चाहिए, और ये बेहतरीन व्यायाम और जीवन शैली जो सुधारने खातर भी एक बहुत अच्छा तरीका
0: विकल्प जी। हाँ बिल्कुल, बड़ा बेहतर विकल्प है ना।
1: हाँ मैडम जी, इससे देखा शरीर भी मजबूत हुंदा
0: जी,
1: और सबसे बड़ी चीज जी भाई साइकिल चलाने ते आहां दे सारी मांसपेशियां भी टाइट हुंदी,
0: बिल्कुल
1: आहां दा वजन कम हुंदा
0: जी,
1: आहां दे मतलब जे कैलोरी बर्न करदे ना जी
0: जी, आहां दा
1: बहुत
0: जी बिल्कुल वजन जेड़ा सा संतुलित रहंदा है ना।
1: हाँ जी, यहाँ जंगा आहां दे पिंडलियां मांसपेशियां सब मजबूत हुंदी साइकिल चलाने ते
0: जी बिल्कुल, मतलब स्वास्थ्य दी गल करन चाहे पर्यावरण दी गल करन त साइकिल जेड़ी असे एक बेहतर विकल्प जेड़ा से आहां ताई होई सकदी है ना।
1: मैडम जी ये बीमारियां जो भी कम करदा
0: बिल्कुल,
1: कोलेस्ट्रॉल जो हरे जो कम करदा तिस जो जलांदा
0: जी,
1: जो एलडीएल जेड़ा जे खराब कोलेस्ट्रॉल तिस जो मतलब जलांदा ये मतलब कम करदा जी
0: बिल्कुल,
1: इवन साइकिल जे ऐसे मानसिक स्वास्थ्य कने मस्तिष्क की भी क्षमता जो बढ़ांदा जी, ये तनाव आ अवसाद आ चिंता ही, और राती नींदर बड़ी बड़ी आउंदी जे साइकिल जेड़े चलाने वाले लोग है
0: जी बिल्कुल, शहर
1: में जाइए तो है किसी भी चली आओ तिथी गड्डियां खड़ी करने जो पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है जी
0: जी,
1: जो भी एक साइकिल जी इसे बहुत है 8 किलोमीटर पौंदा है सरका घाट, 8 किलोमीटर 7 किलोमीटर जी ऐसे साइकिल पर जाओ, हूं तो मैडम जी पहाड़ा बिच चलाने जो एक
0: आज दे दौर च कि बच्चियां कने युवाओं जो भी यहां साइकिल चलाने ताई प्रेरित करन है ना।
1: मैडम जी इवन बोलदे रिसर्च हुई ना जी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल एक्नोलॉजी दी
0: जी,
1: तो कैंसर प्रति ने बोलिया भाई साइकिल चलाने वाले लोग जो जेड़े स्टार्टिंग हुंदी ना इस कैंसर दी
0: जैसे
1: ब्रेस्ट कैंसर है या दूजा कैंसर है जी, इस विच बड़ा भारी ये काम करदा, रक्त संचार विच बहुत बड़ा सहयोग करदा, सुधार करदा, मतलब एक साइकिल जे इसे स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्या जो समाधान कर दी, ब्लड प्रेशर जो कम कर दी, साइकिल चलाना जी पर्यावरण लिए भी बहुत अनुकूल है जी, पर्यावरण लिए भी बड़ा भारी सहयोग करता साइकिल चलाई के आदमी, तो ये संतुलन कने शारीरिक मुद्रा कने जितना भी हमारा संतुलन जेड़ा गिरने रहा या फ्रैक्चर जी है चलते चलते है रूढ़ी आंदे ना जी मांसपेशियां,
0: बिल्कुल हां जी हां जी हां जी,
1: इस विच भी एक बहुत बड़ा सहयोग करता
0: जी बिल्कुल,
1: साइकिल जो बिल्कुल सदुपयोग करना चाहिए, और बच्चों जो भी सिखाना चाहिए बच्चों जो जी चाहे मोबाइल पर या
0: बिल्कुल हां जी, दिखा हां दिखा मोबाइल कने डिजिटल दौर च भी बच्चों ताई साइकिल दा जुड़ाव जेड़ा सा कुथी ना कुथी घट होया, ता बच्चों दा रुझान जेड़ा सा भी आहे साइकिल दी तरफ थोड़ा देया करने दी जरूरत है ना जी। नागेंद्र जी कार्यक्रम च थों फोन किता कने बड़े अच्छे तरीके ने थों जानकारी कने अपने विचार साझा किते, बड़ा धन्यवाद।
1: धन्यवाद, नमस्कार जी
0: जी। दिखा बिल्कुल
2: ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਾਸਤਵ 'ਚ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਆਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਬੜੀਆ ਵਿਆਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ 'ਤੇ ਆਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਹੈ, ਆਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵੀ ਸਵੱਸਥ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਾਰਯ ਕਸ਼ਮਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਮਤਾ ਹੈ ਸੈ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਕਿ ਆਹਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਜੋ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਜ਼ਗੀ ਜੋ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣੇ 'ਚ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਸਹਾਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 'ਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ। ਕੁੰਡ ਸ਼ਰੋਤਾ ਬੋਲਾ ਦੇ। ਜੀ ਸਰੋਜ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ, ਬੜਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 'ਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਪਰ ਕਿਆ ਬੋਲ ਗਏ?
3: ਬਿਲਕੁਲ
2: ਗਰੀਬੀ
3: ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਕਿਥੇ ਮਾਸਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹਸਾ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਸਾਈਕਲ ਹੀ ਚਲਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣੇ ਪਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਭਾਜ ਤੂੰ ਸਾਈਕਲ ਪਰ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਫਿਰ 8 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਕੂਟਰ ਹੀ ਲਈ ਤੇ
2: ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਾ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਜੋ ਅਗਰ ਆਹਾਂ ਇੱਕ ਤਰਫ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਅਗਰ ਤਿਨਾ ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚਲਾਈ, ਅਗਰ ਜਿਹਾਂ ਥੋਂ ਬੋਲਾ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਤਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਤਿਨਾ ਸਾਈਕਲ ਚਲਾਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਸਥ ਤੌਰ ਪਰ ਸਹਿ ਇੱਕ ਸਵਸਥ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਵੀ ਜੀਦੇ ਹੋਣੇ।
3: ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਏ ਸਕੂਟਰ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪਰ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਟਾਈਮ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਵੀ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਕਲ ਜਾਈਏ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਕ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਚੈਟਰ ਹਵਾ ਭਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੀ।
2: ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਪਰਿਆਵਰਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾ।
3: ਹਾਂਜੀ
2: ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਤਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਸਥ ਤਾਈ ਵੀ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਵਿਕਲਪ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ,
3: ਖੜੇ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਡਰ ਨੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੱਚਾ
2: ਸਰੋਜ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਨੁਭਵ ਜਿਹੜਾ ਥਾ ਸਹਿ ਇੱਕ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਆਹਾਂ ਸੋਗੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਫਿਲਹਾਲ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਲੋਕ ਗੀਤ ਸੁਣਨੇ ਦਾ।

जी श्रोताओं, ये लोक गीत सुनिया कने हुण फिर विषय की तरफ आउंदे हन तां दिखा साइकिल एक ऐसा साधन है जिहड़ा कई सालां ते अहां दे जीवन का हिस्सा रहा। कदी सह सिर्फ आगमन का माध्यम नहीं था बल्कि लोगों की दिनचर्या जीवन शैली कने यादा ने भी बड़ी गहराई ने जुड़ी थी। स्कूलों जाना बाजारों जाना कने दोस्तों सोगी घूमना होए साइकिल हर उम्र के लोगों की साथी होंगी ही है ना। हुण अज के समय की गल करिए अज के समय च आधुनिक साधन हैं है ना, मोटर वाहन हैं, तो इन्हों की बढ़ती संख्या के कारण साइकिल का उपयोग जोड़ा है पहले की तुलना च बड़ा घट हुई है। पर पिछले कुछ सालों लोगों के बीच स्वास्थ्य कने पर्यावरण के प्रति जी जागरूकता बढ़ी हो उसने साइकिल जो एक बारी फिर चर्चा का विषय बनाई दिया। हुण विशेषज्ञां दी भी अगर अहां गल करिए तां विशेषज्ञ भी मनदे कि नियमित रूप ने साइकिल चलाना जिहड़ा है शरीर ताए एक उत्कृष्ट व्यायाम है। इस ते अहां दा दिल स्वस्थ रहिंदा, मांसपेशियां मजबूत होंदियां कने शरीर की काम करने की क्षमता जिहड़ी है सब भी बेहतर होंदी। सो अगे देखिए तो साइकिल का एक बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष जिहड़ा है अहां दे पर्यावरण ने भी जुड़िया। ये एक ऐसा परिवहन साधन है जिसते दिखा धुआं नहीं निकलता, ईंधन की जरूरत नहीं होंदी कने प्रदूषण जिहड़ा है सह नहीं फैलता। तो ऐसे समय च जाली जे वायु प्रदूषण कने जलवायु परिवर्तन पूरी दुनिया ताई चिंता का विषय बनियो, तो ऐसे च साइकिल का उपयोग पर्यावरण संरक्षण की दिशा च एक छोटा पर महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है ना। साइकिल जिहड़ा सा आर्थिक दृष्टि ने भी काफ़ी फायदेमंद है। इस ईंधन का खर्च नहीं होंदा कने रख रखाव की लागत जिहड़ी है सह भी अपेक्षाकृत घट होंदी। छोटी दूरी ताईं अगर साइकिल का उपयोग बढ़ाया जाए तो इसते समय धन कने ऊर्जा इन तीन चीज़ों की बचत हो सकती। हुण दुनिया के कई देशों भी अगर अहां दिखन तो लोग साइकिल जो सिर्फ एक साधन ही नहीं मनते बल्कि स्वस्थ कने जिम्मेदार जीवन शैली के प्रतीक के रूप च भी दिखते। तिथि अगर अहां अपने देश की गल करिए भारत च भी कई शहरों च साइकिल ट्रैक जिहड़े से विकसित किए जा दे कने लोगों साइकिल अपनाने ताई प्रेरित भी किया जाता। तो श्रोताओं अज जरूरत है इस गल्ला दी कि अहां अपने दैनिक जीवन च साइकिल ताई कुछ स्थान निकालन है ना। भले यहां रोजाना इसका उपयोग नहीं करी सकन पर फिर भी छोटी दूरी ताई या फिर हफ्ते च कुछ समय साइकिल चलाने की आदत अहां दे स्वास्थ्य कने पर्यावरण दोनों ताई लाभकारी हो सकती। तो आखिर च निष्कर्ष दे रूप च अगर अहां दिखन तो साइकिल सिर्फ एक साधन ही नहीं है बल्कि स्वस्थ जीवन पर्यावरण संरक्षण कने पुरानिया यादा ने जुड़ियो एक खूबसूरत विरासत भी है। हुण दिखा भले ही समय बदली आवे पर साइकिल का महत्व जिहड़ा है अज भी घट नहीं होया कने सहायो अपने आस पास दिखणियो मिलदाई है ना। तो अज क्योंकि विश्व साइकिल दिवस है तो फिर आइए विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर अहां जरूर ये विचार करन कि क्या साइकिल जो फ्री ते अहां अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाई सकते। तो बिल्कुल अहां अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाई सकते कने शायद ये सिर्फ एक पुरानी याद ही नहीं बल्कि एक स्वस्थ सरल कने संतुलित जीवन की तरफ बढ़ने का एक प्रभावी माध्यम भी बनी सकती जी। तो श्रोताओ हुण इन ही गल्लां बातों सोगी अज का ही कार्यक्रम हुण संपन्न करने की लैंदे अनुमति। नमस्कार, राम राम।

0: अभी आप सुन रहे थे पहाड़ी बोली में सजीव कार्यक्रम गल तुसंदी। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। शाम के 7 बजने को है, थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी समाचार रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षता सिंह। भारत और इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की बैठक आज नई दिल्ली में संपन्न हुई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियानो ने की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के समस्त पहलुओं पर समीक्षा की। दोनों पक्षों ने राजनीतिक मामलों, रक्षा, सुरक्षा, समुद्री व्यापार सहयोग, व्यापार और निवेश, औषधि निर्माण, स्वास्थ्य देखभाल, डिजिटल प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्रों तथा दोनों देशों के बीच संबंध के लोगों के जैसे मुद्दों पर बातचीत की। गृहमंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर वित्तीय लेनदेन, भवन निर्माण और संपत्तियों के क्रय विक्रय पर कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है। गृहमंत्री की अध्यक्षता में त्रिपुरा के सीमावर्ती क्षेत्रों के संबंध में हुई बैठक के दौरान ये निर्णय लिया गया। गृहमंत्री ने पिछले 5 वर्षों के भूमि अभिलेखों की जांच करने का भी निर्देश दिया। पश्चिम बंगाल की महिला बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने आज सिलीगुड़ी में एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में नगर पालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, आपदा प्रबंधन, स्वच्छता, जल निकासी, अपशिष्ट प्रबंधन, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। सुश्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को जल्द ही 5 हिमालयी शहरों के रूप में विकसित किया जाएगा। इस बीच पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बनने जा रहा है। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया है कि पोर्टल मध्य रात्रि तक खुला रहेगा। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। इस बीच आज घरेलू रसोई गैस की कीमतें में 29 रुपए प्रति सिलेंडर की वृद्धि दर्ज की गई। दिल्ली में 14 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की नई कीमत 942 रुपए है। इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जल डमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लिबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जो वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है, उसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में इटली के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना जर्मनी के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। इससे पहले कल रूस की मिरा एंड्रीवा ने माजा च्वालिंस्का को हराकर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया था। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों के दौरान देश के कई हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कारण महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में तेज बारिश हो सकती है। हालांकि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिमी राजस्थान और तटीय आंध्र प्रदेश में गर्मी का प्रकोप जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। शाम के 7:05 हुए हैं।
2: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
3: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
2: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
4: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
2: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
4: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
2: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
0: FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। शाम के 7:05 हुए हैं। अब आइए सुनते हैं देशगान।

0: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
1: फ्यूचर की टेंशन और मुझे गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
0: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
2: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
0: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
2: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
0: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।

अभी आप सुन रहे थे देशगान, FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। शाम के 7:10 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से आप सुनेंगे भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर विशेष कार्यक्रम, विषय वंचितों को वरीयता।

0: This is Akashwani. In the special series, 12 Years of the Modi Government, now we bring you an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer is Niharika Bhuvania.
1: Ye Akashwani hai. विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत आज सुनिए स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही हैं निहारिका भुवानिया।
2: नमस्कार और आपका हार्दिक स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्ण हुए भारत सरकार के 12 साल के कार्यकाल की, और इस कार्यकाल के दौरान हर उस सफलता की जिसने लगातार भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। आज की ये चर्चा स्वास्थ्य के क्षेत्र से संबंधित है, और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ आकाशवाणी स्टूडियो में उपस्थित हैं भारत की वर्तमान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल। अपनी व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय आपने हमारे लिए निकाला, हम इसके आभारी हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: और सबसे पहले बात करते हैं कि 12 साल के इस कार्यकाल के दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र में आपने किस तरह के बदलाव, किस तरह के परिवर्तन देखे, और इस दौरान स्वास्थ्य के क्षेत्र की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है?
3: देखिए, किसी भी देश के नागरिक को अगर समय से किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा मिल जाती है तो उस नागरिक की क्षमता और उसके सामर्थ्य का उपयोग राष्ट्र के निर्माण में हो सकता है। इसलिए किसी भी राष्ट्र की प्राथमिकता उसके नागरिकों का स्वास्थ्य ही होना चाहिए, और भारत आज एक बहुत बड़े विजन के साथ आगे बढ़ रहा है। आज हमने अपनी सरकार के 12 वर्ष पूरे किए हैं, लेकिन 2047 तक भारत कैसे एक विकसित राष्ट्र में तब्दील हो, ये हमारा सपना है। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो सबसे जरूरी हो जाता है एक स्वस्थ भारत। और भारत की आबादी आप जानती हैं 146 करोड़ है। 146 करोड़ नागरिकों को स्वस्थ रखना ये कोई सामान्य लक्ष्य नहीं है, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज ये हमारा संकल्प, यानी हर नागरिक को हमें एक्सेसिबल अफोर्डेबल क्वालिटी हेल्थ केयर सुनिश्चित करनी है। तो हमने अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में बहुत बड़ा बदलाव किया है, और मैं समझती हूँ कि ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमने स्वास्थ्य को आज केवल बीमारियों के उपचार तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि हमने प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में कदम बढ़ाया है। तो सबसे जरूरी कदम है कि हम बीमारियों की रोकथाम कर सकें, और इसीलिए आज अगर आप देखें तो हमारी जो सबसे प्राथमिक इकाई है एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर, उसमें आज हम जो गैर संचारी रोग हैं जैसे कि डायबिटीज है, कैंसर है, ब्लड प्रेशर है, इसकी हम जाँच कर रहे हैं ताकि समय रहते पेशेंट्स का ट्रीटमेंट प्रारंभ किया जा सके। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में हमने कई कदम उठाए हैं। आज अगर प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से मोटापे के खिलाफ अभियान चलाते हैं, या आम जनमानस को 10% तेल कम करने की अपील करते हैं, और हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय ईट राइट इंडिया के तहत कहता है कि आप स्वच्छ खाएं, पौष्टिक खाएं, संतुलित खाएं, तेल, चीनी, नमक इन सब का सेवन कम करें, तो ये सब प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की दिशा में बढ़े हुए कदम हैं। तो भारत आज इस पद्धति पर चल चुका है, और इसके साथ ही स्वास्थ्य का ढांचा प्राथमिक, सेकेंडरी और टर्शरी, ये तीनों स्तर पे हम इसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ कर रहे हैं। कैसे एक आम नागरिक की जेब पर पड़ने वाला खर्च कम हो, इसकी चिंता हमने की है, और बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं जिससे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस आज कम हुए हैं, जिसमें आज मैं जन औषधि केंद्रों की चर्चा भी करूंगी, अमृत फार्मेसी का उल्लेख भी करूंगी। आज इन केंद्रों पर जो दवाएं हैं वो बाजार मूल्य से 50-90% तक कम दामों पर देश के आम नागरिक को उपलब्ध हैं। आप एक जिला अस्पताल में जाकर देखेंगी तो राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत एक आम आदमी को निशुल्क डायलिसिस की सुविधा मिल रही है। हम आज बड़े पैमाने पर तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। ई संजीवनी के माध्यम से आज दूर दराज के गांव में बैठे हुए एक सामान्य नागरिक को एक विशेषज्ञ चिकित्सक का निशुल्क परामर्श मिल रहा है। मेडिकल ड्रोन्स जैसे जो हमारे प्रयोग हैं आज दुर्गम इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में क्रांति ला रहे हैं। तो भारत का स्वास्थ्य परिदृश्य इन 12 वर्षों में बहुत तेजी से बदल चुका है।
2: अंग्रेजी में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। शायद हम उसी राह पर चल रहे हैं, और उसी को मद्देनजर रखते हमारे ये सारे इनिशिएटिव्स जो हैं आज बखूबी काम कर रहे हैं। आयुष्मान भारत की बात करते हैं और आयुष्मान डिजिटल मिशन की अब बात करते हैं। आयुष्मान भारत जो है उसे न केवल भारत बल्कि विश्व भर का सबसे बड़ा कार्यक्रम बताया गया है, तो आपके हिसाब से इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, पहली बात, और दूसरी बात, हर वर्ग के परिवार को इस मिशन ने, इस इनिशिएटिव ने स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने की कोशिश की है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप
3: देखिए, भारत आज एक ऐसा देश है जो स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में डिजिटल टेक्नोलॉजीज का उपयोग करने में अग्रणी है और हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज का उपयोग किया है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एक ऐसी पहल है जिसके तहत हम देश के अंदर एक डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का निर्माण कर रहे हैं। तो आज मुझे कहते हो खुशी है कि भारत के हर नागरिक के लिए हम एक यूनिक डिजिटल आईडी क्रिएट कर रहे हैं जिसे हम आभा आईडी कहते हैं, और देश के अंदर आज 90 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जिनका हमने ये यूनिक आभा आईडी क्रिएट कर दिया है। ये उनकी एक डिजिटल पहचान है। और 100 करोड़ से ज़्यादा जो मेडिकल हेल्थ रिकॉर्ड्स हैं वो इन अकाउंट्स के साथ लिंकअप हो चुके हैं। अब एक आम नागरिक को इस आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से उसके जीवन में कैसे परिवर्तन आ रहा है, इसको मैं एक उदाहरण देकर समझाऊंगी। कभी भी हमें किसी डॉक्टर का परामर्श लेना है तो हम क्या करते हैं, आमतौर पे एक फाइल होती है, एक फोल्डर होता है, बहुत सारे उसमें दस्तावेज होते हैं, बहुत सारे कागजात होते हैं, हमारे लैब रिपोर्ट्स होती हैं, ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं, हमारे तमाम प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं, और वो समय के साथ फोल्डर मोटा होता है।

0: अस्पताल में किसी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाए, वो सिर्फ डॉक्टर को अपनी सहमति प्रदान करेगा। डॉक्टर उसके अकाउंट से उसके जितने रिकॉर्ड्स हैं, उसके प्रिस्क्रिप्शंस, दवाएं, सब कुछ उसको एक्सेस करेगा। उसके आधार पे पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री को समझेगा और पेशेंट को अपना परामर्श दे सकता है। ई संजीवनी का जो नेशनल टेलीमेडिसिन प्लेटफॉर्म है, उसमें भी एक सामान्य गांव में बैठा हुआ व्यक्ति जिस डॉक्टर से बैठकर कंप्यूटर की स्क्रीन पर परामर्श कर रहा है, वो भी उस डॉक्टर को बताएगा कि ये मेरा आभा आईडी है, उसे अपनी कंसेंट देगा, अपनी सहमति देगा और डॉक्टर के सामने उस पेशेंट के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स आ जाएंगे। तो इससे लोगों को बहुत बड़ी सहूलियत हुई है, सुविधा हुई है। और आज हमने जो ओपीडी है उसे भी क्यूआर कोड बेस्ड बना दिया है। यानी बड़े बड़े अस्पतालों में अगर आपको ओपीडी सर्विसेज लेनी है तो क्या होता था कि लोगों को लंबी लंबी कतारों में घंटे खड़ा होना पड़ता था। आज ये करने की जरूरत नहीं है, आपको स्कैन एंड शेयर की एक सुविधा दे दी गई है। आप क्यूआर कोड स्कैन करिए, सेकेंड्स में आपका जो टोकन नंबर होगा वो जेनरेट हो जाएगा और आप आसानी से डॉक्टर का परामर्श ले सकते हैं। तो ये आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत हम नागरिकों के रिकॉर्ड्स तो बना ही रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जितने हॉस्पिटल्स हैं, फार्मेसीज हैं, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, उनकी भी रजिस्ट्री हम तैयार कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम बन रहा है जिसमें आम नागरिक के लिए और यहाँ तक कि हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डर्स के लिए ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट और सुविधाजनक और टाइम सेविंग होने जा रहा है।
1: यानी कि अब कोई भी मेडिकल रिकॉर्ड का खो जाना नामुमकिन हो गया है और जमीनी स्तर तक स्वास्थ्य सेवा हर तरीके से पहुंच पा रही है, परिपूर्ण हो पा रही है।
0: बिल्कुल।
1: और इसमें मेरा ख्याल है एआई की बहुत बड़ी भूमिका रहने वाली है आगे आने वाले समय में। तो एआई और हेल्थ केयर का आज के टाइम में, आज के दौर में क्या रोल है?
0: देखिए, आजकल हम हर जगह एक शब्द सुनते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और सामान्य व्यक्ति सोचता है कि क्या है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी चर्चा हर जगह हो रही है। अभी कुछ समय पहले फरवरी में हमने देखा, हमारे देश ने एक बहुत बड़ा एआई इंडिया इंपैक्ट समिट किया और दुनिया के तमाम देशों से लोग आए, बहुत सारे प्रतिभागी आए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग आज हर क्षेत्र में हो रहा है, एग्रीकल्चर से लेकर हेल्थ केयर से लेकर एजुकेशन से लेकर, हर जगह हो रहा है। लेकिन हेल्थ केयर में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है और भारत जैसे देश में। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हमारे देश की आबादी 146 करोड़ है और इतनी बड़ी आबादी में हमें ये भी देखना है कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे दुर्गम आदिवासी दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पहुँचने में बहुत कठिनाई है, जहाँ शायद हमारे पास हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है या हमारे पास स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स या अन्य जो हमारा मेडिकल स्टाफ होता है उसकी शॉर्टेज है। और इसके साथ हमारे पास एक दोहरा भार है, यानी हमारे पास एक तरफ डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोग जैसी तमाम गैर संचारी बीमारियां भी हैं जो बहुत तेजी से बढ़ रही हैं और दूसरी तरफ टीबी, मलेरिया, इस तरीके के रोग भी हैं। इन सारी चुनौतियों के बीच में अगर हम कहते हैं कि हमने तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य तय कर दिया, यानी देश के हर एक नागरिक के पास किफायती गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा की पहुंच होनी चाहिए, तो उसमें टेक्नोलॉजी की एक बहुत बड़ी भूमिका हो जाती है। और टेक्नोलॉजी में हमने बहुत सारे डिजिटल टूल्स यूज़ किए, जैसे हमने कोविड पैंडेमिक आया तो हमने कोविन का ऐप बना दिया, या आज हम बच्चों का टीकाकरण करते हैं तो यूविन पोर्टल है हमारा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी हम उपयोग आज कर रहे हैं। तो हेल्थ का जो पूरा कॉन्टिन्यूम है, यानी आज बीमारियों की निगरानी करने से लेकर डिजीजेस के डिटेक्शन से लेकर ट्रीटमेंट तक, क्योर तक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग हो रहा है।
1: सर्जरीज में भी इसकी काफी
0: बिल्कुल
1: उपलब्धि है
0: और डॉक्टर्स को ये काफी हद तक मदद कर रहा है। बहुत सारी ऐसी मेडिकल इमेजेस होती हैं, बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट्स होते हैं जिनको एनालाइज करने में एआई टूल्स का उपयोग किया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण दूंगी, अभी हमने सघन टीबी अभियान चलाया अपने देश के अंदर, 2024 में हमने दिसंबर अंत में शुरू किया स्क्रीनिंग बड़े पैमाने पर देश के अंदर की। उसमें हमने एआई ड्रिवन हैंड हेल्ड एक्सरेस का उपयोग किया। उसका लाभ हमें ये हुआ कि ऐसे बहुत सारे केसेस जो शायद समाज में छिपे रह जाते कि जिनके शरीर में टीबी का बैक्टीरिया है लेकिन लक्षण नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, हमने बड़े पैमाने पर ऐसे केसेस की पहचान की। तो AI सपोर्टेड, AI ड्रिवन हैंडहेल्ड एक्सरे डिवाइसेस का आज हम उपयोग कर रहे हैं जिससे बड़ी तेजी से हम मरीजों की स्क्रीनिंग कर पा रहे हैं। इसी प्रकार जो हमारा नेशनल टेलीमेडिसिन नेटवर्क है ई संजीवनी, अब ई संजीवनी पे आप समझिए कि एक मरीज डॉक्टर से वर्चुअल परामर्श कर रहा है। अब अगर डॉक्टर ऐसे तमाम पेशेंट से हर

0: एक पेशेंट से बैठकर पूछेगा कि आप अपने ये सिम्टम बताओ, ये बताओ, तो ये एक रेपिटेटिव एक्सरसाइज होगी, डॉक्टर को भी कठिनाई होगी। अब यहाँ पे एआई कैसे मदद करता है कि एआई टूल्स के माध्यम से एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो हमने कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बैठाया है, उसके पास कोई रोगी आता है, वो उसका एक स्टैंडर्डाइज पेशेंट फॉर्म भरवा देता है, पेशेंट के सारे लक्षण उसमें कैद हो जाते हैं। एआई टूल्स की मदद से पेशेंट की एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस निकल के आ जाती है, पेशेंट को किस स्पेशलिस्ट को रेफर करना है इसके रिकमेंडेशंस आ जाते हैं। तो अगर एक सीएचओ को ये तय करना है कि इस समय हमारे पास 4-5 स्पेशलिस्ट मुझे नजर आ रहे हैं लाइव, तो क्या एआई की रिकमेंडेशन आती है कि पेशेंट को के लक्षण के आधार पे इस स्पेशलिस्ट से कनेक्ट किया जाए, तो पेशेंट को तुरंत कनेक्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पे डॉक्टर का समय बचता है, मरीज का समय बचता है, और हमारा सिस्टम ज्यादा एफिशिएंट होता है, ज्यादा लोगों को केटर कर पाता है। तो इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आज बहुत तेजी से उपयोग देश में हो रहा है, और जिम्मेदारी के साथ हो रहा है, एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके हो रहा है, अकाउंटेबिलिटी के साथ हो रहा है, जवाबदेही के साथ हो रहा है।
1: यानी एआई के माध्यम से आपके पास समय के बचत के अलावा सही गाइडेंस, अप्रोप्रिएट गाइडेंस भी मौजूद है, जो कि हेल्थ केयर के मिशन को और आगे लेकर जा रही है।
0: बिल्कुल
1: आज जो है भारत में 1,70,000 से ज़्यादा आरोग्य मंदिर मौजूद हैं, ज़मीनी स्तर पर ये क्या बदलाव ला रहे हैं?
0: अब इनकी संख्या बढ़ गई है, 1,82,000 से ज्यादा आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैं, और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा को कैसे बदल कर रखा जाता है, ये कोई हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के मॉडल को देखकर समझ सकता है। एक समय था कि हमारे देश में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो थे, यहाँ पे केवल मातृ और शिशु स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं मिलती थी, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। आज हमने ये तय किया कि बड़े अस्पतालों पर हमें भीड़ कैसे कम करनी है, और एक सामान्य नागरिक को उसके घर के नजदीक ही तमाम जरूरी सेवाएं कैसे देनी है, तो इसके लिए हमारे पास एक फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, हमारा आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जहां पे आज हम 12 सर्विसेज का पैकेज दे रहे हैं। यानी आज व्यक्ति को अगर ईएनटी की जांच चाहिए तो वो भी वहां मिलेगी प्रारंभिक, उसको मौखिक जांच ओरल केयर के लिए चाहिए तो वहां मिलेगी, उसको न्यूट्रिशन वेलनेस की काउंसलिंग चाहिए, पोषण के संबंधित गाइडेंस चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, फर्स्ट लेवल इमरजेंसी ट्रॉमा केयर चाहिए तो वो भी वहां मिलेगा, मेंटल हेल्थ को लेकर जो प्रारंभिक एक स्क्रीनिंग होती है उसकी सुविधा भी वहां मिलेगी, और एनसीडी की स्क्रीनिंग जो आपको मैंने बताया कि आज आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे 30 वर्ष की उम्र से अधिक हर व्यक्ति की निशुल्क जांच हो रही है कैंसर, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज के लिए, तो ये सारी 12 सर्विसेज आज उसे मिल रही हैं। तो एक आम व्यक्ति को छोटी छोटी बीमारियों के लिए किसी बड़े अस्पताल नहीं जाना पड़ता, और बड़े अस्पतालों पर भी बोझ कम होता है, और सुनकर आप खुश होंगे कि 540 करोड़ से ज्यादा जो फुटफॉल है वो हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर हो चुका है। यानी लोगों का अब भरोसा भी बढ़ रहा है कि घर के नजदीक इतनी सारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हैं, तो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आयुष्मान आरोग्य मंदिर ला रहे हैं।
1: जब स्वास्थ्य की बात आती है तो शायद शुल्क जो है वो एक तनाव का कारण बन जाता है, लेकिन आज मेरे हिसाब से आरोग्य मंदिर उस तनाव को कम करने में भी काफी सक्षम और सफल हो रहे हैं।
0: बिल्कुल, हमारी सरकार जब आई तो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस को कैसे कम किया जाए, देश के अंदर आम नागरिक के स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्च होता है, जो उसकी जेब से होने वाला खर्च है,
1: जी
0: वो जीडीपी का 64% हुआ करता था। हमने उस पर धीरे धीरे काम करना शुरू किया, सरकार के खर्च को बढ़ाया, आज स्वास्थ्य के ऊपर सरकार का जो खर्च है बजट का 1,06,000 करोड़ से ज्यादा पहुंच गया है, और बहुत सारी योजनाएं हैं जिसमें मैंने आपको बताया जन औषधि केंद्र से लेकर आयुष्मान आरोग्य मंदिर से लेकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से लेकर तमाम ऐसे प्रयास हैं जिनके कारण ये जो 64% हुआ करता था आज घटकर 39% पर आ गया है। तो बहुत बड़ी राहत जनता को उसके जेब से होने वाले खर्च पर मिली है।
1: पिछले कुछ उत्तरों में बात करते वक्त आपने टीबी और कोविड-19 का भी जिक्र किया, तो आज टीबी के केसेस को कम करने में और मृत्यु दर कम करने में हम कितने सफल रहे हैं, और क्या इस क्षेत्र में ऐसी कोई चुनौती है जो अभी भी हमारे सामने खड़ी हो?
0: देखिए, टीबी के संबंध में मैं जानकारी के लिए थोड़ा सा ये भी कहना चाहूंगी, टीबी एक ऐसी बीमारी है जिसका बैक्टीरिया हवा से फैलता है, एयरबॉर्न है, यानी कोई भी व्यक्ति यदि

0: संक्रमित है टीबी के बैक्टीरिया से, तो उसके बातचीत करने से, खांसने से, छींकने से, बोलने से ये जो बैक्टीरिया होता है ये ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में हवा में प्रवेश कर जाता है, और दूसरा कोई भी व्यक्ति यदि उसे इनहेल कर रहे तो वो बैक्टीरिया उसके शरीर में पहुंच जाता है।
1: जी
0: तो टीबी में सबसे बड़ा संकट ये है कि ये एयरबॉर्न है, हवा से फैलता है, और भारत देश की आबादी बहुत ज़्यादा है, सघन है, ऐसे में टीबी मुक्त भारत एक बहुत कठिन संकल्प है। लेकिन सरकार ने ये तय किया है कि हम टीबी की रोकथाम से लेकर, टीबी की जांच से लेकर, टीबी के उपचार तक हर काम करेंगे, और इसके लिए लगातार हम सघन अभियान भी चला रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में हम जागरूकता फैला रहे हैं, उनकी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और जांच के जरिए बहुत सारे जो एसिम्प्टोमैटिक केसेस हैं, जो सिम्प्टोमैटिक हैं उनके साथ साथ जो बिना लक्षण वाले हैं, लक्षण वाले दोनों की पहचान भी हो रही है। टीबी की जांच के लिए हमने अपनी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़ को भी अब स्ट्रेंथन किया है, सुदृढ़ किया है। राज्यों को हम टीबी की स्क्रीनिंग के लिए जो तमाम डिवाइसेस की, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है वो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं, और इसके साथ साथ टीबी में जो उपचार के लिए दवाओं की ज़रूरत है वो भी आज तमाम हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहाँ पर उपलब्ध है। दवा के साथ साथ, जांच के साथ साथ एक ज़रूरी पक्ष ये भी है कि टीबी के रोगी में पोषण का अभाव होता है, इसलिए सरकार ने हर टीबी के मरीज को 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने की भी प्रक्रिया प्रारंभ की है उसके पोषण के लिए, और इसके अतिरिक्त बहुत सारे हमारे जन भागीदारी के माध्यम से निक्षय मित्र बन रहे हैं जो टीबी के रोगियों को गोद ले रहे हैं और उन्हें जो पोषण पोटली है वो निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। हमने टीबी पेशेंट्स के साथ साथ दायरा बढ़ाकर जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं, जैसे उनके परिवारजन या उनके साथ रोज काम करने वाले लोग, जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं उनको भी अब प्रिवेंटिव टीबी ट्रीटमेंट देना शुरू किया है। उन्हें भी हम न्यूट्रिशन बास्केट दे रहे हैं कि उनमें कहीं पोषण की कमी के कारण उन्हें ये टीबी का बैक्टीरिया ग्रसित ना कर ले। और चुनौती की जब आप बात करते हैं तो मैं समझती हूँ कि बहुत बड़ी चुनौती अभी भी सोशल स्टिग्मा है, क्योंकि टीबी के बारे में लोग आज बात करने से या किसी को हो जाता है तो एक झिझक रहती है। तो मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से आमजन को यह भी अपील करना चाहूंगी कि टीबी एक ऐसा रोग है जिसको हराया जा सकता है, जिसका उपचार संभव है, और बहुत सारे ऐसे आज टीबी चैंपियंस हैं, टीबी विजेता हैं, जो हमारे तमाम कार्यक्रमों के मंच पे आके लोगों को बता रहे हैं कि कैसे वो टीबी से लड़कर जीते हैं। सरकार की तरफ से हर किस्म का सहयोग, पोषण से लेकर दवा से लेकर जांच तक सब कुछ निशुल्क उपलब्ध है। तो यदि किसी भी प्रकार की आपको शंका है तो आप जांच जरूर कराएं और उपचार का लाभ उठाएं।
1: बहुत खूब। और इसी के साथ साथ कोविड-19 की भी चर्चा करते हैं। कोविड-19 एक ऐसी महामारी थी जिसने दुनिया की काया बिल्कुल बदल दी, और उसी वक्त भारत ने अपने बुनियादी ढांचों को, खासकर हेल्थ केयर के क्षेत्र में, काफ़ी मजबूत किया था। उस वक्त हमने क्या कदम उठाए थे जो आज भी हमारा साथ दे रहे हैं और जो आज भी हमें इस राह पर, हमें अपने हेल्थ केयर गोल्स को अचीव करने में मदद कर रहे हैं?
0: देखिए, कोविड-19 पैंडेमिक पूरे दुनिया के लिए एक शॉक था और पूरी दुनिया के लिए एक अहम सबक भी लेकर आया कि हमें अब अपने सिस्टम्स को, जहाँ तक स्वास्थ्य की बात है, उन्हें रेजिलिएंट बनाने की ज़रूरत है।
1: जी
0: यानी भविष्य की किसी भी ऐसी महामारी से, आपदा से निपटने के लिए हमारे हेल्थ केयर सिस्टम्स तैयार हों। तो भारत ने ये तय किया कि हमारे जो हेल्थ केयर सिस्टम जिला स्तर पे हैं या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी लेवल पे कहीं भी जो कमियां हैं, जो गैप्स हैं, हम उनको फिक्सअप करेंगे, और इसके लिए हमने शुरुआत की नीचे से, यानी हमारे ब्लॉक लेवल पे, जिला स्तर पे जो हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं उनको सुदृढ़ करते हुए हमने उसमें क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स बनाए। ये 64,000 करोड़ का पूरा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन हम लेके आए, और इसके तहत क्रिटिकल केयर ब्लॉक्स हमने इसलिए बनाए कि कोई भी गंभीर रोगी है तो उसे तुरंत उसके ज़िले में ही ये सुविधा मिल सके इलाज
1: जी
0: की। इसी प्रकार इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी सेटअप किए ताकि जांच की जो सुविधा, जिसके लिए लोग परेशान हुए कोविड के दौरान, भविष्य में ऐसी कोई परिस्थितियां ना हो, जितने भी जांच होनी है, डायग्नोस्टिक टेस्ट होने हैं, वो सुविधा जिले में मौजूद हो।
1: मौजूद हो
0: इसके साथ ही बीमारियों की निगरानी करना जरूरी है, तो डिजीज के सर्वेलेंस सिस्टम्स को भी हमने सुदृढ़ किया, और एक बहुत बड़ी तैयारी हमारी वन हेल्थ मिशन के रूप में है, जहां हम ये मानते हैं कि मानव का स्वास्थ्य हो, पर्यावरण का स्वास्थ्य हो, पशु पक्षियों का स्वास्थ्य हो,

0: ये सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। तो बहुत सारे अलग अलग मंत्रालय हैं जो एक साथ जुड़कर काम कर रहे हैं ताकि हम पूरी तरीके से ये जो हमारा इकोसिस्टम है इसको मजबूत रख सकें और आने वाले किसी भी खतरे से निपटने के लिए हम तैयार हों।
1: जब COVID-19 की शंकाएं उठ रही थी, मेरा ख्याल है तभी हम पूरी तरह से तैयार थे, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत था कि हम उस आपदा से लड़ पाए और उससे बाहर निकल पाए।
0: देखिए, निश्चित रूप से COVID-19 के दौरान भारत ने न केवल अपने नागरिकों का ख्याल रखा बल्कि दुनिया की भी चिंता की।
1: जी,
0: ऐसे कठिन समय में हमने अपने दो स्वदेशी वैक्सीन बनाकर तैयार किए, हमने अपने करोड़ों नागरिकों को डबल डोज दिया, बूस्टर डोज दिया, 220 करोड़ टीकाकरण, ये आसान बात नहीं है, आसान लक्ष्य नहीं है।
1: जी।
0: और यहाँ तक कि जब दुनिया के तमाम विकसित देश भी इसका डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं दे पाए तो कोरोना वैक्सीनेशन का हमने अपने नागरिकों को डिजिटल सर्टिफिकेट भी दिया। और इसके साथ ही साथ वैक्सीन मैत्री की जो हमारी पहल थी, 100 से अधिक देशों के नागरिकों को भी हमने जरूरी जो दवाएं थी या इक्विपमेंट्स थे या टीके थे, ये हमने तमाम देशों के नागरिकों को भी पहुंचाए। तो भारत एक ऐसा देश है जो अपने साथ साथ वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के तहत दुनिया की चिंता करता है, और इसका एक बहुत ही उत्तम उदाहरण हमने कोविड जैसी महामारी बहुत बड़े संकट के बीच में प्रस्तुत किया।
1: भारत को दुनिया की फार्मेसी के तौर पर भी जाना जाता है, और क्यों ना हो, आयुर्वेद की भूमि है। तो उस संदर्भ में, उस विषय में आज भारत की वैश्विक स्थिति कैसे मजबूत हो रही है?
0: देखिए, जहां तक फार्मा क्षेत्र की बात है तो भारत अगर हम वॉल्यूम के टर्म्स में देखें तो हम तीसरे नंबर पे हैं, लेकिन अगर वैल्यू टर्म्स में देखें तो हम 14वें नंबर पे हैं। और दुनिया में भारत की एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है कि हम अफोर्डेबल जेनेरिक मेडिसिन्स जो हैं वो 200 से अधिक देशों को सप्लाई करते आए हैं। US हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो, तमाम देशों में हमारी जेनेरिक दवाइयाँ पहुँचती हैं जिनकी क्वालिटी भी बेहतरीन है और दाम भी बहुत कम है। इसके साथ ही WHO की 70% जो वैक्सीन की मांग है उसकी आपूर्ति भी भारत का फार्मा सेक्टर करता है। ये हमारे लिए गौरव की बात है, लेकिन इसके साथ ही हम आगे की जो नेक्स्ट फेज ऑफ फार्मास्यूटिकल लीडरशिप है उसके बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आज दुनिया में, जैसे मैंने बताया कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं, डायबिटीज है, कैंसर है या ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, आज बीमारियों का पैटर्न बदल रहा है। NCDs का बर्डन दुनिया के तमाम देशों पे बहुत बड़ा बर्डन है। तो केवल जेनेरिक दवाओं में जो हमारी लीडरशिप है, अब हमें उस तक ही सीमित नहीं रहना है, हमें अपनी क्षमताओं को बढ़ाना है, क्योंकि आने वाले समय में दुनिया के अंदर अगर हम 2031 तक बात करें तो जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होंगे उसमें 60% जेनेरिक की मांग हो सकती है, लेकिन 40% जो मांग होगी वो बायोलॉजिक्स की होगी, बायोसिमिलर्स की होगी। तो अब हमें स्मॉल मॉलिक्यूल ड्रग से लार्ज मॉलिक्यूल इनोवेशंस की तरफ बढ़ना है, यानी जो हमारे वॉल्यूम लेड जेनेरिक्स हैं उनसे आगे बढ़ के अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हुए हमें जो वैल्यू लेड बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स हैं उसको बनाने का काम करना है। और इस दिशा में भारत सरकार ने 10,000 करोड़ के बायोफार्मा शक्ति मिशन की घोषणा की बजट में, और उसके तहत आज फार्मा सेक्टर में हमारी जो कंपनीज हैं वो कैसे जेनेरिक से आगे बढ़कर बायोलॉजिक्स और बायोसिमिलर्स, ये जो नए इनोवेशन ड्रग्स हैं, इसका जो एक नया मार्केट उभर रहा है और इसकी जो मांग बढ़ रही है, इस दिशा में आगे बढ़ें, ऐसा प्रोत्साहन हम दे रहे हैं।
1: चर्चा तो और भी की जा सकती है, लेकिन अब समय इजाजत नहीं दे रहा, तो जाते जाते आपसे बस एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाहूंगी कि 2030 तक हेल्थ केयर के एरिया में ऐसे कौन से गोल्स हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं, और आखिर में भारत के नागरिकों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगी?
0: देखिए, भारत तेजी से काम कर रहा है, TB मुक्त भारत बनाना है। मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। हमारे अगर आप देखिए तो वैश्विक स्तर पे जो मैटर्नल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, या जो इन्फेंट मोर्टैलिटी, अंडर 5 मोर्टैलिटी या नियोनेटल मोर्टैलिटी में गिरावट आई है, उससे कहीं ज़्यादा तेज़ गिरावट भारत के अंदर है। तो हमें मातृ और शिशु स्वास्थ्य पे और बेहतर काम करना है। इसके साथ ही नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का जो बर्डन है, गैर संचारी रोगों का, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई अभी भी तेज़ी से चल रही है, और आगे की भविष्य की चिंताओं को ध्यान में रखते हुए वन हेल्थ मिशन और इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर के मॉडल्स को भारत एक्सप्लोर कर रहा है। 2030 तक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें हम प्राप्त करें, इसमें हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और जितने भी श्रोता आज हमें सुन रहे हैं उन सभी को मैं कहूंगी कि भारत सरकार को जो प्रयास करना है, राज्य सरकारों को जो प्रयास करना है, हम पूरी तरह कर रहे हैं, लेकिन हर नागरिक को माय हेल्थ माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने स्वास्थ्य को अपनी जिम्मेदारी बनाना है। और इसके लिए ज़रूरी है साफ सफाई स्वच्छता का ध्यान रखें, हमारी हवा साफ हो, हमारा पानी साफ हो, हम संतुलित आहार लें, पौष्टिक आहार लें, मौसमी आहार लें, तेल नमक चीनी का सेवन कम रहें, और इसके साथ ही किसी भी प्रकार के नशे के पदार्थ से, नशे के सेवन से अपने आप को, तंबाकू हो, सिगरेट हो, पान बीड़ी मसाला शराब, इन सब से हम दूर रहें। योग व्यायाम किसी भी प्रकार के खेल कूद को अपने जीवन का अंग बनाएं, और सबसे बड़ी बात कि हम नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य की जांच करवाएं। मुझे लगता है कि सभी नागरिक यदि इस प्रकार के जीवन शैली का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से स्वस्थ भारत और स्वस्थ भारत के माध्यम से विकसित भारत एट 2047 का सपना जरूर पूरा होगा।
1: आज के दिन हमारे जीवन में योग एक अहम भूमिका निभा रहा है, और जैसा आपने बताया आरोग्य मंदिरों में भी योगा की शिक्षा प्रदान की जा रही है, तो योग के माध्यम से इंटरनेशनल योगा डे के रिलेशन में आप हमारी ऑडियंस को, आप हमारे श्रोताओं और से क्या कहना चाहेंगे?
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अब बहुत निकट है, 21 जून को देश में करोड़ों लोगों को हम योग करते हुए देखेंगे, और मुझे गर्व होता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने योग को एक बार पुनर्जीवित किया है। न केवल देश में बल्कि दुनिया के तमाम देशों के नागरिक आज योग के फैन हो चुके हैं। मैंने भी कई देशों की यात्रा की है और हर जगह मैंने देखा है कि योग को लेकर लोगों का एक ज़बरदस्त क्रेज है, और हमारे देश के सभी नागरिकों से मैं यही कहना चाहूँगी कि योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, क्योंकि बीमारियों से मुक्त रहना है, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, इसके साथ साथ अगर हम मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें तो ज़रूरी है कि योग का हम पालन करें, क्योंकि योग हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूप से स्वस्थ रहता है। बहुत सारे तनाव जो आजकल के दौड़ते भागते जीवन में हैं उनसे हमें मुक्त रखता है, और मैं समझती हूँ कि पूरी तरीके से योग हमें एक शांतिपूर्ण जीवन चाहिए, और जीवन के लिए एक जो ऊर्जा चाहिए वो हमें योग के माध्यम से मिल सकती है। तो अधिक से अधिक लोग योग करें, और योग आपको निरोग भी रखेगा, आपको ऊर्जावान रखेगा, आपको स्वस्थ रखेगा।
1: स्वस्थ रहने का सबसे आसान तरीका है योग करना, और साथ ही साथ पौष्टिक आहार,
0: बिना खर्च का तरीका है योग।
1: व्यायाम और पौष्टिक आहार हमारी ज़रूर मदद कर सकता है स्वस्थ रहने में और खुश रहने में, और पहले स्वास्थ्य फिर कुछ और। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रिया जी, आज हमारे साथ अपना वक्त बिताने के लिए और हमें इतनी सारी बातें बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे श्रोताओं और दर्शकों का शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। फिलहाल हम लेंगे आपसे इजाज़त और मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया।
2: इन द स्पेशल सीरीज 12 इयर्स ऑफ द मोदी गवर्नमेंट, you were listening to an exclusive interview with Anupriya Patel, Union Minister of State for Health and Family Welfare, on health sector reforms and achievements. The interviewer was Niharika Bhuvania. This program was produced and presented by the New Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on EIR. This program is also available on our YouTube channel, News on EIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsdtalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
3: विशेष श्रृंखला मोदी सरकार के 12 साल के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार और उपलब्धियों पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रही थी निहारिका भुवानिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

FM बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। शाम के 7:43 हुए हैं। थोड़ी ही देर में अगला प्रसारण आप सुनेंगे आकाशवाणी के शिमला केंद्र से। 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से रिले करेंगे।

0: आइए हम सब मिलकर नशे के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करें और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं नशा मुक्त प्रदेश के निर्माण का संकल्प लें।
1: सुनो सुनाओ यही संदेश, नशा मुक्त हो अपना प्रदेश। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पाराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, राज्य सरकार 65 से 70 आयु वर्ग के पेंशन भोगियों का लंबित एरियर अगले महीने करेगी जारी। मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन स्थगन संबंधी अधिसूचना भी सरकार ने ली वापिस। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ढली नारकंडा रामपुर सड़क को 4 लेन में किया जा रहा है विकसित, सर्वेक्षण कार्य पूरा। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रदेश के लोगों से की बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील, खजियार में मतदाताओं से किया संवाद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने विश्व खाद्य दिवस पर लोगों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने का किया आग्रह। और अटल टनल रोहतांग में पिछले कुछ दिनों में बड़ी पर्यटकों की आवाजाही, लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने यातायात दबाव को देखते हुए तैयार की कार्य योजना। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार 65 से 70 आयु वर्ग के सभी पेंशन भोगियों का लंबित एरियर अगले महीने जारी करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में वित्त विभाग की बैठक में इस संबंध में अधिकारियों को निर्देश जारी किए। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन स्थगन संबंधी अधिसूचना को वापिस लेने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को छोड़कर अन्य सभी को अगले महीने के पूरे वेतन के साथ स्थगित वेतन का बकाया जारी किया जाएगा।
1: चीफ सेक्रेटरी है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी है, डिप्टी कमिश्नर्स हैं और जो MLA हैं और जो मिनिस्टर्स हैं, उनकी जो डेफर की गई थी सैलरी को, उस डेफरमेंट की जो नोटिफिकेशन हुई थी उसको मैंने विड्रॉ कर दिया। अगले महीने से उनकी डेफरमेंट सैलरी जो 3 महीने का एरियर होगा वो भी मिलेगा और जुलाई में उनको पूरी सैलरी भी मिलेगी, एक्सेप्ट चीफ मिनिस्टर को छोड़कर। मैं एक और खुशखबरी देना चाहता हूँ कि जो 65 साल से 1/16/31/2022 के थे, उनका जो भी एरियर है वो 65 से 70 साल के बीच में, वो भी अगले महीने हम उसको रिलीज कर देंगे।
0: मुख्यमंत्री ने HRTC के पेंशनरों को हर महीने की 7 से 10 तारीख के बीच पेंशन देने का ऐलान भी किया। उन्होंने कहा कि पथ परिवहन निगम को सरकार की ओर से हर महीने 20 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने HRTC के लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों के निपटारे के लिए 20 करोड़ रुपए जारी करने की भी घोषणा की।
1: तो सरकार ने ये फैसला किया है कि 7 से 10 तारीख के बीच में HRTC की जो पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन मिल जाया करेगी और वो पेंशन के लिए उनका डिपार्टमेंट जो है HRTC जो है उसको हम 20 करोड़ रुपए की ग्रांट देंगे। HRTC के पेंशनर्स की टोटल पेंशनर का खर्चा 23 करोड़ है, 3 करोड़ HRTC जो अपना रेवेन्यू होता है उससे दिया करेगी, ये हमने उसको कहा है। तो उनकी एक और मेडिकल रिवर्समेंट की बात थी, तो 20 करोड़ रुपया मैं मेडिकल रिवर्समेंट के लिए उनको दे रहा हूं ताकि उनका पूरा मेडिकल रिवर्समेंट हो जाए।
0: इस बीच मुख्यमंत्री ने कहा है कि ढली नारकंडा रामपुर सड़क को 4 लेन में विकसित किया जा रहा है और इसका सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने आज शिमला जिले के हाटू माता मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पत्रकारों से बातचीत में बताया कि 4 लेन परियोजना में सुरंग निर्माण को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि भूस्खलन से होने वाली क्षति को कम किया जा सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार हाटू माता रोपवे परियोजना के निर्माण की दिशा में कार्य कर रही है और नाबार्ड की सहायता से ये परियोजना चलाई जाएगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हाटू माता सड़क के सुधार कार्यों के लिए धनराशि मंजूर की गई है और इस कार्य में पेड़ों को कटान से बचाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने निर्विरोध चुनी गई नगर पंचायत नारकंडा को 50 लाख रुपये देने की भी घोषणा की। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और यहां मतदाताओं की संख्या 100 करोड़ से अधिक है। उन्होंने आज चंबा जिले के खजियार में बूथ स्तर के अधिकारियों, पर्यवेक्षकों और मतदाताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान मतदाताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त से मतदान को लेकर अनेक सवाल पूछे। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि देश में 12 लाख मतदान केंद्रों पर काम करने वाले बूथ स्तर के अधिकारी चुनाव आयोग के धरातल पर काम करने वाले अधिकारी हैं। उन्होंने मतदाताओं से अपने जीवन में प्रत्येक चुनाव में मतदान करने की अपील की। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि चंबा जिले के मतदाता भविष्य में होने वाले चुनावों में 90% से अधिक मतदान प्रतिशत सुनिश्चित करें।
2: इतना बड़ा लोकतंत्र है आपका देश भारत। जिस चुनाव आयोग ने, अधिकारियों ने, हमारे कलेक्टर साहिबान लोगों ने ये आपका प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है ना, दुनिया की सबसे बड़ी सरकार कौन सी? भारत की सरकार। 65 लाख लोग काम करते हैं।
0: आज विश्व खाद्य दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने स्वस्थ भविष्य के लिए सुरक्षित और स्वच्छ भोजन के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने नागरिकों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने और स्वस्थ व आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का आग्रह किया। जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस संदेश को भी दोहराया जिसमें उन्होंने बेहतर स्वास्थ्य और एक मजबूत राष्ट्र के लिए खाद्य तेल का इस्तेमाल 10% कम करने व संतुलित आहार अपनाने की बात कही थी। इस वर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का विषय है समस्या से समाधान तक, हर जगह सुरक्षित भोजन। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने आज शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की अमर कृति रशिम रथी के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित 2 दिवसीय रशिम रथी पर्व के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि रामधारी सिंह दिनकर एक महान कवि थे और उनके समानता व देशभक्ति के आदर्शों को अपनाना ही उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। राज्यपाल ने विश्वास व्यक्त किया कि युवा पीढ़ी दिनकर की रचनाओं में निहित शाश्वत मूल्यों को आत्मसात कर देश के उज्ज्वल भविष्य की ध्वजवाहक बनेगी। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे इस मौके पर विशेष रूप से मौजूद रहे। प्रदेश विश्वविद्यालय

0: शिमला में आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में संगठन से जुड़े वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने हमेशा व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है।
1: छात्र संगठन के रूप में विद्यार्थी परिषद एकमात्र ऐसा संगठन है जो राजनीतिक दृष्टि से नहीं, सामाजिक पहलू पर भी, रचनात्मक पहलू पर हर तरह से काम करता है। ओवरऑल एक छात्र का कैसे डेवलपमेंट हो, उसकी सहभागिता समाज के हर वर्ग में किस प्रकार से हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़कर के काम करे, विद्यार्थी परिषद से खासतौर से पूरे देश के लोगों को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं कि देश के लिए राष्ट्र सर्वोपरि संस्कार और संस्कृति के साथ काम करने के लिए अगर कोई छात्र संगठन है तो विद्यार्थी।
0: इस बीच जयराम ठाकुर ने शिमला के विकास नगर में सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित मेधावी छात्र सम्मान वर्ग कार्यक्रम में भी भाग लिया और मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। अटल टनल रोहतांग क्षेत्र में पिछले कुछ समय से पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है और यातायात दबाव को देखते हुए लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने एक कार्य योजना तैयार की है। उपायुक्त किरण बढ़ाना ने बताया कि कुल्लू जिला प्रशासन व सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों के साथ इस बारे में बात की गई है। उन्होंने कहा कि सीमा सड़क संगठन को संभावित आपदाओं व चुनौतियों से निपटने के लिए आपातकालीन कार्य योजना तैयार रखने को कहा गया है।
2: ओवर द इयर्स ये देखा गया है कि यहाँ पे जो ट्रैफिक है वो काफी इंक्रीज हुआ है, इससे डिजास्टर लाइक सिचुएशंस भी हो सकती हैं, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी एंड लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज भी हो सकते हैं। हमें यहाँ पे थोड़े प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। उसके अलावा जो अटल टनल है इसमें मेंटेनेंस कब कब होती है, इसका ऑक्सीजन लेवल, इन केस ऑफ एनी डिजास्टर तो क्या SOPs रहेंगी इसमें। BRO से बोला भी गया है कि इन केस ऑफ डिजास्टर तो सिनेरियो बिल्डिंग करी जाए, इसमें डिफरेंट SOPs बनाई जाए ताकि हम इसमें मिलके काम कर पाएं और ये प्लान कर पाएं कि इस जगह को ये जितनी सुंदर है और जितना टूरिस्ट अट्रैक्शन है वो बना रहे और कोई आउटवर्ड इंसिडेंट ना हो।
0: सिरमौर जिले के दुर्गम क्षेत्र हरिपुर धार का राजकीय प्राथमिक स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में अन्य सरकारी स्कूलों के लिए प्रेरणा स्रोत बना हुआ है। इस स्कूल में 200 से अधिक विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और स्कूल के 3 विद्यार्थियों का चयन नवोदय के लिए हुआ है। स्कूल के अध्यापक कमल शर्मा ने बताया कि स्कूल के 8 विद्यार्थियों को स्वर्ण जयंती माध्यमिक मेधावी छात्रवृत्ति योजना का लाभ भी मिल रहा है और इसके तहत प्रतिवर्ष 1,80,000 रुपए की छात्रवृत्ति दी जा रही है। खास बात यह है कि हरिपुर धार स्कूल में हर वर्ष बच्चों के दाखिले में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है।
3: ये हमारे लिए एक बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारी इस पाठशाला से हर वर्ष नवोदय विद्यालय के लिए बच्चों का चयन होता रहा है। इस वर्ष भी हमारे इस पाठशाला से 3 बच्चों का चयन नवोदय के लिए हुआ है। नवोदय के अतिरिक्त यहाँ से जो बच्चों का सिलेक्शन है वो सैनिक स्कूल के लिए भी हुआ था। 8 बच्चे ऐसे है जो स्वर्ण जयंती मिडल मेरिट स्कॉलरशिप की जो योजना है उसमें 1,80,000 बच्चों को दिया जाता है, उससे लाभान्वित हो रहे।
0: शिमला के निकट जवाहरलाल नेहरू ललित कला महाविद्यालय लोहराब में 4 वर्षीय ललित कला स्नातक BFA डिग्री में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 19 जून तय की गई है। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर कामयानी बिश ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत पहले सेमेस्टर में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों को कॉलेज में 12 से 19 जून तक प्रवेश पूर्व परामर्श दिया जाएगा। कामयानी बिश ने कहा कि इच्छुक विद्यार्थी BFA डिग्री पाठ्यक्रम के तहत पेंटिंग, अप्लाइड आर्ट, स्कल्पचर, संगीत, गायन व वाद्य, तबला और नृत्य विषयों में प्रवेश ले सकते हैं। 12वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि पोर्टल आज मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। बोर्ड ने छात्रों से अनुरोध किया है कि वे समय से पहले अपने आवेदन भरकर जमा करें। केंद्र सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LPG की कीमतों में भारी वृद्धि के बावजूद भारतीय घरों को खाना पकाने की गैस वैश्विक स्तर पर सबसे कम कीमतों पर मिल रही है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने आज एक बयान में कहा कि भारतीय सिलेंडर किसी भी पड़ोसी देश की तुलना में सस्ता है और अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व कनाडा जैसी विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में काफी कम है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य सरकार 65 से 70 आयु वर्ग के पेंशन भोगियों का लंबित एरियर अगले महीने करेगी जारी। मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन स्थगन संबंधी अधिसूचना भी सरकार ने ली वापस। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, ढली नारकंडा रामपुर सड़क को 4 लेन में किया जा रहा है विकसित, सर्वेक्षण कार्य पूरा। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने प्रदेश के लोगों से की बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील, खजियार में मतदाताओं से किया संवाद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने विश्व खाद्य दिवस पर लोगों से स्वस्थ खान पान की आदतें अपनाने का किया आग्रह। और अटल टनल रोहतांग में पिछले कुछ दिनों में बड़ी पर्यटकों की आवाजाही, लाहौल स्पीति जिला प्रशासन ने यातायात दबाव को देखते हुए तैयार की कार्य योजना। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
4: FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। शाम के 7:58 हुए हैं।
5: हिमाचल की वादियों में हर दिल में एक ही नाम गूंजता है, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
6: फ्यूचर की टेंशन और मुझे, गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है ना?
5: गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस जहां है
7: हरा भरा विशाल कॉम्प्लेक्स,
5: शिक्षा का तंदुरुस्त वातावरण,
7: एफिलेटेड टू HP यूनिवर्सिटी,
5: UGC से मान्यता प्राप्त, हमीरपुर शहर की धड़कन गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।
8: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
9: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
10: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
11: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? अरे भाई, खुशी तो होगी,
12: अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
13: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।
14: दोस्तों, आज के हवा महल कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं झलकी कुत्ते के पिल्ले, लेखक और प्रस्तुतकर्ता गुरमीत रामलमीत।
15: शाबाश डॉगी, शाबाश, तुम बहुत बहादुर हो डॉगी, एकदम टाइगर हो टाइगर, शाबाश शाबाश डॉगी। मम्मी, पापा, पापा, मम्मी, ओहो, आप दोनों कोने में दुबके बैठे हो। अरे अब तो बाहर आ जाओ ना, चोरों को मैंने भगा दिया है।
16: अरे बेटी, तू कहाँ थी? तू तो अपने कमरे में नहीं थी।
15: तुम्हारी बेटी एक बहादुर लड़की है मामा, देखा मैंने चोरों को कैसे भगा दिया।
17: बेटी, डॉगी को कहाँ से ले आई?
15: पापा, मुझे जैसे ही भनक लगी कि चोर हमारे मकान में घुस आए हैं, तो मैं चोपड़ा अंकल के घर से डॉगी को ले आई। डॉगी ने चोरों को भगा दिया, देखा।
16: बेटी, मेरा तो कलेजा ही निकल गया था।
17: अरे चलो, जान बची लाखों पाए, चोर भाग गए, अब सो जाओ चैन से।
16: तुम्हें तो हमेशा सोने की चिंता बहुत रहती है, अगर डॉगी ना आता तो चोर सब कुछ लूट कर ले जाते। मैंने कितनी बार कहा कि एक कुत्ता घर में पाल लो, घर की रखवाली के लिए कुत्ते का होना बहुत जरूरी है।
17: अरे भगवान, तुम फिक्र मत करो, सवेरा होते ही कोई ना कोई कुत्ता जरूर ले आऊंगा।
15: शुक्र है पापा जी, जो आपको ये महसूस तो हुआ कि घर की रखवाली के लिए कुत्ता होना कितना जरूरी है। अंकल चोपड़ा रोज रोज हमें डॉगी थोड़ी देंगे, उन्हें भी तो इसकी जरूरत है।
16: रजनी के पापा, लेकर आना, जरूर लेकर आना डॉगी को, लेकर आना।
15: मम्मी।
16: हाँ, अरे
15: मम्मी, उफो, उठो ना, देखो कितना दिन चढ़ाया है, मैं तो कॉलेज के लिए तैयार भी हो गई हूँ।
16: अरे रजनी, तूने मुझे उठाया क्यों नहीं, कितना दिन चढ़ाया है?
15: मेरे पढ़ने के साथ साथ मम्मी आप भी रात को देर तक जागती रहीं, मैंने सोचा आप अपनी नींद ही पूरी कर लें।
16: बेटी सो तो ठीक है, पर सुबह सुबह मैंने बहुत बुरा सपना देखा।
15: ओफो मम्मा, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि सपनों के वहम में मत पड़ा करो।
16: अरे मैं वहम में तो नहीं पड़ती, फिर भी संभावना तो किसी बात की भी हो सकती है।
15: अब आप कहेंगी कि सुबह का सपना कई बार ठीक निकलता है।
16: चलो अगर सपने की सच्चाई पर ना भी विश्वास किया जाए, पर चोरों का काम तो है ही चोरी करना, वो हमारे भी घर आ सकते हैं।
15: इसका मतलब आज सपने में चोर हमारे घर में घुस आए?
16: और क्या, अगर आज सपने में आए हैं तो किसी दिन वास्तव में भी आ सकते हैं। घर भरा पड़ा है हमारा, इतनी बड़ी दुकान है, अगर चोर आ गए तो वो सब कुछ लूट कर ले जाएंगे।
15: मम्मी इतना डरना ना ठीक नहीं है। बस
16: पर फिर भी सावधान रहने में हर्ज ही क्या है, तुम्हारे पापा जी कहते थे कि शाम तक आ जाऊंगा, पर देखो अब तक नहीं आए।
15: पापा शायद कोई कुत्ता ढूंढ रहे होंगे। जाते समय आपने बहुत ताकीद की थी ना।
16: सो तो है ही, पर वो आए क्यों नहीं?
15: उफो मामा, देखो अब 8:30 बजने को हैं, मैं तो चली कॉलेज, बाय। ओह लो, पापा जी भी आ गए। वाह वाह पापा जी, आप तो वाकई तो पिल्ले ले आए।
17: बेटी मैंने सोचा एक पिल्ले का भी क्या ले जाना, दोनों ले चलता हूँ, दोनों।
16: हाँ पहली बार किया कल का काम, अगर रात को डॉगी ना आता तो समझ लो चोरों ने हमारा घर लूट ही लिया था।
17: क्या कहा, क्या क्या रात को हमारे घर में चोर आ गए थे?
15: पापा जी आप तो सचमुच डर गए पापा। चोर केवल मम्मी के सपने में आए थे।
16: पर मैं तो सपने में भी बहुत डर गई।
17: अरे मैं तो गाड़ी से उतर कर आ रहा था तो रास्ते में ही एक नौजवान कुत्ते के पिल्ले बेचता हुआ मिल गया। कह रहा था कि एकदम बढ़िया नस्ल के पिल्ले हैं, बड़े होकर चोरों को 1 किलोमीटर दूर से सूंघ लेंगे। हाँ बेटी बहुत बढ़िया है।
16: सच रजनी, देखो कितने प्यारे पिल्ले हैं।
15: मम्मा हाँ,
16: लगता है भूखे हैं बेचारे, देखो कैसे मुंह खोल रहे हैं। जा जरा दूध तो लेके आ, अभी पिलाते हैं।
15: पापा पापा, ये चूचा तो करते ही नहीं, बड़े अजीब पिल्ले हैं।
16: अरे अभी बहुत छोटे हैं ना, कैसे चूचा करेंगे, खास नस्ल के दिखते हैं।
15: ठीक है अब आप दोनों इन पिल्लों को संभालो और दूध पिलाओ, मैं चली अब।

0: que son que pilalelo, lelo, vamos pilalelo.
1: अरे हो भाई पिल्ले वाले, जरा इधर तो है ना, आओ जरा।
2: बाबूजी, क्या आपने मुझे बुलाया?
1: अरे हाँ भाई, ये एक पिल्ला कितने का दिया?
2: जी आप ले लो, जो सो है ठीक ही लगा लेंगे, कसम इन पिल्लों की।
1: अरे भाई तब भी बताओ तो कितने के हैं?
2: बस जी ये दो ही रह गए हैं, जो है सो है, वैसे पूरे छह थे।
1: भाई तुम्हारे पिल्ले लगते तो बढ़िया किस्म के हैं।
2: जी मैं तो हमेशा ही बढ़िया माल बेचता हूँ, कसम इन पिल्लों की।
1: अरे मियाँ शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं।
2: कसम इन पिल्लों की, ना जाने कितने ग्राहकों से रोज वास्ता पड़ता है बाबूजी।
1: मैंने तो सोचा था तुम मुझे पहचान गए होंगे। खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं।
2: जमीन पिल्लों की कुछ गड़बड़ लगती है, अरे इससे जान बचाकर भागना ही बड़ा है। अच्छा बाबूजी चलो, धंधे का बखर।
1: अरे भाई कहाँ जा रहे हो, कहाँ चले? मुझे दो पिल्ले और चाहिए ना, कहा तुमसे मैंने।
2: और का क्या मतलब है आपका?
1: इसका मतलब ये हुआ मियां कि तुमने अभी भी मुझे नहीं पहचाना।
2: अजी कसम इन पिल्लों की, कहा ना कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है बाबूजी।
1: अच्छा सुनो, तुम मेरे साथ घर चलो, वहाँ चलकर सब कुछ ध्यान में आ जाएगा।
2: जी बाबूजी मैं आपके घर चलकर क्या करूंगा? अरे मुझे तो अपनी रोजी कमानी है।
1: अरे हाँ। मैं भी तो तुम्हारी रोजी में ही अपना हिस्सा डालने की बात कर रहा हूँ।
2: तो फिर यही क्यों नहीं ले लेते आपको ये बिल्ले? कसम इन बिल्लों की।
1: इसका मतलब ये हुआ कि तुमने अभी भी मुझे नहीं पहचाना मियां।
2: अच्छा बाबूजी मैं चला।
1: अरे भाई मैंने कहा ना, मैं दो पिल्ले और खरीदना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने जो हमें दो पिल्ले पहले दिए थे ना, अरे वो क्या बात है, वो तो बहुत बढ़िया नस्ल के निकले। अब तो तुम्हें ध्यान आ गया होगा कि मैं कौन हूँ।
2: जो है सो है, क्या वो बहुत अच्छे निकले? अब मुझे याद आया बाबूजी, 6 महीने पहले ही आपको दो पिल्ले बेच गया था।
1: इसीलिए तो मुझे दो पिल्ले और खरीदने हैं मियां, किसी रिश्तेदार ने मांगे हैं, क्योंकि तुम्हारे पिल्लों की नस्ल बहुत बढ़िया होती है, बहुत बढ़िया होती है।
2: जो है सो है, ठीक है ठीक है बाबूजी, पर मेरा तो ख्याल था कि यही ही।
1: अरे वो एक बात है, वो कहने की ये बात है कि क्योंकि मैं तुम्हें पैसे घर जाकर ही दे सकता हूँ, इस वक्त मेरे पास है नहीं। घर चलो।
2: जैसी आपकी इच्छा, जो है सो है, तो चलो बाबूजी।
1: क्या तुमने कुछ सुना मियां?
2: ये क्या बोल रहे हैं?
3: क्या आप इसी से वह कुत्ते लाए थे? पापा पापा अभी अभी चोपड़ा अंकल आए थे, उन्होंने बताया कि ना ये जो है।
4: अरे एक मिनट सबर तो कर, पहले इस कुत्ते वाले की बात तो सुन ले।
1: बेटी तुम जरा दोनों कुत्तों को लेकर तो आओ।
3: अच्छा पापा अभी।
4: अजी उनको अभी भी कुत्ते बोलते हो?
1: कुत्ते वाले के सामने उन्हें कुत्ते नहीं बोलूंगा तो और क्या बोलूंगा।
3: हाँ पापा लो लो इन्हें ले आई मैं।
1: भाई ये बताओ कि घर में एक अजनबी को देखकर क्या कुत्ते भौंकेंगे या नहीं?
2: क्यों साहब, कोई जरूरी तो नहीं है ना?
4: क्यों जरूरी नहीं, अगर अजनबी को देखकर कुत्ता भौंकेगा नहीं तो वो फिर कुत्ता कहेगा, ऐसे कुत्ते से तो
3: गीदड़ ही भला।
1: और हकीकत में ये गीदड़ ही है।
3: चोपड़ा अंकल भी अभी अभी बता कर गए कि ये दोनों गीदड़ हैं, गीदड़।
2: ये कैसे हो सकता है?
1: अरे वैसे ही मियां जैसे तुमने किया है, तुम तो कहते थे कि कुत्ते के पिल्ले बहुत बढ़िया नस्ल के हैं।
4: क्या यही इनकी नस्ल है जो दूसरे कुत्तों को देखकर अंदर घुस जाते हैं, दूसरे कुत्तों को भौंकते देखकर दम दबाकर भाग लेते हैं?
3: गीदड़ तो कुत्ते को देखकर भागेगा ही ना।
1: अरे अब बताओ भाई, तुम्हारा क्या इलाज किया जाए? क्या बुलाऊं पुलिस को? तभी तो तुम मुझे न पहचानने का बहाना कर रहे थे।
4: सच कितना शौक था कि घर में कुत्ता पाला जाए जो घर की रखवाली भी करे।
2: अजी जो है सो है, तो ये दूसरे पिल्ले ले लो, ये एकदम बढ़िया किस्म के।
1: खबरदार, जो और पिल्ले देने का नाम लिया तो मैं अभी पुलिस को बुला रहा हूँ।
2: बाबूजी, अरे बाबूजी माफ कर दो ना, मैं अपनी गलती कबूल करता हूँ। अजी उस दिन घर में खाने का कुछ नहीं था, वैसे हम कुत्ते ही पालते हैं साहब, उनके बच्चे बेचते हैं। उस दिन बेचने के लिए बिल्ली थी, इसलिए मैंने कीचड़ के बच्चों को ही आपको दे दिया। लेकिन लेकिन साहब ये सचमुच पिल्ले ही है।
1: मैंने कहा ना भाई कि हमें कोई पिल्ले नहीं चाहिए, समझे?
2: ये पिल्ले मैं मुंह बदल देता हूँ साहब, की जड़ को ले जाता हूँ, किसी चिड़िया घर में दे दूंगा।
4: पर ये तो गीदड़ नहीं निकलेंगे ना।
2: ऐसा हुआ तो बीबी जी, जो चोर की सजा सो मेरी सजा, कसम इन पिल्लों की।
1: अरे सुनो, अगर 6 महीने के बाद ये पिल्ले कुत्ते निकलेंगे तो हम तुम्हें जरूर पूरे पैसे दे देंगे। पहली गलती की तुम्हें माफी।
2: बाबूजी आपकी बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। इंसान गरीब में गलती करने के लिए मजबूर हो जाता है ना। कसम इन पिल्ले की। राम।

कुत्ते के पिल्ले। अभी आप सुन रहे थे ये झलकी, लेखक और प्रस्तुतकर्ता थे गुरमीत रामलमीत। ये थी आकाशवाणी शिमला की भेंट।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा।
1: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
4: तुम्हारी याद सताते हैं
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
5: अपने आप रातों में चिलमने सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
6: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
6: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
6: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
6: सदा रही है, सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। थोड़ी देर में आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम चित्रलोक।

श्रोता में गीत आपने सुना फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला से। आवाज़ भूमि त्रिवेदी की थी। गीत के बोल सिद्धार्थ करिमा के और संगीत संजय लीला भंसाली का। आइए सुनते हैं अब ये गीत।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंगून, पिया है वहां से टेली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छप कर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।

श्रोताएं, गीत आपने सुना फिल्म भारत से, आवाज़ें श्रेया घोषाल और नक्काश अजीज की थी। गीत के बोल इरशाद कामिल के और संगीत विशालन शेखर का।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म बटला हाउस से। आवाज़ें नेहा कक्कर, तुलसी कुमार और बी प्राक्की थी। गीत के बोल तनिष्क बागची और देव कोहली के, संगीत तनिष्क बागची और विशाल शेखर का। आइए सुनते हैं अब ये गीत।

श्रोताओं, गीत आपने सुना फिल्म विक्की एंड विद्या का वो वाला वीडियो से। आवाज़ सुनिधि चौहान और दिव्य कुमार की थी। गीत के वो लिखे थे इरशाद कामिल ने और संगीत संदेश शांडिल एंड वाइट नॉइस कलेक्शन का।

एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे न्यूज़ @9, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न। रक्षा, व्यापार, ऊर्जा और संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में व्यापक रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा। पश्चिम बंगाल सरकार पर्यटन और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। दक्षिण पश्चिम मानसून पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ा। उलान बटोर ओपन में भारतीय पहलवानों का शानदार प्रदर्शन। पुरुष फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक जीते। और क्रिकेट में भारत के साथ एकमात्र टेस्ट मैच के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक अफगानिस्तान पहली पारी में 451 रन से पीछे। अब समाचार विस्तार से। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगियोनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक में दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीतिक भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगियोनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। एक रिपोर्ट।
2: सुश्री पॉल ने कहा कि केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ने इन शहरों के विकास के लिए समर्थन व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, व्यापार, चाय उद्योग और क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने के साथ रोजगार के

0: अवसर भी उपलब्ध होंगे। सुश्री पॉल ने कहा कि राज्य में शहरी बुनियादी ढांचे और स्वच्छता में सुधार के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। 1 जुलाई से पार्किंग की अनुमति केवल निर्धारित क्षेत्रों में ही होगी और अवैध पार्किंग पर जुर्माना लगेगा। पदभार ग्रहण करने के बाद सुश्री पॉल की ये उत्तर बंगाल क्षेत्र की पहली आधिकारिक यात्रा है। बैठक में नगर पालिका मामलों, महिला बाल विकास, सामाजिक कल्याण, स्वच्छता, यातायात नियमन और विभिन्न सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई। कुर्सियोंग से अशोक चौरसिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
1: पश्चिम बंगाल आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला देश का 36वां राज्य बन जाएगा। इस संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच कल नई दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी उपस्थित रहेंगे। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है। योजना के लागू होने से राज्य के लाखों लोगों को बेहतर और किफायती स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: शिक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार यह डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। कक्षा 12वीं की परीक्षा के परिणाम जारी होने के बाद संबंधित मुद्दों की जांच और उत्तर पुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की आज अंतिम तिथि है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि पोर्टल मध्यरात्रि तक खुला रहेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग 9 अरब डॉलर की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर 45 अरब डॉलर तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या वर्ष 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि राज्य सरकार की वर्षा की स्थिति पर नजर है और किसानों के हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। नागपुर में उन्होंने कहा कि इस वर्ष सामान्य वर्षा का अनुमान है, लेकिन एलनीनो के प्रभाव के कारण मराठवाड़ा, पश्चिम विदर्भ और उत्तर महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में कम वर्षा हो सकती है। उन्होंने कहा कि किसानों को समय समय पर आवश्यक सलाह दी जा रही है और फसल नुकसान को कम करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोना तस्करी करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। ऑपरेशन गोल्डन नेक्सस के अंतर्गत निदेशालय ने करीब 5 करोड़ रुपए मूल्य का 3 किलो 200 ग्राम विदेशी सोना जब्त किया है। मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें हवाई अड्डे के 3 कर्मचारी भी शामिल हैं। आंध्र प्रदेश सरकार ने आज योगांध्र 2026 अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले योग और स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना है। 14 दिवसीय इस अभियान का समापन 21 जून को अमरावती में भव्य आयोजन के साथ होगा। इस अभियान के दौरान विभिन्न योग गतिविधियों के माध्यम से 1 करोड़ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए गांव, मंडल और जिला योग सत्र तथा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लोगों से योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने और इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया है। यूरोपीय संघ का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल कल 2 दिवसीय दौरे पर असम के गुवाहाटी पहुंचेगा। इसका उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ सहयोग को मजबूत करना है। यूरोपीय संघ की चर्चा उन क्षेत्रों पर केंद्रित होगी जिनमें यूरोप और पूर्वोत्तर के साझा हित हैं। इनमें नवीकरणीय और हरित ऊर्जा, सतत शहरी बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सेवा और फार्मास्यूटिकल शामिल हैं। इसराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में आज गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 घायल हो गए। एक हमलावर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, अन्य संदिग्धों की तलाश जारी है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की और बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। इस बीच सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर LPG की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में LPG सिलेंडर का मूल्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी से कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया। मॉनसून उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों तथा नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम में भी दस्तक दे चुका है। इसके अलावा त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी मॉनसून पहुंच गया है। एक रिपोर्ट।
3: मौसम विभाग ने कल तटीय और आंतरिक कर्नाटक, केरलम, माही, उपहिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और उत्तराखंड में अगले 4 से 5 दिन बारिश हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून ने दक्षिण कोंकण क्षेत्र में प्रवेश कर लिया है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कुछ हिस्सों में मानसून की बारिश शुरू हो गई है। मंगलवार तक रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों के कुछ हिस्सों में तेज बारिश हो सकती है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में आज शाम बारिश हुई। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं आनंद पाठक।
4: न्यू चंडीगढ़ में खेले जा रहे एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच में भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। भारत के 564 रन के जवाब में मेहमान टीम ने दिन की समाप्ति तक 5 विकेट खोकर 113 रन बना लिए थे। रहमत शाह 43 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू कर रहे मानव सुथार ने 3 विकेट जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 2 विकेट लिए। अफगानिस्तान अब भी भारत से 451 रन पीछे है। वहीं कुश्ती में मंगोलिया के उलान बटोर ओपन कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक भारत ने अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के आसिल एथकिन को 6-0 से हराकर स्वर्ण पदक जीता। वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के येदिगे कासिम बेग को 2-0 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। उधर न्यू ताइपे सिटी एथलेटिक्स ओपन 2026 में आज भारतीय धावक और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ में 20.47 सेकंड का समय निकालते हुए रजत पदक अपने नाम किया। ये समय उनके करियर का 4th सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।
1: उधर फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव का सामना इटली के फ्लेवियो कोबोली से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक ज्वेरेव और कोबोली ने 1-1 सेट जीत लिया है। इससे पहले कल रूस की मीरा एंड्रीवा ने माया चवालिन्स्का को हरा कर महिला सिंगल्स का खिताब अपने नाम किया। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर अभिलाषा बराक को संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया।

एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। रात्रि के 9:15 हुए हैं। अब आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा।

पाकिस्तान की फ्लाइट बिल्लू मुन्नी और शम्स की रामपुर मेरठ और इटावा से, संगीत है सोहेल सेन का, बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना कैसा ये इश्क है।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट है वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, कामकाज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम में आज एक ऐसी अभिनेत्री की बातें जिनकी शोखी, चंचलता और मासूमियत के लोग दीवाने रहे हैं।

अमृता राव मुंबई में ही पैदा हुई और यहीं पर पली बढ़ी। आरंभिक शिक्षा दीक्षा अंधेरी के एक स्कूल में हुई और फिर साइकोलॉजी में कॉलेज की पढ़ाई के लिए मुंबई के सोफाया कॉलेज में एडमिशन तो लिया, पर ये पढ़ाई अधूरी छूट गई क्योंकि अमृता राव के कदम बढ़ चले मॉडलिंग की दुनिया में। मॉडलिंग की चमकीली दुनिया अमृता राव के लिए थी या नहीं थी ये उन्हें भी नहीं पता था। परिवार बहुत ही पारंपरिक कोंकणी भाषा बोलने वाला परिवार था और यहाँ परंपराओं और संस्कृति का सम्मान किया जाता था। अमृता राव ने अपने परिवार की इस परंपरा का सम्मान किया और मॉडलिंग की दुनिया में हौले हौले अपने कदम आगे बढ़ाने शुरू किए। शुरुआती तौर पर उन्हें कई विज्ञापनों में काम मिला और टेलीविजन पर वो नजर आने लगी, पर अमृता राव को ख्याति तब मिली जब जानी मानी पॉप गायिका अलीशा चिनॉय के एक एल्बम के गाने वो प्यार मेरा में वो नजर आईं और बस ये लगा कि शायद रुपहले पर्दे पर नजर आना ही अमृता राव का प्यार है। इंतजार था फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम बढ़ाने का और ये मौका साल 2002 में आया। निर्देशक राज कंवर ने बनाई फिल्म अब की बरस। इस फिल्म में आर्या बब्बर भी रुपहले पर्दे पर अपना पहला कदम रख रहे थे, जो जाने माने अभिनेता राज बब्बर के बेटे हैं। तो आर्या बब्बर और अमृता राव के अभिनय वाली फिल्म अब के बरस आई, जो एक बहुत ही अलग तरह की कहानी पर बनी फिल्म थी। इस फिल्म में अमृता राव ने अमेरिका से लौटी एक लड़की की भूमिका निभाई और लोगों की नजर उन पर गई।

इसके बाद आई राजकुमार संतोषी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी फिल्म द लेजेंड ऑफ भगत सिंह। इस फिल्म में अजय देवगन ने भगत सिंह का किरदार निभाया था और अमृता राव पर आई थी जिम्मेदारी भगत सिंह की प्रेमिका मन्ने वाली का किरदार निभाने की, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया और चारों तरफ उनकी प्रशंसा हुई।

साल 2003 कैन घोष ने प्यार मोहब्बत की चाशनी में डूबी एक फिल्म बनाई इश्क विश्क। इस फिल्म के जरिए एक चॉकलेटी सितारे ने फिल्मों की दुनिया में अपना पहला कदम रखा। जाने माने अभिनेता पंकज कपूर के बेटे शाहिद कपूर की ये पहली फिल्म थी और उनकी पहली हीरोइन बनी अमृता राव।

साल 2004 आया और लाया मस्ती। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दिल बेटा और राजा जैसी फिल्में बनाने वाले जाने माने कमर्शियल निर्देशक इंद्र कुमार की फिल्म की। साल 2004 में आई फिल्मी सितारों से सजी हुई फिल्म मस्ती। इस फिल्म के कलाकार थे अजय देवगन, लारा दत्ता, रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय, आफताब शिवदासानी, अमृता राव, तारा शर्मा और जेनेलिया देशमुख। फिल्म मस्ती में अमृता राव एक चंचल शोख लड़की की भूमिका में थीं। इसके बाद फराह खान ने अमृता राव को कास्ट किया जायद खान के अगेंस्ट। शाहरुख खान और सुष्मिता सेन के अभिनय वाली ये चर्चित फिल्म थी मैं हूं ना। और इस फिल्म में अमृता राव पर फिल्माया गया था ये गाना।

जाने माने निर्देशक मिलन लुथरिया ने अमिताभ बच्चन, संजय दत्त और अक्षय खन्ना जैसे अभिनेताओं को लेकर एक फिल्म बनाई दीवार। जाहिर है कि लोगों को यश चोपड़ा की दीवार जरूर याद आई होगी, पर ये नए जमाने की दीवार थी। इसमें भी अमिताभ बच्चन थे, पर कहानी बिल्कुल अलग थी और इस फिल्म में भी थी अमृता राव।

साल 2005 में आई फिल्म वाह लाइफ हो तो ऐसी, निर्देशक थे महेश मांजरेकर। इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे शाहिद कपूर और संजय दत्त। फिल्म सरफरोश बनाने वाले निर्देशक जॉन मैथ्यू माथन लेकर आए फिल्म शिखर। इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे अजय देवगन, बिपाशा बसु और शाहिद कपूर।

साल 2006, एक बार फिर इंद्र कुमार लेकर आए फिल्म प्यारे मोहन, जो हॉलीवुड की आर्थर मिलर की निर्देशित फिल्म सी नो इवल हियर नो इवल पर आधारित थी। इस फिल्म में फरदीन खान और विवेक ओबेरॉय थे, ईशा देओल और अमृता राव थे।

साल 2006 राजश्री प्रोडक्शंस की फिल्म आई विवाह। इस फिल्म में अमृता राव के दूल्हे बने थे शाहिद कपूर।

यहाँ तक आते आते अमृता राव की यात्रा ने एक कमाल का मोड़ लिया और वो चली गई तेलुगु सिनेमा की तरफ। उन्होंने महेश बाबू के साथ एक फिल्म की अतिथि। इस फिल्म में महेश बाबू और अमृता राव की जोड़ी की काफी प्रशंसा हुई और फिल्म खूब चली भी। साल 2008 फिल्म आई माय नेम इज एंथनी गोंजाल्विस। और इसी बरस श्याम बेनेगल की एक फिल्म में अमृता राव ने काम किया जिसका नाम था वेलकम टू सज्जनपुर। भीनी भीनी।

सुनीता राव एक सादगी और गरिमा वाली अभिनेत्री रही हैं। उन्होंने अपनी फिल्मों का चुनाव बहुत सोच समझ कर किया, इसलिए उन्होंने ज्यादा फिल्में नहीं की और रुपहले पर्दे पर उनकी पारी भी बहुत लंबी नहीं रही, पर उनके चाहने वाले उनकी फिल्मों का इंतजार करते रहे। इस बीच अमृता राव फिल्म शौर्य में बतौर अतिथि कलाकार नजर आईं। 2009 में हरमन बवीजा के साथ वो नजर आईं फिल्म विक्ट्री में। इसी बरस आई नीरज वोरा की फिल्म शॉर्टकट। इसके प्रोड्यूसर थे अनिल कपूर और इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे अक्षय खन्ना।

साल 2011 में राजश्री प्रोडक्शंस की एक और फिल्म अमृता राव ने की, जिसका नाम था लव यू मिस्टर कलाकार। इस फिल्म में अमृता राव के साथ थे तुषार कपूर।

इसके बाद कुछ फिल्मों में अमृता राव ने अतिथि कलाकार के तौर पर भूमिका निभाई, जैसे हे बेबी, लाइफ पार्टनर और जाने कहां से आई है। साल 2013 में अरशद वारसी के साथ वो नजर आईं सुभाष कपूर की फिल्म जॉली एलएलबी में। फिर आई अनिल शर्मा की फिल्म सिंह साब द ग्रेट, जिसमें थे सनी देओल। साल 2013 प्रकाश झा की फिल्मी सितारों से सजी फिल्म सत्याग्रह में नजर आईं अमृता राव। अमृता राव ने कुछ टेलीविजन सीरियल भी किए हैं, जैसे मेरी आवाज ही पहचान है। साल 2019 में अभिजीत फंसे की फिल्म ठाकरे में अमृता राव ने मीना ताई ठाकरे की भूमिका निभाई थी। अमृता राव ने आरजे अनमोल से विवाह किया है।

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेत्री अमृता राव पर। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता तेजश्री कामले।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती राष्ट्रीय प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। रात्रि के 10 बजे हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम दिलां दे मीत पहाड़ी गीत।

रिश्तियां दी सब ते प्यारी पहचान विश्वास कन्नै अपनापन होंदा। जित्थी जे ए दोनों होन तिथी अपने आप ही बनी जांदे दिलां दे मीत।

भावनाओं की सच्चाई कने रिश्तों की गर्माहट जीवन के हर पल जो खूबसूरत बनाईंदी कने यही सह एहसास है जिसने प्यार भरे रिश्ते और भी गहरे हो जाते।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम दिलां दे मीत पहाड़ी गीत, एफएम बैंड 101.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। रात्रि के 10:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम चांदनी रातें।

किसी का ख्याल जब बार बार आए तो समझ लीजिए कि दिल ने उसे अपनी दुआओं में शामिल कर लिया है। कुछ रिश्ते शब्दों से नहीं, एहसासों से जिए जाते हैं, और जब दिल किसी की मुस्कान में अपनी खुशी ढूंढ ले तो हर पल खास बन जाता है।

जीवन की राहें आसान नहीं होती, लेकिन किसी अपने का साथ उन्हें खूबसूरत ज़रूर बना देता है। और मोहब्बत का सबसे खूबसूरत रूप वही है जिसमें साथ होने का सुकून होता है।

जब कोई हमारी खुशियों में अपनी खुशी तलाशने लगे तो समझिए कि जिंदगी ने हमें एक अनमोल साथी दे दिया है, और ये अनमोल साथ काफ़ी है हर पल को हसीन बनाने के लिए।

प्रेम सिर्फ साथ चलने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए हर मोड़ पर साथ निभाने का नाम है।

इसी के साथ चांदनी रातें कार्यक्रम का आज का ये प्यार भरा सफर अब यहीं संपन्न होता है। FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे हिंदी समाचार, जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक आज नई दिल्ली में आयोजित की गई। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और इंडोनेशिया के विदेश मंत्री सुगी ओनो ने बैठक की सह अध्यक्षता की। बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने व्यापक रणनीति भागीदारी के अंतर्गत द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: बैठक के दौरान भारत और इंडोनेशिया ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। इनमें राजनीतिक, रक्षा और सुरक्षा, समुद्री, व्यापार और निवेश, फार्मा और स्वास्थ्य सेवा, डिजिटल ऊर्जा, कनेक्टिविटी, अंतरिक्ष और शिक्षा जैसे क्षेत्र शामिल हैं। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की। साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय और बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग और समन्वय की अपनी प्रतिबद्धता को फिर से दोहराया। डॉक्टर जयशंकर और श्री सुगी ओनो ने द्विपक्षीय संबंधों में हो रहे सकारात्मक विस्तार का स्वागत किया। इससे पहले अपनी प्रारंभिक टिप्पणी में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच यह बैठक 4 वर्षों के अंतराल के बाद हो रही है और इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: पश्चिम बंगाल की महिला, बाल विकास और सामाजिक कल्याण मंत्री अग्नि मित्रा पॉल ने कहा है कि राज्य सरकार दार्जिलिंग, मिरिक, कुर्सियोंग, कलिम्पोंग और सिलीगुड़ी को हिमालयी शहरों के रूप में विकसित करेगी। सिलीगुड़ी में आज एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता के बाद सुश्री पॉल ने ये बात कही। गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार को नई दिल्ली में लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम LPMS का शुभारंभ करेंगे। गृह मंत्रालय के अनुसार ये डिजिटल प्रणाली सीमा चौकियों के संचालन को अधिक सुगम, पारदर्शी और सुरक्षित बनाएगी। इसके माध्यम से सीमा पार व्यापार और यात्रियों की आवाजाही को तकनीक आधारित सुविधाओं से बेहतर बनाया जाएगा। इस अवसर पर गृह मंत्री मेघालय के डावकी और त्रिपुरा के श्रीमंतपुर लैंड पोर्ट पर विकसित नई आवासीय सुविधाओं का भी उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत को अवसर, नवाचार और आत्मविश्वास से प्रेरित आकांक्षी राष्ट्र में बदल दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था वर्तमान में लगभग $9 अरब की है। इसके अगले 7 से 8 वर्षों में बढ़कर $45 अरब तक पहुंचने की संभावना है। उन्होंने बताया कि देश में स्टार्टअप की संख्या 2014 में लगभग 400 से बढ़कर 2,30,000 से अधिक हो गई है। इससे करीब 25 लाख लोगों को रोजगार मिला है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष के 100 दिन पूरे हो गए हैं। फरवरी के अंत में ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमलों से शुरू हुआ यह संघर्ष अब एक व्यापक क्षेत्रीय संकट में बदल गया है। संघर्ष से हॉर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित समुद्री यातायात के लिए खतरा और लेबनान में नए सिरे से तनाव बढ़ गया है। अमरीका की केंद्रीय कमान ने आज कहा कि अमरीकी सेना ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 2 ड्रोन को मार गिराया। इससे पहले कल ईरान ने बहरीन और कुवैत की ओर बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर जवाबी कार्रवाई की। सरकार ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एलपीजी की कीमतों में वृद्धि के बावजूद देश में वैश्विक स्तर पर इसका मूल्य सबसे कम है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि भारत में एलपीजी सिलेंडर का मूल्य अमरीका, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। उपभोक्ता कार्य विभाग के ई जागृति मंच को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 में रजत पुरस्कार मिला है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और

0: सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि ई जागृति उपभोक्ता शिकायतों के त्वरित निपटारे में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मंगोलिया में उलान बतोर ओपन कुश्ती में भारतीय पहलवानों ने आज पुरुषों की फ्रीस्टाइल कुश्ती में 2 स्वर्ण और 2 कांस्य पदक अपने नाम किए। दीपक ने 61 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान के असिल एथकिन को, वहीं दिनेश ने 125 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में कजाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM बैंड 101.8 MHz पर आकाशवाणी का ये हमीरपुर केंद्र है। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।